0: भजन का आनंद लेते हुए विचार करने का एक और मौका।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टेंटिया भी।

0: धन्यवाद मोहन साहब, धन्यवाद। तो अब एक हल्का फुल्का सा सवाल जानना चाहूंगा। लोग बात सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि क्या कभी ऐसा कोई समय आया आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, जब आपको स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर संदेह हो गया हो, थोड़ा गुस्सा आ गया हो कि नहीं मानता मैं ये सब ऐसा कुछ, और फिर आपने क्या किया?
1: अच्छा, ऐसा ही मौका आया था मेरी जिंदगी में एक बार
0: जी,
1: जब ऐसी एक स्थिति आई। लोगों को ये कहता हूं कि मैं बचपन में 4 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था
0: जी,
1: और मुझे चलने में तकलीफ होती है। मैं अभी इस उम्र में व्हील चेयर या वॉकर लेके चलता हूँ
0: जी,
1: और 22-21 साल ऐसे उम्र में जब नौकरी की तलाश में जाता हूँ तो लोगों ने कहा कि भाई तुम इसके लिए फिट नहीं हो। मैं तो एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था
0: जी।
1: किसी ने कहा आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनाएंगे, तुम क्या बनोगे पायलट? मैं IAS बनना चाहता था। वो कहते नहीं, IAS में विकलांग को हम शामिल नहीं करते। फिर की ईश्वर की कृपा से मैंने अच्छे बैंक में बहुत बड़ी पोजीशन में मैं पहुंच गया
0: जी।
1: लेकिन उस मौके पर उस ऐसे हालात आए थे जब मैं 20-21 साल के उम्र का था तो मुझे बहुत गुस्सा आया
0: जी,
1: ईश्वर पर बहुत गुस्सा आया कि भाई मुझे आपने में सिर्फ जी मैंने ऐसे क्या किया जो मुझे ऐसी मेरी जिंदगी में आपने ऐसा एक चैलेंज दिया मुझे
0: जी।
1: तभी जाके वो कहता ना ईश्वर अनुग्रह है, मुझे गुरु मिले और गुरु ने मेरी सोच, मेरी दृष्टि सब कुछ बदल दी। उसके बाद अभी जो है ये मैं ये नहीं कहता हूं कि एडजस्ट हो गया है, अब ये अकोमोडेट हो गया। गाड़ी में जैसे डेंट है, समझिए गाड़ी में डेंट है, बस गाड़ी में डेंट है, गाड़ी तो चलती है ना। तो मेरी गाड़ी में डेंट है लेकिन काम अच्छी तरह करती है गाड़ी
0: जी।
1: तो जिंदगी में ऐसा मौका आया था जब मुझे बहुत गुस्सा आया, रिजेक्शन मिला मुझे
0: जी,
1: लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वो कहते हाँ, वो कहते हैं ना, वो तमिल में कहते आयो पावम बेचारा
0: बेचारा। ओके,
1: तो इसमें बहुत गुस्सा आया लेकिन अच्छा हुआ ईश्वर अनुग्रह, मेरी पुण्य ऐसा हुआ कि ईश्वर अनुग्रह ऐसे बड़े संत महात्मा से मिले जिन्होंने मेरी सोच और विचारधारा बदल दी।
0: बहुत सुंदर भाई, वाह, आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली रहे, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन पा रहे हैं। उस प्रभाव को रेडिएट होते हुए हमारे पास आने में बहुत वक्त नहीं लगेगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। लीजिए दोस्तों, एक भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं मोहन सर के पास। मैं हूं आपका दोस्त RJ समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।

0: मोहन साहब, रिलीजन की बात हुई, आध्यात्मिकता की बात हुई, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की हुई, रिलीजन पर एक बार फिर से वापस आते हैं धर्म पर, क्योंकि वो एक उचित जिंदगी को जीने का आचरण की बात थी। तो क्या सभी धर्म एक ही सच की ओर ले जाते हैं क्या हमें?
1: अच्छा, एक चीज है, हमें वहां एक छोटे से शब्दों के प्रयोग में जरा ध्यान रखना चाहिए। धर्म एक होता है, मत अलग है।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, धर्म का मतलब आचरण, और आचरण हर जीवन को एक ही जैसा आचरण है। ऐसे नहीं कि अमेरिका में दूसरा आचरण है, हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वैसा नहीं है।
0: ओके।
1: मनुष्य का आचरण एक ही होना चाहिए, मानव धर्म कहते हैं इसको। लेकिन हमारी ईश्वर की जो हमारी ओर प्रार्थना है, याचना है, ये अलग अलग हो सकता है, इसको मत कहते हैं।
0: जी।
1: अच्छा, तो सवाल ये होना चाहिए, क्या सारे मत एक ही चीज की ओर ले जाते हैं?
0: ओ, जी जी जी, बिल्कुल सही।
1: तो मैं इनको मैं काउंटर सवाल यही करूंगा कि अगर हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: जी,
1: इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य और कुछ है, आपका उद्देश्य और कुछ है। आप कहते हैं कि हमारे इसमें चलो, हमारे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। दूसरा कहता है हमारा मार्ग में चलो तो रक्षा करेंगे। तो मैं उनकी जो विश्वास है उसको मैं सम्मान करता हूं, आई रेस्पेक्ट दैट, और माय एक्सपेक्टेशन इज मैं जो जिस मार्ग में जा रहा हूं उसको आप भी रेस्पेक्ट करें।
0: जी।
1: तो इसका जो गोल, इसमें दो चीज है, मत में दो चीजें, एक है वैल्यूज, हम क्या झूठ मत बोलो, किसी को भाई हिंसा मत करो, वहां सब एक ही है। लेकिन ये आगे चल के पहुंच के जो उद्देश्य है, जो गोल है, जो जहां जाके पहुंचना चाहते हैं, वो अलग अलग है। अगर वो अलग ना होता तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: विचार करने की, फिर से बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
1: जी सर, आवश्यकता है
0: बहुत ज्यादा गहराई से, क्योंकि अब जैसे जैसे हम वार्म अप हो रहे हैं, इस विषय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी समझ भी खुल रही है। थोड़े से शब्द फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें समझ भी आ रहा है कि ऑलराइट, ये पर्टिकुलर शब्द जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में गहन विचार चाहिए। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए अब एक और थोड़ा सा पैरानॉर्मल टाइप सवाल, कई बार लोग बात पूछते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, खमाखा में कंफ्यूज होने की कोशिश ज्यादा ही समझदार बन जाते हैं, कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, हमको प्रभावित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, या कंट्रोल कर रही है? तो क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति, सर आप मानते हो?
1: अच्छा, अदृश्य शक्ति जब है ब्रह्मांड की ओर नहीं, बस हमारे शरीर पिंडांड है उसी में पहले देखिए।
0: जी,
1: आप प्राण वायु लेते हैं, आप दृश्य देख सकते हैं उसे?
0: जी नहीं, वायु को नहीं देख सकते।
1: हाँ, आप डाइजेस्ट हो रहे हैं, आप कुछ देख पा रहे हैं?
0: नहीं देख पा रहे।
1: आपके अंदर कुछ सोच है, ये सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं सवाल की प्रश्न की उत्तर दे रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हैं?
0: नहीं।
1: इसका मतलब है एक है दृश्य शक्ति, एक है अदृश्य शक्ति।
0: अरे वाह, क्या बात है सर।
1: अच्छा, दृश्य शक्ति जैसे पिंडांड हम में है, ब्रह्मांड में भी है। जैसे सूर्य, सूर्य के जो उदय होता है, अस्त होता है, ये हमारी दृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति भी बहुत है, कि क्या हमारे मिल्की वे तक सीमित है, हमारी गैलेक्सी इससे बाहर भी और कुछ है?
0: जी।
1: ये नक्षत्र लोग क्या है, वो उनका जैसे चलता कैसे, ये हमारे हर साल देखिए आपको ग्रहण आता है, ये कैसे आता है? तो इस सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति भी है, एक दृश्य शक्ति भी है।
0: जी।
1: अदृश्य शक्ति को देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि को किसे जरूरत होती है, इनसाइटफुल एनालिसिस। इसके अदृश्य शक्ति को देखने के लिए या समझने के लिए हमें एक सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है।
0: तो यार, जाहिर सी बात है, अभी मोहन सर ने जो एक सूक्ष्म बुद्धि के बारे में बताया, ये एक नया शब्द, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया प्रभाव समझने की बात में आ जाता है, जो कि मौजूद है। बड़ी खूबसूरती से सर ने बताया कि अदृश्य और दृश्य में क्या फर्क है। तो जिस तरह से दृश्य मौजूद है, उसी तरह से अदृश्य भी मौजूद है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, फिर रुकिए रुकिए, एक भजन का आनंद लेते हुए विचार कीजिए।

0: जाहिर सी बात है, इन सारी बातों को सुनकर समझकर मैं तो विश्वास से सारे मित्रों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को बार बार सुने, क्योंकि विचार करके समझना जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। आप स्वार्थी बनिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए और इस पूरे प्रोग्राम को समझिए। मोहन जी ने जो बताया बहुत सुंदर। अब आपकी बातें सुनकर समझकर कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि जी बिल्कुल ठीक कहा मोहन साहब ने और मैं अब आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूं, तो उसको आप बहुत सरल भाषा में 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ सिंपल स्टेप्स बताइए सर, जिससे कि वो उनको अपनाकर आध्यात्मिक हो जाए।
1: अच्छा, अभी जैसे है, आध्यात्मिक होने के लिए पहली जरूरत है कि हमें ये जो हमारी जो अभी आर्थिक व्यवस्था की ओर हम समझ रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था में ही हमारी संतोष और हम सब खुश रह सकते हैं
0: जी।
1: अच्छा, इसको हमें जरा ये सोच को बदलना है। आर्थिक व्यवस्था जो जरूरत है, लेकिन इससे आगे भी हमारा कुछ उद्देश्य है। उसके लिए उसको पहले, उसको कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति के पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। आप बुलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले a+bd2 सीखना चाहिए। तो आप ज्ञान प्राप्ति से पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। तो पहला कदम है कर्म योग। अपना कर्म करो, फल तुम्हें ईश्वर से मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा।
0: जी जी,
1: वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, वैसे नहीं है। आपको अपना कर्म करो और आपके कर्म का जो फल है वो ईश्वर की कृपा से आपको मिलेगा ही, उसको कर्म फल कहते हैं। और ईश्वर के ऊपर विश्वास और श्रद्धा बढ़ाने के लिए उपासना की जरूरत है। सो स्टेप 1 कर्म योग, स्टेप 2 उपासना, तीसरा किसी गुरु के चरण में जाएं

0: भगवान माना ना निधिध्यासन,
1: जी
0: इसमें सब कुछ आ जाते हैं।
1: जी श्रवण मनन और तीसरा कौन सा सर?
0: निध्यासन।
1: नित्यासन,
0: निधि निधि ध्यासन ना, छोटा द और फिर ध्या।
1: अच्छा,
0: निधि ध्यासन,
1: निधि ध्यासन,
0: निधि ध्यासन का मतलब ये जो विचार है आत्म विचार के ऊपर धी को लगाना, निधि ध्यासन, निश्चय अध्ययन करना, निधि ध्यासन।
1: ओके ओके ऑलराइट। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से सर ने, मोहन सर ने तीन स्टेप्स बताए कि आपको उन चीजों की जरूरत है। मुझे मेरे हिसाब से बड़ी ही प्यारी चीज जो मुझे अपनाने के लिए लगी वो ये कि ज्ञान पाने के लिए आप ज्ञान के लिए योग्य तो होइए पहले। जाहिर सी बात है उन्होंने बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया, एलजेब्रा को समझने के लिए पहले आप ए प्लस बी होल स्क्वायर तो सीखिए। जब आपको यही नहीं पता तो एलजेब्रा कहां से आने वाला है? सो इट इज सो ब्यूटिफुल। मोहन सर आपका बहुत बहुत आभार है, साधुवाद, धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला, हम लोगों को बताया, हम लोगों को शिक्षित किया किस तरीके से हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, शांति पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और चलते चलते बस हमारे सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर आप?
0: हाँ बस इतना ही है कि संदेश इतना ही है, मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, दुख की कोई गुंजाइश है ही नहीं हमारे जिंदगी में। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानने के लिए गुरु के शरण में जाओ, बाकी सब ईश्वर कृपा है।
1: बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मोहन सर, थैंक यू सो मच।
0: बहुत अच्छा लगा, ईश्वर कृपा गुरु है, ईश्वर अनुग्रह गुरु कृपा से मैं आपसे दो शब्द मैंने आपके साथ शेयर कर सका। ये लोगों को अगर बेनिफिट हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है।
1: क्योंकि
0: जरा टेक्निकल है, जरा समझने में।
1: ऑफ कोर्स।
2: ओम भास्कराय नमः।
1: दोस्तों इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जब सपना जिद बन जाए, एक कहानी जिसने दुनिया बदल दी। स्वागत है आपका दोस्तों एक और नई कहानी में। आज की कहानी सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं, आज की कहानी है जुनून की, जिद की, और एक ऐसे इंसान की जिसे सबने मना किया लेकिन उसने खुद को कभी मना नहीं किया। चलिए आपको लेके चलते हैं थोड़ा पीछे। एक आदमी था, सपना था फिल्म बनाने का, लेकिन प्रॉब्लम, उसे फिल्म मेकिंग आती नहीं थी, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग।

स्क्रिप्ट, वो भी नहीं, बस कुछ स्केचेस, कुछ ड्राइंग्स। मतलब आज की लैंग्वेज में बोले तो विजन तो था लेकिन सिस्टम नहीं था। अब आप सोचिए, आजकल भी लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है तो काम कैसे मिलेगा, और यहां बिना एक्सपीरियंस के एक बंदा फिल्म बनाने निकला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने डिसाइड किया इस फिल्म में ना गाने होंगे, ना फाइट्स होंगी, ना रोमांस होगा। अब इंडियन सिनेमा का बेसिक फॉर्मूला क्या है हम सब जानते हैं, थोड़ा प्यार, थोड़ी मार, थोड़ा डांस। यहां यहां ये सब कुछ भी नहीं था दोस्तों। ये आज का रिस्क नहीं था, ये उस जमाने का रिस्क था जब लोग एक्सपेरिमेंट से डरते थे। और फिर कास्टिंग की बारी आई। आप एक्सपेक्ट करेंगे बिग स्टार्स, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, इमेच्योर एक्टर्स लिए, कुछ थिएटर वाले और एक फिल्म लीड। सब रेडी हो गए, वो उनसे मिला पड़ोसी की छत पर। जी हाँ, बंदा कैजुअली छत पर दिखा और ये फिल्म मेकर बोला ये परफेक्ट है। अगर आज होता तो लोग बोलते इंस्टाग्राम हैंडल क्या है इसका, कितने फॉलोअर्स हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ आंखों से टैलेंट पहचाना जाता था। और एक रूल, सेट पर कोई मेकअप नहीं करेगा। अब एक्टर्स सोच रहे होंगे हम आए क्यों हैं, लेकिन उसका विजन क्लियर था, रियल लोग, रियल इमोशंस, रियल कहानी। और शूटिंग स्टूडियो में नहीं, आउटडोर रियल लोकेशंस पर। उस जमाने में ये ऑलमोस्ट एक रिबेलियन जैसा था, एक रेवोल्यूशन जैसा था। और सिनेमेटोग्राफर कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं, 21 साल का एक स्टिल फोटोग्राफर जिसे फिल्म कैमरा चलाना भी नहीं आता था। तो दोस्तों, अब आप ऑनेस्टली बताओ, अगर आप उस टाइम पे होते तो क्या बोलते, ये तो पक्का फ्लॉप है, यही ना। और वही सबने बोला, ये डिजास्टर है, ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, ये सपना टूट जाएगा। लेकिन सपना जब जिद बन जाए ना, तो दुनिया की आवाज धीमी पड़ जाती है दोस्तों। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पैसे। कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई फंडिंग नहीं, लेकिन सपना, सपना तो जिंदा है। तो उसने क्या किया, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लिया और शूटिंग शुरू की। थोड़ा शूट हुआ, पैसे खत्म, अब क्या करते, छोड़ दो। नहीं, उसने नहीं छोड़ा, अपना ग्रामोफोन रिकॉर्ड कलेक्शन बेच दिया। सोचिए, आपकी फेवरेट चीजें, आपका पैशन, सब बेचकर सिर्फ एक सपने के लिए आप चलते जा रहे हैं। फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म, अब तो बस हो गया ना, आपको यही लगेगा। लेकिन नहीं, यहां कहानी और फिल्मी हो जाती है। उसने अपनी वाइफ के गहने तक गिरवी रख दिए। ये सिर्फ लाइफ स्ट्रगल नहीं है दोस्तों, ये सैक्रिफाइस है। और ये सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का सपना बन चुका था। फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म, और इस बार सब रुक गया। 1 साल तक कुछ नहीं, कोई होप नहीं, कोई पैसा नहीं, बस एक अधूरी फिल्म। और एक आदमी जो शायद थोड़ा थक गया था, लेकिन रुका फिर भी नहीं। जिंदगी का सबसे टफ फेज कौन सा होता है आप जानते हैं? आप सब सोच रहे होंगे जब आप फेल हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, जब आप वेट करते रहते हो और फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता। वो 1 साल सिर्फ इंतजार था, और फिर एक मिरेकल हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग दी। लेकिन ट्विस्ट सुनो, उन्हें लगा ये फिल्म नहीं एक डॉक्यूमेंट्री है रूरल डेवलपमेंट पर, क्योंकि टाइटल ऐसा लग रहा था। दोस्तों, कभी कभी लोग गलत समझकर भी सही काम कर ही देते हैं, और इस बार उस गलत समझ ने एक मास्टरपीस को जन्म दिया। फिल्म कंप्लीट हुई, 3 साल लगे, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, डाउट, सब कुछ था।
और फिर रिलीज हुई पाथेर पंचाली। इस फिल्म के क्रिएटर, खैर नाम की जरूरत नहीं क्योंकि हम सब जानते हैं, द ग्रेट सत्यजीत रे। दोस्तों रिलीज के बाद क्या हुआ, लोग चुप हो गए, क्रिटिक्स हैरान हो गए और दुनिया ने कहा ये जीनियस है। जो लोग बोल रहे थे डिजास्टर है, वही लोग बोलने लगे मास्टरपीस है। दोस्तों डिफरेंस क्या था, फिल्म नहीं बदली, लोगों की नजर बदल गई। और आज की सबसे बड़ी बात, अगर सत्यजीत रे ने हार मान ली होती ना, तो क्या होता, ना ये फिल्म होती, ना ये कहानी होती, और ना ही दुनिया को पता चलता कि असली सिनेमा क्या होता है। दोस्तों हर किसी के पास एक पाथेर पंचाली होती है, एक सपना जो थोड़ा अलग होता है, जिसे लोग समझते नहीं, जिसे लोग रिस्की भी कहते हैं। आजकल हम सब क्या करते हैं, आइडिया आया, गूगल किया, इज दिस अ गुड आइडिया, दो लोग बोलते हैं नो और हम बोलते हैं छोड़ो यार, कौन चलेगा इस पे आगे। अगर रे सर भी गूगल करते तो क्या होता, आंसर आता हाईली रिस्की, नॉट रिकमेंडेड, और कहानी वहीं खत्म। लेकिन आज की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि सपने परफेक्ट नहीं होते, कंडीशंस भी परफेक्ट नहीं होती और लोग भी कई बार आपको सपोर्ट नहीं करते। सब जगह से नॉन रेकमेंडेशन का ही कमेंट आता है, लेकिन अगर आप रुकते नहीं, अगर आप कन्विंस्ड हैं, तो कहानी बन जाती है, मिसालें बन जाती हैं और हिस्ट्री क्रिएट होती है। इसी के साथ ये आज की इंस्पायरिंग फिल्मी और यादों से जुड़ी कहानी यहीं समाप्त करते हैं। सपने देखते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और हमेशा याद रखिए, जिद अगर सच्ची हो तो कहानी दुनिया लिखती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हर चीज का जुगाड़ एक्सपर्ट, ये बंदा बोलता है तू टेंशन मत ले, जुगाड़ हो जाएगा। और लास्ट में जुगाड़ ये होता है, चल कल देखते हैं। What?

एक आवाज जो पर्दे के पीछे थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। आज हम आवाजों की कहानी सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक आवाज है और फिर एक और आवाज है और फिर एक तीसरी आवाज है। अब मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गाना हम सुनते हैं उसके पीछे कितनी कहानियां होती हैं? क्योंकि दोस्तों, हर सुर के पीछे एक स्ट्रगल होता है, एक कहानी होती है, एक इंसान होता है। आज की कहानी भी ऐसी एक आवाज से शुरू होती है। एक ऐसा वक्त था जब फिल्म्स में एक्टर्स खुद गाते थे। जी हाँ, ना कोई प्लेबैक सिंगर, ना कोई रिकॉर्डिंग मैजिक। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही गा रहा है, और उस जमाने में एक नाम था, अशोक कुमार। उन्होंने कई गाने गाए और फिर उन्हीं गानों को एक और आवाज ने अमर कर दिया। कौन? द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स, किशोर कुमार। उनकी आवाज, उनका अंदाज आज भी दिल को छू जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी ना अशोक कुमार की है ना किशोर कुमार की। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने इन आवाजों को जन्म दिया। एक कंपोजर, एक क्रिएटर, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक पाइनियर। उनका नाम था सरस्वती देवी, लेकिन ये नाम उन्हें दिया गया था। उनका असली नाम था खुर्शीद मिनोचर होमजी। और दोस्तों, यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक डिसीजन जो बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें हायर किया गया था बॉम्बे टॉकीज ने, उस जमाने का एक बहुत बड़ा स्टूडियो। एक सपना, एक मौका। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी, और सिर्फ औरत नहीं, एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जहां म्यूजिक इंडस्ट्री में आना एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता था। बोर्ड मेंबर्स ने कहा, ये ठीक नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, ये काम उनके लिए नहीं है। दोस्तों सोचिए, टैलेंट होने के बाद भी सिर्फ इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि आप एक औरत हो और आपका सरनेम मैच नहीं कर रहा। लेकिन हर कहानी में एक इंसान होता है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है, और यहां भी वही हुआ। यहां वो इंसान थे हिमांशु रॉय। उन्होंने कहा, नहीं, यही हायर होंगी। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन और क्लियर विजन, लेकिन एक कंडीशन के साथ, नाम बदलना पड़ेगा। और खुर्शीद बन गई सरस्वती देवी। दोस्तों, ये सिर्फ नाम चेंज नहीं था, ये एक आइडेंटिटी का कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन कभी कभी अंदर का जुनून बाहर के नाम से बहुत बड़ा होता है, और इस तरह सरस्वती देवी बनी इंडिया की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर। दोस्तों, आज जब हम फीमेल कंपोजर्स की बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल बात लगती है, लेकिन उस वक्त ये रेवोल्यूशन

0: था। कुछ सालों बाद एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। लीड एक्ट्रेस बीमार थी, उन्हें जोर की खांसी थी और वो गाना नहीं गा पा रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म रुक नहीं सकती थी, टाइम नहीं है। सॉल्यूशन, क्या करें क्या करें क्या करें? दोस्तों, यहीं से आता है एक ऐसा मोमेंट जिसने सिनेमा की हिस्ट्री बदल दी। हिमांशु राय ने कहा, एक काम करते हैं, गाना कोई और गाएगा, एक्ट्रेस सिर्फ लिप सिंक करेगी। और गाएगा कौन? सरस्वती देवी। पर्दे के पीछे से वो गाती रही और स्टेज पर एक्ट्रेस उस आवाज को जीती रही। दोस्तों, ये था इंडिया का पहला प्लेबैक सिंगिंग मोमेंट। सोचिए, आज हम जितने भी गाने सुनते हैं, लता मंगेशकर जी से लेकर किशोर कुमार जी से लेकर रफी साहब से लेकर अरिजीत सिंह तक, सबकी फाउंडेशन उस एक मोमेंट ने डिफाइन की। कितनी अजीब बात है ना, आवाज उनकी लेकिन चेहरा किसी और का, टैलेंट उनका लेकिन क्रेडिट हमेशा सामने वाले को मिलता। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, उन्होंने बस क्रिएट करना कंटिन्यू रखा। और दोस्तों, यही असली ग्रेटनेस होती है। जिंदगी में कई लोग होते हैं जो फ्रंट में नहीं होते, स्पॉटलाइट में भी नहीं होते, लेकिन उनके बिना कहानी अधूरी होती है। जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक राइटर, एक टेक्नीशियन और कभी कभी एक आवाज जो पर्दे के पीछे होती है। आजकल क्या होता है, रील बनानी है तो पहले कैमरा सेट, फिर लाइटिंग, फिर फिल्टर, फिर कैप्शन, जस्ट बीइंग नेचुरल। और उस जमाने में ना फिल्टर ना ऑटो ट्यून, सिर्फ प्योर अनफिल्टर्ड टैलेंट। दोस्तों, आज जब आप कोई गाना सुनो ना, तो सिर्फ सिंगर को याद मत करना, थोड़ा सा रुक कर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है, किसने कंपोज किया, किसने चांस दिया, किसने रिस्क लिया और किसने पर्दे के पीछे रहकर हिस्ट्री लिख दी। क्योंकि हर आवाज जो सुनाई देती है ना, उसके पीछे एक और आवाज होती है जो कभी सुनाई नहीं देती, बट जिसके बिना वो कहानी अधूरी होती है, वो आवाज अधूरी होती है। इसी के साथ आज का ये सोलफुल, म्यूजिकल और दिल को छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली स्टोरी तक के लिए गाने सुनते रहिए, गुनगुनाते भी रहिए और महसूस भी करते रहिए।
1: ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी, कभी पहन लेता हूं कभी उतार देता हूं, बस यही पेश कर रहा हूं। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं, जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा, जो याद रहेगा सिर्फ इतना।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ऑनलाइन एक्टिव, रिप्लाई इनएक्टिव। ऑनलाइन ग्रीन डॉट फुल ऑन है पर रिप्लाई जीरो। ऐसे लोग मैसेज नहीं पढ़ते, सोच के रिप्लाई डिले करते हैं।

पादुकोने। नाम सुनते ही एक ही कहानी, एक ही चेहरा सामने आता है। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूं। अगर मैं बोलूं पादुकोने, तो आपके दिमाग में कौन आता है? जी हां, मुझे पता है, आप सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, दीपिका पादुकोने, द ग्रेसफुल ब्यूटिफुल सुपरस्टार। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी उनकी नहीं, आज की कहानी है एक और पादुकोने की, जो स्क्रीन पर कम दिखे लेकिन सिनेमा के दिल में हमेशा बस गए। एक ऐसा नाम, गुरुदत्त, जिनका असली नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोने। और बिलीव कीजिए, इनकी कहानी इतनी फिल्मी है कि अगर कोई उसे लिखता और उस पर फिल्म बनती तो लोग कहते ओवर फिल्मीनेस हो गई भाई। लेकिन ये सब कहानी नहीं, उनका जिया हुआ सच है। सीन वन, एक अजीब सी मुलाकात। सोचिए, एक फिल्म सेट है, दो यंग लड़के, दोनों नए, एक एक्टर दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर, दोनों पहली बार मिल रहे हैं, एकदम फॉर्मल सी बात हो रही है, हेलो हाय कैसे हो, द फॉर्मल एक्सचेंज। और फिर जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो दोनों एक साथ रुकते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक साथ एक दूसरे की शर्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। क्यों? धोबी ने कपड़े उल्टे दे दिए थे, उनकी शर्ट्स एक्सचेंज हो गई थी और बस दोनों हंस पड़े। ऐसे हंस पड़े कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन फ्रेंडशिप में बदल गई और फिर एक प्यारा सा हग। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स इतनी सिंपल गलतियों से शुरू होती हैं। एक प्रॉमिस जो हिस्ट्री बन गया, उसी दिन दोनों ने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया। एक्टर बोला, कल को अगर मैं प्रोड्यूसर बना तो तुझे डायरेक्टर बनाऊंगा। और असिस्टेंट डायरेक्टर बोला, कल को अगर मुझे डायरेक्शन मिला तो मेरी पहली फिल्म का हीरो तू होगा। अब ऑनेस्टली बताओ, ऐसे प्रॉमिसेस हम सब करते हैं, भाई तू सेटल हो जा फिर देख, कल को बड़ा आदमी बनना याद रखना। लेकिन कितने लोग निभाते हैं? दोस्तों, इन दोनों ने ये प्रॉमिस निभाया। और वो एक्टर कौन था? गेस कीजिए, सोचिए सोचिए, द ग्रेट देवानंद। और वो असिस्टेंट डायरेक्टर कौन था? खैर, इसमें कोई गैसेस नहीं, हमारे अपने द ग्रेटेस्ट गुरुदत्त साहब, और उनकी फिल्म बाजी। और रिजल्ट ऑफ कोर्स, एक ब्लॉकबस्टर। देवानंद सुपरस्टार बन गए और गुरुदत्त एक लेजेंड बनने की राह पर चल पड़े। मैजिक ऑफ टीम वर्क इसे कहते हैं दोस्तों। गुरुदत्त सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, वो एक आर्टिस्ट थे, जो लोगों को पहचानते थे, टैलेंट को समझते थे और फिर एक ड्रीम टीम बनाते थे। एक दिन शूटिंग चल रही थी, एक सीन था और गुरुदत्त को वो पसंद नहीं आ रहा था। वो डिस्कशन कर रहे थे, ये सीन वीक है, प्रॉब्लम्स हैं, खराब है, सही नहीं जा रहा। तभी एक यंग लड़का जो बस सेट पर था आगे आता है और बिना परमिशन अपनी बात बोल देता है। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में नॉर्मली क्या होता है, हम सब जानते हैं, कौन हो तुम भाई, चुप रहो। लेकिन गुरुदत्त ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सुना, और सिर्फ सुना ही नहीं, समझा। और वो तुरंत बोले, तुम मेरी नेक्स्ट फिल्म लिखोगे। वो लड़का था अबरार अलवी। और फिर जो फिल्म्स आईं, वो हम सब जानते हैं कि सिनेमा के आर्काइव्स की जेम्स थीं और आज भी हैं। प्यासा, कागज के फूल, चौधवी का चांद और साहेब बीवी और गुलाम। दोस्तों, ये सिर्फ फिल्म्स नहीं, जैसे मैंने कहा, ये इमोशंस हैं, क्लासिक्स हैं, हिस्ट्री है। अब सुनते हैं एक और कमाल की पार्टनरशिप के बारे में, वीके मूर्ति जी, एक यंग सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने एक टेक्निकल शॉट सजेस्ट किया और उसे एक ही टेक में परफेक्ट कर दिया। गुरुदत्त बहुत इंप्रेस हुए और फिर हिस्ट्री बन गई। दोनों ने मिलकर

इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक विजुअल्स क्रिएट किए, जैसे वो सन बीम शॉट, जी हां कागज के फूल का वो लेजेंडरी क्लाइमैक्स, प्यासा जहां गुरुदत्त की सिलहूट लाइट के अगेंस्ट होती है, एक सिंबल बन जाती है, एक फीलिंग बन जाती है। दोस्तों ये सिर्फ शूटिंग नहीं थी, ये पेंटिंग्स थी रोशनी और अंधेरे की, ब्लैक एंड व्हाइट का जादू। आज हम कलर सिनेमा के आदि हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट में इतनी गहराई से क्रिएट करना, वो आर्ट था, लाइट और शैडो का खेल था, इमोशंस को बिना डायलॉग के दिखाना, ये सब गुरुदत्त और उनकी टीम ने मास्टर किया। ये कहानी सिर्फ एक डायरेक्टर की नहीं है, ये कहानी है उन दोस्तियों की, उन ट्रस्ट की और उन टैलेंट्स को पहचानने की। एक धोबी की गलती, एक छत पर मिलना, एक अननोन राइटर की हिम्मत और एक सिनेमाटोग्राफर का आइडिया। एक इंसान जो सबको चांस देता गया और एंड रिजल्ट लेजेंडरी। आज

अब जब आप पादुकों ने सुनो तो सिर्फ एक नाम याद मत कीजिएगा, एक कहानी याद करिएगा, एक जर्नी याद करिएगा और एक इंसान को याद करिएगा जिन्होंने सिनेमा को फील करना सिखाया। मैं हूं आपकी दोस्त और अगली कहानी तक के लिए अपने आसपास के लोगों को देखिए। हो सकता है आपके पास भी कोई नेक्स्ट गुरुदत्त हो, बस आपको पहचानने की देर है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: एक बार और सोने वाला, अलार्म बजता है उठता नहीं, दूसरा अलार्म इग्नोर, तीसरे अलार्म के बाद बस 5 मिनट और वो 5 मिनट सीधा 1 घंटा बन जाता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, कई बार मैंने कई लोगों को वॉकिंग करने के दौरान यानी कि चलने के दौरान पीछे की तरफ चलते हुए देखा, तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं ये। थोड़ा बहुत तो अंदाजा था कि ये भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन आइए जानते हैं इसके कुछ और सच। सो बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की ओर चलने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इससे विभिन्न मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इससे शरीर के संतुलन और समन्वय में सुधार होता है। बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की तरफ चलना बुजुर्गों, वयस्कों या चोट से उबरने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि ये गिरने के जोखिम को कम करने में मदद करता है। पीछे की ओर चलने से घुटनों और पीठ के नीचे हिस्से पर तनाव कम हो जाता है। क्योंकि चलने के लिए छोटे कदमों की लंबाई की आवश्यकता होती है, इसलिए आगे चलने या दौड़ने की तुलना में जोड़ों पर कम प्रभाव पड़ता है। बैकवर्ड वॉकिंग मानसिक स्वास्थ्य जैसे दिमाग तेज होना, एकाग्रता और यहां तक कि मूड सुधार में भी योगदान करता है। पीछे की ओर चलने के अभ्यास को फिटनेस दिनचर्या में शामिल करना बड़ा आसान है और उसे घर के अंदर या बाहर भी किया जा सकता है। ये गति में बदलाव और वर्कआउट की विविधता में शामिल है, जिससे रोजाना व्यायाम करना दिलचस्प और प्रेरक भी बन सकता है। इस संबंध में फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह आप ले सकते हैं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस बारे में? विशेषज्ञ कहते हैं कि मांसपेशियों की मजबूती से लेकर जोड़ों के तनाव को कम करने तक बैकवर्ड वॉकिंग बड़ी फायदेमंद है। क्योंकि पीछे चलने के लिए छोटे कदमों की जरूरत होती है, इसलिए जोड़ों पर दबाव भी कम पड़ता है। मजेदार बात हुई।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे

मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

कैसे हैं दोस्तों, आइए एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति किसी कंसल्टेंट के पास गया, यानी कि सलाहकार, और उससे पूछने लगा कि भैया ये बताइए, कंसल्टेंसी यानी कि सलाहकारिता क्या होती है। अब देखिए, जो कंसल्टेंट महोदय थे उन्होंने कहा, मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लो कि दो लोग मेरे पास आते हैं, एक तो बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन है और दूसरा बहुत ही गंदा है, धूल से भरा हुआ है, बाल एकदम डर्टी हैं, धूल में सना हुआ है। अब मैंने दोनों को कहा कि जाइए और नहा लीजिए। अब बताओ बेटा कि कौन नहाएगा? तो पहले स्टूडेंट ने पहले ही कहा कि जो डर्टी है, जो बहुत ही गंदा है, जिस पे धूल लगी हुई है, जो कीचड़ से सना हुआ है, वही तो नहाएगा। तब सलाहकार ने यानी कि कंसल्टेंट ने कहा, नहीं सुनो, क्लीन पर्सन जो नहा धो के आया है, साफ सुथरा है, वो नहाएगा, क्योंकि उसको आदत है नहाने की, साफ सुथरा रहने की। जबकि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गंदा है, उसको तो नहाने धोने की इंपॉर्टेंस यानी कि उसकी महत्ता के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो अब बताओ कौन नहाएगा? तब वापस से उस स्टूडेंट ने, उस व्यक्ति ने कहा, जो साफ सुथरा व्यक्ति है ना सर, वही नहाएगा। तब कंसल्टेंट ने वापस कहा, नहीं, जो गंदा बहुत ही मैला कुचैला सा व्यक्ति है, वो नहाएगा, क्योंकि उसको तो जरूरत है ना साफ सफाई करने की। तो चलो अब बताओ कौन नहाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, उस स्टूडेंट ने कहा कि सर, जो मैले कुचैले कपड़ों में है, बहुत ज्यादा गंदा है, वही नहाएगा। कंसल्टेंट ने कहा, अरे नहीं बेटे, दोनों नहाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को तो नहाने की और साफ सुथरा रहने की आदत है और दूसरे व्यक्ति को इस वक्त नहा धोकर साफ सुथरा हो जाने की जरूरत है। तो चलो मुझे बताओ कौन नहाएगा? अब की बार व्यक्ति बहुत परेशान होकर बोला, सर दोनों ही नहाएंगे। तब उस सलाहकार ने, कंसल्टेंट ने दोबारा कहा, गलत है बेटे, कोई नहीं नहाएगा, क्योंकि जो गंदा है उसे तो नहाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको तो जरूरत ही नहीं है साफ सुथरा होने की, और जो साफ सुथरा व्यक्ति है वो तो पहले से ही नहा धो के आया है, साफ सुथरा होके आया है। तो अब बताइए कौन नहाएगा? अब की बार तो वो स्टूडेंट, वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और उसने बोला, सर आप हर बार अपना जवाब बदल देते हैं, हर बार आपका जवाब सही लगता है, अब हमें पता ही नहीं कि सही जवाब है कि आप ही बताएं। तब उस सलाहकार ने, उस कंसल्टेंट ने कहा, बेटा इसी को कंसल्टेंसी कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि रियलिटी यानी कि सच्चाई क्या है, जरूरी ये है कि मैं एक ही सच्चाई को कितनी अलग अलग तरह से सामने रख कर तुम्हें कंफ्यूज कर सकता हूं। इसी को कहते हैं कंसल्टेंसी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार? रेडियो के साथ

लीजिए दोस्तों, मिलिए डॉक्टर प्रदीप सेठी जी से। आजादी के 7.5 दशक में हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है, इसे देखना है तो गांव में जाइए और किसी स्मृति समृद्ध बुजुर्ग के पास बैठिए, किसी ऐसे बुजुर्ग के पास बैठिए जिनकी याददाश्त अच्छी हो, मजबूत हो। तब आपको सन 1947 से लेकर 2024 तक का देश साफ साफ दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान महानगरों और शहरों में नहीं है, अपने 6.5 लाख से ज्यादा गांवों में है, मगर इन गांवों की एक टीस बहुत पुरानी है। महानगर और बड़े शहरों ने उनकी अनगिनत संतानों को अपने मोहपाश में ऐसा फंसाया है कि वे अपनी माटी का कर्ज उतारना भी भूल गए हैं। लेकिन डॉक्टर प्रदीप सेठी ने जिस तरह से अपनी माटी का कर्ज अदा किया, उनका गांव पुष्ट दर पुष्ट इसके लिए उन पर नाज करेगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव है, बेरुनपदी। करीब 44 साल पहले इसी गांव के एक बेहद गरीब परिवार में प्रदीप पैदा हुए। तब ओडिशा देश के अति पिछड़े राज्यों में शामिल था। जाहिर है बेरुनपदी भी सड़क, बिजली, अस्पताल, साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से तो बहुत दूर था। प्रदीप के परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो उन्हें फाका कशी से ही गुजरना पड़ता था। एक जोड़े कपड़े में कई कई हफ्ते निकल जाते थे। मगर ये नियति अकेले उन्हीं के परिवार की तो नहीं थी ना। ऐसे में सभी अभावग्रस्त परिवार एक दूसरे को सब्र और उम्मीद की डोर थमाते रहते थे। राहत की बात बस इतनी सी थी कि 1955 से गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा थी और प्रदीप के पिता घनघोर गरीबी के बावजूद बेटे को कभी पढ़ने लिखने से नहीं रोकते थे। हालांकि उन्हें कई बार स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती क्योंकि मजदूर पिता कभी गाय चराने तो कभी खेतों में घास छीलने की जिम्मेदारी उन्हें दे देते थे। इन सब मुसीबतों के बावजूद प्रदीप की पढ़ाई में रुचि गहरी होती ही गई। करीब 12 साल की उम्र में वो जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने गए वहां अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। इससे पहले तो वो सिर्फ उड़िया सुनते थे और बोलते थे। पहली बार यहां उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी सीखी। शुरू शुरू में वो कुछ हिचके, थोड़े झेपे, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की चाह ने उनका रास्ता आसान कर दिया। बहुत जल्द ही शिक्षकों की निगाह में प्रदीप की मेधा आ गई, उन्हें भरपूर प्रोत्साहन दिया। फिर क्या था, छात्र की लगन और शिक्षकों के सहयोग ने एक गरीब बच्चे के दिन बदल दिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदीप बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। 10वीं के बाद से ही उनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा आ गई थी, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। प्रदीप ने अपनी पढ़ाई लिखाई से पिता को गौरव के कई पल दिए, इसलिए जो भी थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी बेटे की मेडिकल फीस जुटाने के लिए दांव पर लगा दी। परिवार के इस त्याग से प्रदीप बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित थे। वो परिवार की तकलीफ और संघर्ष में बराबर के शरीक रहे। उनके पास जो भी खाली वक्त होता वो उसमें किसी ना किसी तरह की दैनिक मजदूरी कर लेते। एक ऐसा मोड़ भी आया जब सारी कोशिशों के बावजूद चीजें मुश्किल होने लगी और बात उनकी झोपड़ी से निकलकर गांव के चबूतरे पर आ गई। तब गांव के कुछ समर्थ लोगों ने बड़प्पन दिखाया और वजीफे के तौर पर उन्होंने प्रदीप की लगातार मदद की। प्रदीप को हर महीने एक तय राशि मिलने लगी जिनसे वो अपनी किताबें खरीदते और हॉस्टल मेस की फीस चुकाते। अब लक्ष्य सिर्फ MBBS की डिग्री थी। वो जी जान से जुट गए। साल 2004 में MBBS की डिग्री लेने के बाद उन्होंने मास्टर्स कोर्स के लिए देश के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के गुर सीखे। जाहिर है ये ऐसा चिकित्सा क्षेत्र है
जो पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती को लेकर सजग दौलतमंदों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लिहाजा प्रदीप के पास प्रस्तावों और मरीजों की कोई कमी नहीं रही। पैसे तो खैर आने ही थे, उनके पास दुबई में क्लिनिक खोलने के लिए रोचक प्रस्ताव आया। लेकिन उसी समय उन्हें आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद की वो लाइन याद आ गई, हर मनुष्य के जीवन का एक बड़ा मकसद होता है। नौजवान प्रदीप के जीवन का मकसद सिर्फ दौलत कमाना तो नहीं था, वो अपनी जड़ों की ओर मुड़े। कैंसर से पीड़ित पिता की दिली तमन्ना थी कि गांव में उनका एक घर होना था। प्रदीप ने घर की तामीर करवाई, मगर उनके बनने के चंद महीनों बाद ही वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद प्रदीप ने साल 2016 में उस घर को एक कोचिंग सेंटर में बदल दिया, ताकि गांव और आसपास के बच्चे वहां आकर गणित और अंग्रेजी सीख सके। इसके बाद बकायदा प्रशिक्षित शिक्षक रख दिए गए वहां। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में इस एक कोचिंग सेंटर से आई तब्दीली देखकर डॉक्टर प्रदीप को गहरा सुकून मिला। अब उन्होंने गांव में एक ऐसा स्कूल खोलने का फैसला किया जो गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलवा सके। उन्होंने गांव की उसी जमीन पर स्कूल बनाने की शुरुआत की जहां कभी दैनिक मजदूरी किया करते थे वो। गांव वालों ने अपने सपूत का बढ़ चढ़कर साथ दिया। कई लोगों ने स्कूल के लिए अपनी अपनी जमीनें दान में दे दी। करीब 10 एकड़ में पिछले साल ही उत्कल गौरव इंटरनेशनल स्कूल वजूद में आ गया। फिलहाल इसमें 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इसकी क्षमता 2500 बच्चों को 12वीं तक शिक्षा देने की है। डॉक्टर प्रदीप सेठी आगे अन्य इलाकों में भी स्कूल खोलेंगे, मगर बेरुनपदी का कर्ज तो उन्होंने अदा कर दिया।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और दोस्तों, हमारे किसान साथियों के लिए खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और खास तौर पर उन सेगमेंटों पर बात करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है। और श्रोता साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम तीन कंपोनेंटों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम कि हमारे किसान साथी, चूंकि मशरूम की खेती करना बड़ा मुश्किल बात तो नहीं है क्योंकि सरकार इसके लिए ट्रेनिंग्स देती है, सब्सिडी भी देती है, लेकिन मशरूम की खेती आखिरकार कैसे की जाती है इस पर हम खास बातचीत करेंगे। साथ साथ में हम सीप की जो खेती रहती है यानी मोतियों की खेती रहती है, अभी आपने सुना होगा कि मोतियों की खेती कैसी होती होगी, उस पर भी आज हम जिक्र करेंगे। और साथ साथ में हम सफल किसान की कहानी हम लेकर आएंगे और साथ में एक और कंपोनेंट जोड़ना चाहेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कि केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना आखिरकार क्या है, किसानों को के आय को बढ़ाने के लिए, पशुपालन को बढ़ाने के लिए किस तरीके की योजना है, कैसे हमारे किसान साथी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, तीनों चारों कंपोनेंटों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं अपने किसान साथियों से, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि बरसात का मौसम जैसे ही आए और हम अपनी फसल लगाना स्टार्ट कर दें, लेकिन उन किसान साथियों से कहना चाहेंगे कि इससे पहले हम तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसी भी हम कार्य को करते हैं उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें इस कार्य को करना होगा, इस कार्य को करने के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे इसको किया जाता है, ये सारी बातचीत हम ध्यान में रखते हैं, एक सोचते हैं कि कैसे खेती की जाती है, कैसे इस काम को किया जाता है। ऐसे ही खेती की बात आती है कि हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि आगे चलकर हम भविष्य में या फिर आगे चलकर कौन सी खेती करें, कैसे करें, क्योंकि उनके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, पथरीला इलाका है, सीमित खेती है, सिंचाई के ज्यादा साधन नहीं है। किसान साथी सोच रहे हैं क्या करें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM लेकर आते हैं आपके लिए नई नई जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से। और बहुत सारी बातें हम अपने श्रोता साथियों को बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बातचीत और बहुत सारे मुद्दों को रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM जल्द शुरू करने वाला है और आप जुड़े रहिए हमारे रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM से और सुनते रहिए आप अपने मन पसंदीदा कार्यक्रमों को। चलिए, आपको हम देर नहीं करवाते हैं और हमारे सेगमेंटों का समय होता है और सुनते हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम आज जानेंगे कि किस तरीके से मशरूम की खेती की जाती है, कौन सा उपयुक्त समय रहता है हमारे किसान साथियों के लिए, कैसे की जाती है, आइए इस खास रिपोर्ट को। और साथ साथ में हम सुनेंगे इसमें केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में। तो ऐसे ही बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपना रेडियो आपनी बात है।
2: आज मशरूम फार्मिंग में सरकार द्वारा मिल रहे प्रोत्साहन एवं कौशल विकास के फलस्वरूप एक बड़े वर्ग ने इसकी कृषि को

30 से 40 डिग्री तक का तापमान अनुकूल माना जाता है। साथ ही मशरूम के विकास के लिए नमी की भी काफी आवश्यकता होती है। हवा में 85 से 90 प्रतिशत तक की आर्द्रता बनाए रखना एक चैलेंज हो सकता है। अमूमन मशरूम की खेती के लिए मई से अक्टूबर तक का समय बिल्कुल उपयुक्त समझा जाता है। हालांकि आवश्यक वातावरण एवं माहौल बना आप 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। शुरुआती चरण में यदि आप मशरूम की खेती छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, तो 400 स्क्वायर फीट तक की जगह आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भारत में मशरूम की खेती के लिए मूलतः तीन तरह की क्यारियां बनाई जाती हैं। इसमें पहला है लटकाकर। इसमें मशरूम के लिए कंपोस्ट का निर्माण कर प्लास्टिक बैग में कंपोस्ट रख बीच में बीज की एक परत बना लें। ऊपर से कंपोस्ट की परत दर परत में बीज को रोपकर प्लास्टिक का मुंह धागे से बांध दें। किसी स्टैंड के सहारे कंपोस्ट को झुला कर रख दें। ये विधि खासकर उनके लिए काफी उपयुक्त है जबकि आपके पास जगह का अभाव हो। मशरूम उगाने की दूसरी विधि है जमीन में क्यारियां बनाकर। जमीन में क्यारियां बना कंपोस्ट को फैलाकर बीज को रोपा जाता है। समय समय पर सिंचाई एवं आवश्यक देखभाल के फलस्वरूप मशरूम की खेती की जाती है। और मशरूम उगाने की तीसरी विधि है बांस का बेड बनाकर। यदि आप जमीन में क्यारियां बना खेती नहीं करना चाहते, तो फिर आप बांस का मचान बना सकते हैं। बांस अथवा किसी लकड़ी की मदद से जमीन से थोड़ा ऊपर बांस का बेड अथवा मचान बना उस पर मशरूम के बीज बो सकते हैं। अब आपको जरूरत होगी मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट की तैयारी करने की। मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कंपोस्ट की तैयारी, जिसमें बीजों को बोया जाता है। भारत में ज्यादातर कंपोस्ट की तैयारी में पुआल का उपयोग किया जाता है। पुआल बाजार से काफी कम कीमत पर आसानी से खरीदा जा सकता है। अब बारी है पुआल को कंपोस्ट में बदलने की। शुरुआती दौर में 5 से 10 किलो तक पुआल से काम चल जाएगा। सबसे पहले भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। ध्यान दे, टुकड़ा न बहुत छोटा न बहुत बड़ा हो। आधा इंच का पुआल आदर्श माना जाता है। अब भूसे को किसी टब अथवा टंकी में पानी से भर रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ दे। ध्यान दे, पुआल में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ाने के लिए आप सॉल्युबल लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके नजदीकी खाद्य भंडार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रात भर कंपोस्ट को भिगोने के बाद अब इस कंपोस्ट को निकालकर जमीन पर सूखने के लिए छोड़ दें। ध्यान दें, पुआल न ज्यादा गीला न ही ज्यादा सूखा रहे। 2 से 3 घंटे बाद पुआल को हाथ से दबाकर चेक कर लें। यदि काफी दबाने पर थोड़ा पानी निकल रहा है, तो ये कंपोस्ट आपके लिए आदर्श है। आप चाहें तो इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस कंटेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाई गई क्यारियों में अब आप इस कंपोस्ट को फैला दें एवं थोड़ी थोड़ी दूरी पर मशरूम के बीजों को बो दें। अब दोबारा बीजों के ऊपर एक परत कंपोस्ट की दें तथा बीज रोप दें। इस प्रकार परत दर परत कंपोस्ट के बीच में बीज रोप कर कुछ दिन के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे, कमरे का तापमान 35 से 40 डिग्री तक बना रहे। आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए हर 2 से 3 दिनों के अंतराल में पानी का छिड़काव करते रहे। मशरूम की फसल को कीट पतंगों एवं अन्य हानिकारक कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करे। ध्यान रहे, कमरा में किसी तरह की रोशनी ना पहुंचने पाए। फसल होने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है। कोशिश करें बीच बीच में आवश्यक नमी एवं कमरे का तापमान चेक करते रहें। शुरुआती दौर में 30 किलोग्राम भीगे पुआल से 5 किलो तक फ्रेश मशरूम उगाया जा सकता है। मशरूम के भंडारण एवं वितरण में ज्यादा समय ना लगाएं। आप प्लास्टिक में 100, 250, 500 ग्राम अथवा 1 किलो का पैक बना इसे या तो सीधा मार्केट में उतार दें अथवा किसी सब्जी वाले के हाथों अपनी फसल बेच दें। जरा इन बातों पर भी ध्यान दें। मशरूम के बीज को आवश्यक नमी पहुंचाने के लिए हर 2 से 3 दिनों के बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। रूम में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कंपोस्ट को छूने अथवा मशरूम के बीजों के संपर्क से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं एवं

0: कोशिश करें कमरे में जूते चप्पल इत्यादि पहनकर प्रवेश ना करें। भारत में आप इन जगहों से मशरूम की खेती करना सीख सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पूसा, दिल्ली। राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार। ओडिशा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओडिशा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, R&D सेंटर, मुरथल, सोनीपत। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन, उमरुई रोड, बोरापानी, मेघालय। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ICAR, चंपाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने सुना इस महत्वपूर्ण जानकारी को और जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, चूंकि पथरीला इलाका है तो क्या कर सकते हैं, तो मशरूम की खेती भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मशरूम की खेती कर सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं और इससे कितना लाभ होता है मशरूम की खेती करने से, ये सारी बातों को हमने जाना इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं कि जो हमारी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM, आपला रेडियो, आपनी बात है।

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले। पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके। पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशु पालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है, जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है, तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीट के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहां जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछली

0: है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं, और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का ईसी और पीएच है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पौंड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पोली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से इन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो केबीके रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं आपको उन व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने जुनून, समर्पण और जीवन अनुभवों से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अरविंद कुमार सक्सेना जी, एक ऐसा नाम जिन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में लंबी और सफल सेवाएं देने के साथ साथ संगीत के प्रति अपने प्रेम को भी हमेशा जीवित रखा। आईसीआईसीआई बैंक से सेवानिवृत्त होने से पहले आपने बैंक ऑफ राजस्थान में भी अपनी सेवाएं दी। बैंकिंग और यूनियन गतिविधियों की व्यस्तताओं के बीच भी संगीत आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बना रहा। बचपन से ही हारमोनियम वादन, शास्त्रीय संगीत की साधना और फिर वर्षों बाद दोबारा संगीत शिक्षा से जुड़ना आपकी यात्रा वास्तव में बेहद ही प्रेरणादायक रही है। आपने महेश मुसाफिर म्यूजिक एकेडमी से संगीत की नई शुरुआत की। कई मंचों पर आपने प्रस्तुतियों से श्रोताओं का दिल जीता, साथ ही गीत संगीत ग्रुप ऑफ म्यूजिक कोटा के माध्यम से संगीत प्रेमियों को एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री अरविंद कुमार जी सक्सेना का और जानते हैं उनकी जीवन यात्रा, संगीत साधना और यादगार अनुभवों के बारे में। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, मेरा भी सबको नमस्कार, श्रोताओं को और आप सबको।
1: तो चलिए अरविंद जी, शुरुआत करते हैं आपकी बातचीत से, और शुरुआत आपके बचपन से ही करते हैं। कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अर्ली एजुकेशन के बारे में हमें श्रोताओं को बताइए, जिससे पता लगे कि किस बैकग्राउंड से आप का संबंध रहा है, बताइए प्लीज।
2: मेरा जन्म झालरापाटन जिला झालावाड़ में हुआ था, और मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे।
1: अच्छा।
2: प्रारंभिक शिक्षा जो मेरी सवाई माधोपुर से हुई, क्योंकि उनका जॉब इस तरह का था, ट्रांसफर बहुत होते थे, तो उस समय वहाँ माधोपुर था, सवाई माधोपुर, तो वहां से मैंने पहली क्लास तो वहां से की। उसके बाद हम लोग कोटा ट्रांसफर हो गया पिताजी का, और उसके बाद हमेशा कोटा में ही रहे, सारी शिक्षा कोटा में ही हुई है मेरी।
1: ओके, वंडरफुल। अच्छा, तो ये बताइए, आप कोटा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी हो गया है अब तो हमारे देश का, तो आपने बताया कि आप कायस्थ परिवार से हैं, जहां संगीत का वातावरण शुरू से ही होता है। तो अभी बताइए, परिवार में भी कई लोग संगीत से जुड़े थे, कोई संगीत का शौक था, कैसे था, संगीत की परंपरा कैसे रही?
2: देखिए, मेरे घर में लगभग सभी लोग, मेरे बड़े ब्रदर को छोड़ के सभी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं। मेरी माता जो थी वो भी हारमोनियम भी बजाती थी, और ढोलक में उनके बहुत पारंगत थी।
1: अच्छा।
2: पहले मेरे तबला बजाते थे, उन्होंने बाकायदा शिक्षा ली हुई थी तबले की, और घर में सारे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सारे थे, हारमोनियम, ढोलक, तबला वगैरह, तो हम लोग शुरू से ही उसी माहौल में रहे, बड़ी

0: किसको शौक था, आपकी सिस्टर्स गाती थी या मदर
1: गानों
0: गाती थी
1: के
0: क्या?
1: सभी गाते थे, मदर भी गाती थी, सिस्टर भी गाती
0: अच्छा,
1: थी, दो
0: ओके,
1: सिस्टर हैं तो बड़ी वाली तो दोनों ही करती है, छोटी भी गाती है लेकिन वो गाती कम है, उसको भी ढोलक के अंदर मास्टरी है, ढोलक बहुत
0: ओ
1: बढ़िया बजाती है। तो
0: अरे वाह,
1: लगभग सभी हमारे परिवार में दो भाई और दो बहनें हैं, सिर्फ मेरे बड़े भाई थोड़ा सा अलग रहे, वो सुनने में रहे, कभी गाया नहीं, कभी कोई
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट बजाया नहीं, बाकी बाकी सभी लोग संगीत से जुड़े हुए थे।
0: अरे चलो, तो मैं थोड़ा सा और पूछता हूँ, आप ये बताइए आपकी बचपन की क्या यादें हैं? इनफैक्ट आपका बचपन में भी अरविंद नाम ही है घर में, या कुछ घर में आपके परिवार वाले आपको कुछ किसी और नाम से भी बुलाते हैं? कोई जैसे बचपन में नाम होते हैं ना, मुन्ना है, ऐसा इस
1: घर
0: तरह के छोटे निकनेम्स होते हैं।
1: में क्या अच्छू के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि
0: अंशु।
1: मेरे को पहले हमारे जो ताऊ जी थे उन्होंने मेरा नाम रखा था अश्वनी, अश्वनी
0: ऐश्वर्य।
1: कुमार,
0: अच्छा अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: उससे वो
0: अच्छा
1: अच्छू अच्छू कहने लगे, लेकिन मेरे को वो नाम पसंद आया नहीं, और
0: अच्छा
1: मैंने अश्वनी कुमार, जब पहली क्लास में मैं भर्ती हुआ तो मैंने अपना नाम अरविंद कुमार सक्सेना लिखा दिया,
0: ओके
1: बस
0: ओके,
1: तब से वही
0: लेकिन
1: ऑन रिकॉर्ड यही
0: लेकिन
1: है।
0: परिवार वाले तो
1: लेकिन घर
0: अंशु
1: घर
0: अंशु
1: के
0: अंशु
1: हाँ
0: बोले
1: परिवार के लोग मेरे को अच्छू के नाम से ही जानते हैं, यहाँ
0: ना,
1: तक कि
0: बिल्कुल वही।
1: मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, लाड़पुरा से, लाड़पुरा कोटा से, वहां के भी जो पुराने लोग हैं मेरे साथी संगी हैं वो इसी नाम से जानते हैं।
0: हाँ, लाड़पुरा तो रामपुरा के बाद वाली जगह है, बड़ी
1: जी हाँ
0: अच्छी,
1: जी हाँ हाँ
0: अंदर है, मतलब ओल्ड सिटी के अंदर ही है
1: ओल्ड
0: रादर।
1: सिटी में।
0: तो अरविंद जी, चलिए थोड़ा सा वातावरण को संगीतमय बनाते हैं। आपने संगीत की इतनी बात कर ली, बचपन की बात हो गई, आपकी माताजी की बात हो गई, आपकी बहनों की बात हो गई, तो कुछ क्या इच्छा हो रही है अंदर से, कोई गाना अगर हम इस स्टेज पे एक थोड़ा सा सुन लें और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं, तो थोड़ा माहौल बन जाएगा और आप भी
1: बिल्कुल
0: सहज हो जाएंगे, तो एक गाना
1: बिल्कुल
0: सुनाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ बिल्कुल।
1: एक गाना मुकेश का गाया हुआ है, वो
0: बिल्कुल
1: मैं सुनाता हूँ आपको।
0: जी।

0: नहीं, जिंदा हूँ इस तरह के गम में, जिंदगी नहीं। ये सब
1: चलिए सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये तो यहूदी फिल्म का गाना है, मेरा भी फेवरेट
0: जी
1: गाना है, मुझे बहुत
0: जी
1: पसंद है। दिलीप कुमार की पिक्चर थी और शायद मीना कुमारी थी या मधुबाला थी, लेकिन बहुत बढ़िया पिक्चर थी। और ये तो लैंडमार्क गाना है मुकेश जी का,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: मजा आ गया। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी, अब तो आप सहज हो गए होंगे। अब आई एम श्योर हमें
0: जी
1: आपसे बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिलेंगे।

0: चलिए, है ना, फिर हम इस बातचीत को जारी रखते हैं। और अच्छा, आप ये बताइए कि बैंकिंग क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्या शुरू से आपने सोचा था बैंकिंग में आएंगे, या एक इत्तफाकन आप बैंक की तरफ आ गए? कैसा रहा बैंकिंग का सफर आपका?
1: मैंने कभी भी बैंकिंग में आने की सोचा नहीं था। हालांकि मैं कॉमर्स से ही हूँ, ग्रेजुएशन मेरा कॉमर्स से ही किया था,
0: जी
1: लेकिन मैंने बैंक में आने की कभी सोचा नहीं था। लेकिन नौकरी की तलाश में था, कई जगह टेस्ट इंटरव्यू दिए और बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया।
0: ओके
1: सेवेंटी
0: ओके
1: सेवन में मैंने ज्वाइन किया था बैंक को।
0: अच्छा, 77 की ज्वाइनिंग है आपकी, वेरी
1: जी
0: गुड। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि जैसे बैंक ऑफ राजस्थान में आप रहे, जो बाद में ऑब्वियसली जाके आईसीआईसीआई बैंक में मर्ज हो गया, और थोड़ी यूनियन में भी आप सक्रिय रहे हैं, स्टेट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वगैरह भी रहे हैं, तो ये किस तरह का, ये थोड़ा चैलेंजिंग काम था आपको, कैसा रहा इसमें? आप बहुत इन्वॉल्व थे या तो मैनेजमेंट से कभी आपकी एक्टिविटी, मैनेजमेंट से आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहता था यूनियन की वजह से?
1: एक बात ये थी कि देखिए, टकराव तो निश्चित रूप से अगर आप यूनियन लीडर हैं तो मैनेजमेंट से होना ही है।
0: जी
1: लेकिन फिर भी हमारी साख ये थी कि हम जिस सीट से भी हमने कोई वचन दे दिया, हाँ कर दिया, तो हम उससे कभी उसको बिट्रे नहीं करते। ये एक हमने ईमानदारी से वो बात करी। तो मैनेजमेंट को भी हमसे बात करने में ये होता था कि जो इन्होंने कह दिया वो होके रहेगा।
0: ओके
1: ये एक हमारे साथ थी। और कभी हमने जैसे जो इसमें होता है राजनीतिक करियर, राजनीतिक पार्टियों के अंदर जैसा होता है, ऐसा हमारा कभी भी माहौल हमने होने नहीं दिया। हालांकि सब जगह राजनीति होती है, पर हमने इस तरह
0: हाँ
1: का, हमारे जो विद इन यूनियन, यूनियन के अंदर भी कुछ राइवल्स होते हैं,
0: हाँ
1: उन तक के
0: नेचुरली
1: भी हमने कभी किसी का भी काम आया हमने उसको करा के दिया है। कभी ये नहीं कि भाई ये हमारे पक्ष का आदमी नहीं है या ये हमारे पक्ष का है, ऐसा हमने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया।
0: वेरी गुड।
1: ये एक हमारी साख रही है। आखिर तक जब तक भी मर्जर हुआ तब तक भी मैं जनरल सेक्रेटरी था, और करीब 40 की एज में मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया था स्टेट का। और राजस्थान स्टेट का मतलब ये है कि बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान बेस्ड की बैंक थी,
0: बैंक
1: और उसमें बाहर तो मुश्किल से 50-60 ब्रांचेज होती थी, तकरीबन
0: राइट राइट
1: 275 ब्रांच हमारी यहाँ राजस्थान के अंदर थी।
0: जी
1: वो सारा मेरे को देखना होता था, उनका सभी कर्मचारियों का जो भी हित होते थे उनको साधने होते थे। बस ये मैनेजमेंट से तो मेरा कोर्डियल इसलिए रहा कि उनको ये विश्वास था कि अगर ये बात कुछ बात कह रहे हैं तो उसमें दम है, मैं कभी झूठी बात नहीं कहूंगा या किसी को झूठा दिलासा नहीं। मेंबर्स को भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा और वो नहीं हुआ, अगर कह दिया तो इसका मतलब होना है, पक्का है वो।
0: आप, और इसका मतलब है कि जब इस तरह की आप पर्सनैलिटी थे तो आप अपने काम के प्रति भी समर्पित थे। मैनेजमेंट को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपने काम से
1: जी
0: कोताही
1: हाँ
0: नहीं करते। बिल्कुल
1: जी हाँ, यही था। मैं 10 से 5 बिल्कुल मेरे साथी, बल्कि बड़े बड़े अफसर बन गए बाद में, तो वो यही कहते थे कि भाई आपकी वजह से हमारे तो ये, मैं कैश में हेड कैशियर रहा,
0: अच्छा अच्छा
1: तो वो
0: अच्छा
1: कहते हैं कि आपकी वजह आपने यार इतना काम ले लिया कि हमारे तो ये हाथ उंगलियां हैं जो है कांपने लगी।
0: चलिए चलिए।
1: इस तरह का रहा है। और मैनेजमेंट ने भी इस बात की सराहना की है कि मतलब जितना ये यूनियन में इन्वॉल्व है उतना ही अपने काम में भी
0: काम
1: उतना
0: के प्रति।
1: ही। जी हाँ
0: तो आप ये बताइए, इतनी व्यस्त जीवन के बावजूद आप कैसे उस दौर में भी संगीत से आपका जुड़ाव रहा? क्या उस दौर को कैसे याद करते हैं आप? उस दौर में भी संगीत से थोड़ा बैंक में भी जुड़ाव था?
1: बैंक में भी जुड़ा था, मैं तो स्कूल में भी सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी भाग लिया। बैंक के
0: अच्छा
1: अंदर मैं एक हमने क्लब बनाया हुआ था, उसमें प्रोग्राम करते थे सालाना,
0: अच्छा
1: तो उसमें मैं खाली गाया नहीं लेकिन डायरेक्शन रहता था मेरा सारा उसमें।
0: अच्छा अच्छा ओके। तो तो चलिए फिर इस पुराने दौर को जो आपने बैंक ऑफ राजस्थान का याद किया है, हमें भी याद है राजस्थान का ये प्रमुख बैंक था, तो उस दौर को याद करते हुए कोई अच्छा सा ऐसा नॉस्टैल्जिक गाना सुनाइए, जरा मजा आए हमारे को भी उस दौर को, हम लोग भी याद करें अपने पुराने दौर को बैठ के, हमारे श्रोता भी याद करें, कुछ बढ़िया सा गाना सुनाइए।
1: तलत महमूद का गाना सुनाता हूँ।
0: अरे वाह वाह वाह, तलत महमूद तो मेरे फेवरेट है, स्वागत है, स्वागत है।

0: तू समझ के क्यों मुझे।
1: चलिए सर, बहुत बढ़िया। आपने तलत महमूद की याद दिला दी। एक जमाने में तो तलत महमूद गजल के बादशाह हुआ करते थे हमारे ही फिल्म इंडस्ट्री
0: बिल्कुल
1: में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल बढ़िया, बहुत। तो एक दौर था, इनका ही दौर था। बाद में फिर ये सब आते गए एक के बाद एक में।

0: चलिए फिर हम बातचीत करते हैं। जैसे आप 1988 में आप स्वर्गीय श्री दिनेश डांगी जी से आपके संगीत सीखने की शुरुआत कैसे हुई, वो संगीत से आपने शुरुआत कैसे की सीखने
1: वो
0: की?
1: मुझे शौक था कि मैं चूंकि गाता तो था, हारमोनियम भी बजाता था, लेकिन मेरी इच्छा थी क्लासिकल सीखने की। तो इस वजह से मैंने उनसे संपर्क करके और उनसे मैंने ये सीखा। और ये उस समय मैं यूनियन में बहुत बिजी हुआ करता था और मेरे दिन रात का कोई पता नहीं होता था। कई बार पूरी पूरी रात भी जगना था, कई बार 1 बजे 2 बजे तक भी सोते थे। एम्प्लॉयज के वो बनाने होते थे, कभी डिफेंस के कागजात बनाने होते थे, तो उस वजह से काफी टाइम देना पड़ता था। लेकिन फिर भी मेरे को उन्होंने सुबह कह रखा था 7 बजे आप हारमोनियम रख के अगरबत्ती लगा के और शुरू कर देंगे। वो सात
0: अच्छा,
1: सवा 7 बजे आते थे और बस इतने दिन में कोटा में अवेलेबल होता था। और जब मैं बाहर होता था तो मेरा ये था कि जैसे ट्रेन में भी अगर मैं हूँ तो अपने बर्थ पे जब सब लोग बातचीत करना बंद कर देते, सोने का टाइम हो गया, तो अपने ऊपर ही अपना प्रैक्टिस करता था। ऊपर हमेशा ऊपर की बर्थ में रहता था ताकि
0: ओके,
1: किसी
0: हाँ,
1: को कोई जी
0: डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ,
1: हाँ तो जुनून तो था शुरू से ही।
0: तो अब जब ये आपने डांगी जी ने आपको सिखाना शुरू किया तो कौन कौन से राग उन्होंने सिखाए, या शास्त्री इनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, खास तौर से शास्त्रीय संगीत की?
1: उन्होंने यूं मेरे को यमन सिखाया, राग
0: ओके,
1: जौनपुरी सिखाया,
0: अच्छा,
1: और एक तो राग काफी सिखाया, और एक वृंदावनी सारंग करके राग वो सिखाई, राग
0: अच्छा,
1: भैरव सिखाई। हाँ ये मेरे को सिखाया था उन्होंने उस समय। एक बागेश्वरी राग, बागेश्वरी भी काफी पॉपुलर है और फिल्मी गाने तो बहुत इस पर बने हुए, ये
0: ओके
1: सिखाया।
0: ओके। तो अब इतने सालों के बाद में, फिर गैप के बाद में 2023 में आपने दोबारा संगीत सीखने की प्रेरणा, ये दोबारा कैसे आपको जैसे शौक जागा, तो फिर ये किसी ने याद दिलाया आपको या कोई
1: नहीं,
0: ट्रिगर था जिस
1: दरअसल
0: या?
1: हुआ हुआ ही हो कि जब मैं रिटायर हो गया, मैंने 13 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था।
0: ओके
1: मेरा जून था
0: ओके
1: 16th में, लेकिन मैंने
0: ओके,
1: 13 में रिटायरमेंट ले लिया था।
0: अच्छा,
1: और उसके बाद शायद कुछ कारण ये भी रहे होंगे कि मैं हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहा हूँ। अब वो जो लोनलीनेस थी, जो अकेलापन था, वो शायद ऐसा घर कर गया कि मैं काफी डिप्रेशन में चला गया था।
0: ओहो, अच्छा,
1: हाँ फिर उसके बाद मैं काफी इलाज भी चला, लेकिन वो दूरी मेरी उसी से, डिप्रेशन उसी से दूर हुआ कि मैंने संगीत शुरू किया। दूसरे मैंने 65 साल की उम्र में उर्दू सीखना शुरू किया
0: उर्दू
1: और दो
0: सीखना
1: साल
0: शुरू
1: जी
0: किया। अरे वाह,
1: हाँ
0: वाह, अच्छा, वेरी गुड,
1: तो 2 साल मैंने उर्दू की शिक्षा ली, क्योंकि
0: ओके ओके ओके,
1: इसका बहुत ज्यादा फिर पुराने फिल्मी गानों में उर्दू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है।
0: जी जी
1: तो अगर
0: बिल्कुल,
1: हमको, अब लोग कहते हैं फील आना चाहिए गाने में, वो
0: जी
1: फील
0: जी
1: हमको जब उस वर्ड का मायने ही नहीं पता तो
0: जी
1: फील
0: बिल्कुल,
1: आएगा कहाँ से। तो मुझे बहुत कंपलसरी लगा कि ये तो सीखना जरूरी है। हालांकि उर्दू का मुझे बचपन से भी शौक था और पहली जमात जितना तो मैंने पढ़ा था, पहले भी अलिफ बे वगैरह पहले भी पढ़े बचपन में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सीख पाए थे। 65 साल की उम्र में फिर मैंने ट्यूशन लगाई और 2 साल तक मैंने उसकी शिक्षा ली। अब मेरे को मतलब लिखने में, पढ़ने में, उर्दू पढ़ने में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं
0: अरे वाह,
1: है। जी
0: उर्दू उर्दू आप पढ़ लेते हो?
1: जी
0: वंडरफुल,
1: हाँ
0: दैट्स
1: पढ़
0: ग्रेट,
1: भी लेता हूँ,
0: माशाल्लाह।
1: लिख भी लेता हूँ।
0: हाँ, कायस्थ परिवारों में उर्दू तो काफी आती है, जैसे हम
1: हाँ
0: जैसे लोगों
1: हाँ
0: को भी, हमारे परिवार में फारसी वगैरह भी आती थी, नाना दादा को, लेकिन हम
1: हाँ
0: लोगों को वैसे बोलने के शब्द आते हैं, क्योंकि शेरो शायरी का
1: हाँ
0: जिनको शौक होता है उनको उर्दू आ जाती है।
1: वो बिल्कुल
0: तो हाँ, लेकिन आपने लिपि सीख ली है और आप लिख भी लेते हो, ये तो बहुत बड़ी
1: हाँ
0: बात है, ये
1: बिल्कुल
0: तो मेहनत का काम है
1: मेहनत
0: भाई।
1: करता है। अरे इसीलिए मैं कहता हूँ मैं जो भी मेरे साथी संगे संगीत के भी, मैं कहता हूँ हमेशा स्टूडेंट बन के रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: कभी भी
0: और
1: अपने
0: ये
1: को ये नहीं समझे कि हमें तो सब आता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता अपने को, 10% भी नहीं आता, बहुत कुछ है सीखने को। और हमेशा स्टूडेंट बन के रहे, विद्यार्थी बन के रहो, तो सीखने को बहुत पड़ा है। बहुत सीख सकते।
0: नहीं नहीं और ये बात आपने बहुत जोरदार कही कि जो अगर गाने के लफ्ज का मतलब आपको नहीं पता है तो कभी आपको वो फील नहीं आएगी, और खास तौर से गजलों की अदायगी में तो उर्दू काफी होती है।
1: और फिल्मी गानों में जो पुराने गाने फिल्मी है ना, उनमें भी उर्दू का इतना इस्तेमाल है कि बहुत सारे मेरे साथ में जो सीखने जाते थे, हम गाने वाने जब गाते थे फिल्मी कई बार आपस में, तो वो उसका मतलब नहीं समझते थे, गाते थे लेकिन मतलब नहीं समझते थे। हम गाते थे तो बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन मैंने कहा आपके समझ में क्या आया, वो समझ नहीं पाते थे, फिर उनको मतलब पर निकाल के बताते थे किसका ये मतलब है। जैसे इसमें एक वो मैंने गाना वहां पे LBS में हमारा प्रोग्राम हुआ था, एक LBS कॉलेज कोटा में, तो उसमें वो था बहारों ने मेरा चमन लूट कर
0: दे दिया।
1: तो उसमें एक लाइन थी, मुझे क्या पता था कभी इश्क में बाकी वो कासिद बनाते नहीं।
0: कासिद बिल्कुल सही बात है, ये देवर फिल्म का है जहां तक मुझे ध्यान है।
1: देवर का है, बिल्कुल देवर का ही मेरे
0: देवर फिल्म का गाना है, धर्मेंद्र वाली पिक्चर थी।
1: धर्मेंद्र की पिक्चर। तो अब मैंने लोगों को पूछा भाई ये रकीबों को कासिद बनाते नहीं इसका मतलब क्या है, तो लोगों को पता नहीं, गाना बहुत अच्छा है, बस गाना अच्छा है, फिर उनका मतलब समझ आए।
0: लोगों को कासिद का तो मतलब ही नहीं पता होगा कि मैसेंजर होता है उसका मतलब, वो उनको पता ही नहीं।
1: मैसेंजर होता है और रकीब मतलब कॉम्पिटिटर,
0: रकीब राइवल, राइवल राइवल
1: राइवल
0: प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी
1: प्रतिद्वंदी। हाँ जी,
0: तो इश्क में वो और उसकी पूरी पिक्चर की थीम ही ये थी देवर की। चलिए तो मजा आ गया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात रही अपनी। और मैं आपको शायद गजल के आप भी शौकीन हैं, मैं भी शौकीन हूँ, तो ये जगजीत के आने के बाद थोड़ी गजलों की भाषा सहज हुई है, सिंपल हुई है, लेकिन उससे पहले जितनी गजलें थी, भले बेगम अख्तर हो, तलत महमूद हो,
1: या
0: तो उर्दू बड़ी मतलब गाड़ी होती थी, गाड़ी होती थी तो, लेकिन चलिए। तो आपकी ये जो महेश मुसाफिर म्यूजिक एकेडमी जो आपकी शुरू हुई, इससे कैसे जुड़े आप, इससे क्या हुआ?
1: ये इन्होंने दिल्ली से शिफ्ट होके कोटा आए थे ये कोरोना के दौरान, वहां पे क्योंकि उनकी लाइव क्लासेस होती थी तो लोग वहां पे गए, जाना बंद कर दिया लोगों ने लॉकडाउन के वजह से। अच्छा। और किराया दिल्ली में चूंकि बहुत महंगे, तो 1-1.5 लाख रुपए तो उनका किराया जाता था इंस्टीट्यूट का। और वो रहने वाले भी इधर रामगंज मंडी साइड के थे, तो उनके फादर ने कहा कि भाई तुम कोटा शिफ्ट हो जाओ, कोटा सेंटर भी है, बड़ा है ना, रामगंज मंडी से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कोटा बड़ा सेंटर है तो वहां पर तुम्हारा ठीक बैठ जाएगा, और किराए वराये भी बहुत इतने अधिक नहीं है जितने मेट्रो में। तो उन्होंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट डाला ही था, तो उन्होंने कोई प्रोग्राम रखा था उसमें इनवाइट किया था उन्होंने, तो वहाँ गाने गए थे हम, तो बस वहां से उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने कहा मैं इस तरह से ये चालू कर रहा हूँ, तो मैं क्लासिकल का मुझे शौक था इसलिए मैंने दोपहर ज्वाइन कर लिया।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद ही मेरा ये सारा जो डिप्रेशन का जो सीन था वो सारा उसी के बाद खत्म हुआ।
0: ओके ओके ओके, जब आप इससे जुड़ गए। तो चलिए फिर उसी दौर को याद करते हैं, कोई अच्छा सा गीत या गजल जो भी आपकी पसंद हो सुनाइए, फिर आगे बातचीत जारी रखते हैं।
1: कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया आँख न जाने दिल पहचाने,

0: मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। ये गाना
1: चलिए
0: मेरे
1: सर,
0: मोती को बहुत पसंद है।
1: वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये तो क्लासिकल, शायद मन्ना डे जी का गाना
0: हाँ
1: है,
0: मन्ना डे गया, मन्ना डे क्लासिकल
1: मन्ना डे जी का गाना है,
0: बिल्कुल।
1: बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, थोड़ा सा मुझे तो ये तो पता है कि थोड़ा सा म्यूजिक के बिना ऐसे गाना थोड़ा सा एक सहज नहीं होता है, लेकिन चलिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत मजा आएगा।

0: तो चलिए आप थोड़ी बातचीत को आगे चलते हैं। आप स्टेज शोज पे आते हैं, आपके आपने स्टेज शो में भी भाग लिए हैं, तो पहला स्टेज शो कौन सा था, कैसा अनुभव था आपका जब पहली बार आपने स्टेज शो में भाग लिया?
1: देखिए, वैसे तो मैं स्कूल टाइम में भी मैंने स्टेज पे गाया हुआ है
0: जी,
1: और उसके बाद जो यहाँ पे स्टेज शो किया हमने तो स्क्वायर 36 में हमने पहला शो किया था।
0: अच्छा,
1: वहां पर जो गाने गाए थे तो यही था जो आपको अभी सुनाया मैंने, जाने कहाँ गए वो दिन। उसके अलावा एक मेरे कुलीग थी वहां पे संगीत साहब में सीखती थी, उषा पोरवाल जी, उनके साथ मैंने ये डुएट किया था, ये दिल तुम भी मुझे लगता नहीं।
0: ओके ओके ओके।
1: उसके बाद फिर ये MBS में जो प्रोग्राम हुआ जिसमें बाहर उन्होंने मेरा चमन लूट कर और जयपुर से जो टीम आई थी उन लोगों के कमेंट किए थे कि या तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है मुकेश जी कहाँ से आ गए।
0: अच्छा,
1: उन लोगों का पता नहीं मैं कहाँ तक ऐसा गा पाता हूँ नहीं गा पाता पता नहीं, लेकिन उन लोगों के कमेंट।
0: ओके हाँ, तो मुकेश जी को आप आइडोलाइज करते हैं, मतलब उनको काफी फॉलो करते हैं, उन्हीं के गीत जाते गाते हैं।
1: मैं फॉलो करता था लेकिन उसके बाद तो मेरे को जब मैं ज्यादा गुस्सा तो मैंने देखा कि ये कंपेयर नहीं किया सकता किसी को भी किसी भी गायक से, सबकी अपनी अपनी जगह है अलग। रफी साहब की अलग जगह है, तलत महमूद साहब की अलग जगह है, मन्ना डे की जगह कोई नहीं ले सकता, हेमंत कुमार की अलग है, SD बर्मन ये अलग है, और KL सहगल ये सब मैंने सुने हुए, KL सहगल है, KC डे, पंकज मलिक है, ये सारे सुने
0: हुए, पंकज मलिक सी एच आत्मा, सही बात,
1: हाँ बेगम अख्तर है, गुलाम अली को सुना है।
0: तो अभी जैसे चित्रांश आर्ट कल्चर द्वारा आयोजित प्रोग्रामों में भी आप प्रस्तुति देते हैं, तो ये किस तरह से रहता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, क्या करते हैं इसको?
1: ये जयपुर में राकेश श्रीवास्तव जी हैं, वो इस ग्रुप को चलाते हैं। और ये जो जवाहर कला केंद्र में मेरे प्रोग्राम एक हुआ था उसका टाइटल था 100 Songs of Mukesh।
0: ओके ओके, अच्छा अच्छा,
1: हाँ उसमें वो करीब 10 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें मैंने गाया था सोलो एक और एक डुएट गाया था, एक मेरी वो सिंगर है डॉक्टर निधि सक्सेना।
0: अच्छा,
1: वो रिटायर्ड, वो गायनी के डॉक्टर है, रिटायर हो गई, वो भी संगीत की बहुत शौकीन है, बहुत अच्छी आवाज है, तो उनको उनके साथ मैंने वहाँ गाया था। वो करीब ऑल इंडिया का ही था, वहां काफी लोग आए थे, राजस्थान के तो थे ही, उसके अलावा भी ग्वालियर के, भोपाल के, बाहर के भी काफी लोग, ऑल इंडिया लेवल का ही शो था।
0: अच्छा अच्छा, तो आपके थोड़ा सा ये बताइए कि कॉलेज जीवन या बैंकिंग कैरियर के दौरान ये जो आप इतने गाने गाते होंगे तो बड़े पॉपुलर होंगे आप, कोई ऐसी खास यादगार या मेमोरेबल इवेंट्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आपके गायन से जुड़ा हुआ, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ? आपकी शादी तो गायन की वजह से नहीं हुई, कुछ बताइए।
1: नहीं, शादी तो इस वजह से नहीं हुई, मेरी पत्नी भी जो है बैंक ऑफ राजस्थान में ही थी, जयपुर में उनका पोस्टिंग था और हमारे शादी के टाइम तो वो जयपुर में थी, बाद में कोटा ट्रांसफर लिया। और क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि मैं तो इसमें यूनियन में बहुत ज्यादा सक्रिय रहा,
0: जी,
1: तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है इसमें, तो मैंने वहाँ गाने वाने नहीं गाए
0: कभी।
1: अच्छा, कभी पिकनिक विकनिक पे जाते थे तो सुना देते थे, बाकी वहाँ पे तो वो बिल्कुल एक उल्टा मामला हो गया, आदमी चिल्ला चिल्ला के नारे लगा रहा है और भाषण दे रहा है और वो एक तरफ गाना भी गा रहा है।
0: सही बात, बिल्कुल बात है। तो चलिए, आपने स्टेज शोज पे गाने गाए, अगर स्टेज शोज पे गाया हुआ कोई एक गाना आपको याद आ रहा हो वो हो तो आप सुना दीजिए, फिर तो आने दीजिए उसको, कोई गाने को।

आए बसे परदेश सजनवा सौतन के मरमाए नाही लीनी वो खबरिया।

0: में करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए हमार।
1: चलिए सर, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल में तीसरी कसम का गाना है ये,
0: जी
1: और बहुत ही बढ़िया। मुकेश जी और शैलेन जी की ये जो पिक्चर
0: हाँ
1: थी,
0: जी
1: वहीदा रहमान की एक्टिंग, क्या बढ़िया पिक्चर थी। तो आपने
0: जी
1: उसकी याद ताज़ा दिला दी।

0: नहीं, बहुत सही बात है। मेरे को भी याद आ रहा है, ये बहुत ही पुरसुकून गाना है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, वी शांताराम की किसी पिक्चर का है मेरे ख्याल में, मुझे
1: हाँ,
0: उतना
1: खैर
0: याद
1: वी शांताराम की फिल्म का था और
0: है।
1: ये हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: है।
0: वी शांताराम की पिक्चरों में संध्या एक हीरोइन हुआ करती थी, वो बहुत आती थी मुझे यार। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब रिटायरमेंट के बाद फिर से कितना संगीत से जुड़ गए हैं, तो आपको नेचुरली बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अब अपने जीवन को। तो आप क्या रेगुलरली प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं या आप प्रोग्राम
1: मैं
0: में
1: जाता रहता
0: पार्टिसिपेट?
1: हूँ। मैंने एक ग्रुप और बनाया हुआ है जिसमें वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का ग्रुप है, उसमें
0: अच्छा
1: गाना विद इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे
0: अच्छा
1: अपने अपने लाते हैं, सब अपने अपने जिसके पास गिटार है, पैड है, जो भी है। अच्छा, मेरे पास बहुत अच्छे तबलिस्ट भी हैं और उनके
0: अच्छा
1: साथ भी मैंने गाए हैं, उनके संगत
0: ओके
1: लेकर। और अभी मैं हारमोनियम लोगों को सिखाता भी हूँ, कई
0: अच्छा
1: लोगों को
0: अच्छा
1: सिखाया है जी।
0: अच्छा
1: और बस
0: बहुत
1: हम लोग फीस की पूछते, मैंने बस यही मत पूछो, फीस नहीं है बस।
0: नहीं
1: आपको
0: नहीं
1: पसंद
0: सही
1: आए
0: बात।
1: तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई जितना
0: नहीं
1: ज्ञान जो भी है थोड़ा बहुत, वो अगर बांटने में क्या दिक्कत।
0: और संगीत का ज्ञान बांटना तो सबसे बढ़िया पुण्य का काम है साहब, बहुत बड़ी बात है। चलिए चलिए, तो अंत में कोई संगीत प्रेमियों के लिए कोई आपका खास संदेश क्या कहना चाहेंगे जो आप
1: मतलब
0: सर?
1: संगीत प्रेमियों से सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो मैं कुछ महसूस करता हूँ, कि हमेशा कभी भी मतलब हमेशा आप तो स्टूडेंट बन के रहिए, विद्यार्थी बन के। तो आप जित मतलब कोई इसकी सीमा नहीं है, संगीत की कोई सीमा नहीं है। कोई भी आदमी अपने आप को कंप्लीट नहीं कह सकता, कितने ही बड़े स्टार हो, कितने बड़े अच्छे गायक हो, लेकिन कंप्लीट कोई भी नहीं है। बहुत
0: जी
1: कुछ है सीखने को, अथाह सागर है, तो अथाह सागर है। तो हमेशा विद्यार्थी बन के रहें और अच्छा सीखने की कोशिश करें, ये कहना है।
0: चलिए बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, ये थी हमारी विशेष बातचीत अरविंद कुमार जी सक्सेना के साथ। आज की चर्चा से स्पष्ट होता है कि सच्चा जुनून कभी समाप्त नहीं होता, चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तताएं और जिम्मेदारियां क्यों ना हो, यदि मन में कला और संगीत के प्रति प्रेम हो तो वह किसी न किसी रूप में फिर से जीवन में लौट आता है। अरविंद जी, हम आपके उज्जवल संगीत सफर, स्वस्थ सुखद जीवन की कामना करते हैं, और हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत
0: तो
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आप सुनते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम, मैं हूं आपका मेजबान आलोक कुमार, आपसे अनुमति चाहता हूं, नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, कई बार मैंने कई लोगों को वॉकिंग करने के दौरान यानी कि चलने के दौरान पीछे की तरफ चलते हुए देखा, तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं ये। थोड़ा बहुत तो अंदाजा था कि ये भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन आइए जानते हैं इसके कुछ और सच। सो बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की ओर चलने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इससे विभिन्न मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इससे शरीर के संतुलन और समन्वय में सुधार होता है। बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की तरफ चलना बुजुर्गों, वयस्कों या चोट से उबरने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि ये गिरने के जोखिम को कम करने में मदद करता है। पीछे की ओर चलने से घुटनों और पीठ के नीचे हिस्से पर तनाव कम हो जाता है। क्योंकि चलने के लिए छोटे कदमों की लंबाई की आवश्यकता होती है, इसलिए आगे चलने या दौड़ने की तुलना में जोड़ों पर कम प्रभाव पड़ता है। बैकवर्ड वॉकिंग मानसिक स्वास्थ्य जैसे दिमाग तेज होना, एकाग्रता और यहां तक कि मूड सुधार में भी योगदान करता है। पीछे की ओर चलने के अभ्यास को फिटनेस दिनचर्या में शामिल करना बड़ा आसान है और उसे घर के अंदर या बाहर भी किया जा सकता है। ये गति में बदलाव और वर्कआउट की विविधता में शामिल है, जिससे रोजाना व्यायाम करना दिलचस्प और प्रेरक भी बन सकता है। इस संबंध में फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह आप ले सकते हैं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस बारे में? विशेषज्ञ कहते हैं कि मांसपेशियों की मजबूती से लेकर जोड़ों के तनाव को कम करने तक बैकवर्ड वॉकिंग बड़ी फायदेमंद है। क्योंकि पीछे चलने के लिए छोटे कदमों की जरूरत होती है, इसलिए जोड़ों पर दबाव भी कम पड़ता है। मजेदार बात हुई।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आइए एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति किसी कंसल्टेंट के पास गया, यानी कि सलाहकार, और उससे पूछने लगा कि भैया ये बताइए, कंसल्टेंसी यानी कि सलाहकारिता क्या होती है। अब देखिए, जो कंसल्टेंट महोदय थे उन्होंने कहा, मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लो कि दो लोग मेरे पास आते हैं, एक तो बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन है और दूसरा बहुत ही गंदा है, धूल से भरा हुआ है, बाल एकदम डर्टी हैं, धूल में सना हुआ है। अब मैंने दोनों को कहा कि जाइए और नहा लीजिए। अब बताओ बेटा कि कौन नहाएगा? तो पहले स्टूडेंट ने पहले ही कहा कि जो डर्टी है, जो बहुत ही गंदा है, जिस पे धूल लगी हुई है, जो कीचड़ से सना हुआ है, वही तो नहाएगा। तब सलाहकार ने यानी कि कंसल्टेंट ने कहा, नहीं सुनो, क्लीन पर्सन जो नहा धो के आया है, साफ सुथरा है, वो नहाएगा, क्योंकि उसको आदत है नहाने की, साफ सुथरा रहने की। जबकि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गंदा है, उसको तो नहाने धोने की इंपॉर्टेंस यानी कि उसकी महत्ता के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो अब बताओ कौन नहाएगा? तब वापस से उस स्टूडेंट ने, उस व्यक्ति ने कहा, जो साफ सुथरा व्यक्ति है ना सर, वही नहाएगा। तब कंसल्टेंट ने वापस कहा, नहीं, जो गंदा बहुत ही मैला कुचैला सा व्यक्ति है वो नहाएगा, क्योंकि उसको तो जरूरत है ना साफ सफाई करने की। तो चलो अब बताओ कौन नहाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, उस स्टूडेंट ने कहा कि सर, जो मैले कुचैले कपड़ों में है, बहुत ज्यादा गंदा है, वही नहाएगा। कंसल्टेंट ने कहा, अरे नहीं बेटे, दोनों नहाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को तो नहाने की और साफ सुथरा रहने की आदत है और दूसरे व्यक्ति को इस वक्त नहा धोकर साफ सुथरा हो जाने की जरूरत है। तो चलो मुझे बताओ कौन नहाएगा? अब की बार व्यक्ति बहुत परेशान होकर बोला, सर दोनों ही नहाएंगे। तब सलाहकार ने, कंसल्टेंट ने दोबारा कहा, गलत है बेटे, कोई नहीं नहाएगा, क्योंकि जो गंदा है उसे तो नहाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको तो जरूरत ही नहीं है साफ सुथरा होने की, और जो साफ सुथरा व्यक्ति है वो तो पहले से ही नहा धो के आया है, साफ सुथरा होके आया है। तो अब बताइए कौन नहाएगा? अब की बार तो वो स्टूडेंट, वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और उसने बोला, सर आप हर बार अपना जवाब बदल देते हैं, हर बार आपका जवाब सही लगता है, अब हमें पता ही नहीं कि सही जवाब है कि आप ही बताएं। तब उस सलाहकार ने, उस कंसल्टेंट ने कहा, बेटा इसी को कंसल्टेंसी कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि रियलिटी यानी कि सच्चाई क्या है, जरूरी यह है कि मैं एक ही सच्चाई को कितनी अलग अलग तरह से सामने रखकर तुम्हें कंफ्यूज कर सकता हूं। इसी को कहते हैं कंसल्टेंसी।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

लीजिए दोस्तों, मिलिए डॉक्टर प्रदीप सेठी जी से। आजादी के 7.5 दशक में हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है, इसे देखना है तो गांव में जाइए और किसी स्मृति समृद्ध बुजुर्ग के पास बैठिए, किसी ऐसे बुजुर्ग के पास बैठिए जिनकी याददाश्त अच्छी हो, मजबूत हो। तब आपको सन 1947 से लेकर 2024 तक का देश साफ साफ दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान महानगरों और शहरों में नहीं है, अपने 6.5 लाख से ज्यादा गांवों में है, मगर इन गांवों की एक टीस बहुत पुरानी है। महानगर और बड़े शहरों ने उनकी अनगिनत संतानों को अपने मोहपाश में ऐसा फंसाया है कि वे अपनी माटी का कर्ज उतारना भी भूल गए हैं। लेकिन डॉक्टर प्रदीप सेठी ने जिस तरह से अपनी माटी का कर्ज अदा किया, उनका गांव पुष्ट दर पुष्ट इसके लिए उन पर नाज करेगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव है, बेरुनपदी। करीब 44 साल पहले इसी गांव के एक बेहद गरीब परिवार में प्रदीप पैदा हुए। तब ओडिशा देश के अति पिछड़े राज्यों में शामिल था। जाहिर है बेरुनपदी भी सड़क, बिजली, अस्पताल, साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से तो बहुत दूर था। प्रदीप के परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो उन्हें फाका कशी से ही गुजरना पड़ता था। एक जोड़े कपड़े में कई कई हफ्ते निकल जाते थे। मगर ये नियति अकेले उन्हीं के परिवार की तो नहीं थी ना। ऐसे में सभी अभावग्रस्त परिवार एक दूसरे को सब्र और उम्मीद की डोर थमाते रहते थे। राहत की बात बस इतनी सी थी कि 1955 से गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा थी और प्रदीप के पिता घनघोर गरीबी के बावजूद बेटे को कभी पढ़ने लिखने से नहीं रोकते थे। हालांकि उन्हें कई बार स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती, क्योंकि मजदूर पिता कभी गाय चराने तो कभी खेतों में घास छीलने की जिम्मेदारी उन्हें दे देते थे। इन सब मुसीबतों के बावजूद प्रदीप की पढ़ाई में रुचि गहरी होती ही गई। करीब 12 साल की उम्र में वो जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने गए, वहां अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। इससे पहले तो वो सिर्फ उड़िया सुनते थे और बोलते थे। पहली बार यहां उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी सीखी। शुरू शुरू में वो कुछ हिचके, थोड़े झेपे, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की चाह ने उनका रास्ता आसान कर दिया। बहुत जल्द ही शिक्षकों की निगाह में प्रदीप की मेधा आ गई, उन्हें भरपूर प्रोत्साहन दिया। फिर क्या था, छात्र की लगन और शिक्षकों के सहयोग ने एक गरीब बच्चे के दिन बदल दिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदीप बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। 10वीं के बाद से ही उनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा आ गई थी, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। प्रदीप ने अपनी पढ़ाई लिखाई से पिता को गौरव के कई पल दिए, इसलिए जो भी थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी, बेटे की मेडिकल फीस जुटाने के लिए दांव पर लगा दी। परिवार के इस त्याग से प्रदीप बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित थे। वो परिवार की तकलीफ और संघर्ष में बराबर के शरीक रहे। उनके पास जो भी खाली वक्त होता, वो उसमें किसी ना किसी तरह की दैनिक मजदूरी कर लेते। एक ऐसा मोड़ भी आया जब सारी कोशिशों के बावजूद चीजें मुश्किल होने लगी और बात उनकी झोपड़ी से निकलकर गांव के चबूतरे पर आ गई। तब गांव के कुछ समर्थ लोगों ने बड़प्पन दिखाया और वजीफे के तौर पर उन्होंने प्रदीप की लगातार मदद की। प्रदीप को हर महीने एक तय राशि मिलने लगी, जिनसे वो अपनी किताबें खरीदते और हॉस्टल मेस की फीस चुकाते। अब लक्ष्य सिर्फ MBBS की डिग्री थी। वो जी जान से जुट गए। साल 2004 में MBBS की डिग्री लेने के बाद उन्होंने मास्टर्स कोर्स के लिए देश के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के गुर सीखे। जाहिर है ये ऐसा चिकित्सा क्षेत्र है
जो पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती को लेकर सजग दौलतमंदों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लिहाजा प्रदीप के पास प्रस्तावों और मरीजों की कोई कमी नहीं रही। पैसे तो खैर आने ही थे, उनके पास दुबई में क्लिनिक खोलने के लिए रोचक प्रस्ताव आया। लेकिन उसी समय उन्हें आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद की वो लाइन याद आ गई, हर मनुष्य के जीवन का एक बड़ा मकसद होता है। नौजवान प्रदीप के जीवन का मकसद सिर्फ दौलत कमाना तो नहीं था, वो अपनी जड़ों की ओर मुड़े। कैंसर से पीड़ित पिता की दिली तमन्ना थी कि गांव में उनका एक घर होना था। प्रदीप ने घर की तामीर करवाई, मगर उनके बनने के चंद महीनों बाद ही वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद प्रदीप ने साल 2016 में उस घर को एक कोचिंग सेंटर में बदल दिया, ताकि गांव और आसपास के बच्चे वहां आकर गणित और अंग्रेजी सीख सके। इसके बाद बकायदा प्रशिक्षित शिक्षक रख दिए गए वहां। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में इस एक कोचिंग सेंटर से आई तब्दीली देखकर डॉक्टर प्रदीप को गहरा सुकून मिला। अब उन्होंने गांव में एक ऐसा स्कूल खोलने का फैसला किया जो गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलवा सके। उन्होंने गांव की उसी जमीन पर स्कूल बनाने की शुरुआत की जहां कभी दैनिक मजदूरी किया करते थे वो। गांव वालों ने अपने सपूत का बढ़ चढ़कर साथ दिया। कई लोगों ने स्कूल के लिए अपनी अपनी जमीनें दान में दे दी। करीब 10 एकड़ में पिछले साल ही उत्कल गौरव इंटरनेशनल स्कूल वजूद में आ गया। फिलहाल इसमें 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इसकी क्षमता 2500 बच्चों को 12वीं तक शिक्षा देने की है। डॉक्टर प्रदीप सेठी आगे अन्य इलाकों में भी स्कूल खोलेंगे, मगर बेरुनपदी का कर्ज तो उन्होंने अदा कर दिया।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं ये प्रसिद्ध जोड़ी आनंद मिलिंद की। आनंद मिलिंद हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी है। प्रतिभाशाली संगीतकार चित्रगुप्त के ये दोनों बेटे आनंद चित्रगुप्त और मिलिंद चित्रगुप्त अपनी शुरुआती दौर में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक रहे।

अपने पिता के सहायक के तौर पर भी उन्होंने कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया। आइए सुनते हैं उनकी बनाई हुई तर्ज पर यह गीत।

उनकी पहली सफल हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक थी। बस इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म आमिर खान की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म का गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा उदित नारायण जी ने गाया था। इस फिल्म के संगीत के लिए आनंद मिलिंद को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। चलिए सुनते हैं यही गीत।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अगर 60 का दशक म्यूजिक के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो 80 और 90 के दशक को अब भी इसकी सुरीली धुनों के लिए याद किया जाता है। इस जोड़ी ने अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दे दिया है।

इनकी सबसे पहली फिल्म थी 1982 में अब आएगा मजा। ये कॉमेडी फिल्म थी जिसमें फारूक शेख और अनीता राज ने काम किया था। इसके कई गाने लता मंगेशकर जी ने गाए थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि इस फिल्म के संगीतकार आनंद मिलन हैं, बस लता जी के आशीर्वाद से इनकी डिमांड बढ़ती चली गई।

उदित नारायण की आवाज इन्हें शुरू से ही पसंद थी, तो इसलिए इनके ज्यादातर गाने उदित नारायण जी ने ही गाए। और दूसरी गायिका थी अलका याग्निक। अलका याग्निक भी इनके संगीत पर बराबरी से गाती रहीं। चलिए सुनते हैं इन्हीं का एक और गीत।

गोविंदा की दूल्हे राजा और कुली नंबर वन जैसी फिल्मों के गाने सुनने में बड़े हल्के फुल्के से लगते हैं, लेकिन ऐसे गाने संगीतबद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, हेमंत कुमार यानी हेमंत मुखर्जी जी हिंदी और बंगाली फिल्म उद्योग में एक गायक, संगीतकार और निर्माता की तरह फेमस हैं। उन्हें 1950 और 1960 के दशक के उनके बॉलीवुड गानों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। अपने करियर में उन्होंने लगभग 2000 गाने रिकॉर्ड किए। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।

हेमंत कुमार मुखर्जी जी का जन्म 16 जून 1920 को बनारस यानी वाराणसी में हुआ था। उनके 3 भाई और 1 बहन थी। हालांकि उनका जन्म बनारस में हुआ, लेकिन उनका पूरा परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बहारू का रहने वाला था। के बहारू का रहने वाला था

जब वो छोटे थे उनका परिवार कोलकाता में स्थानांतरित हो गया। वहां वो बड़े हुए और भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूशन स्कूल में पढ़ाई की। इंटरमीडिएट से स्नातक होने के बाद उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।

0: संगीत में हेमंत कुमार जी की रुचि जल्द ही शुरू हो गई। उन्होंने अपना पहला गाना 1933 में ऑल इंडिया रेडियो पर गाया। उस समय वो केवल 13 वर्ष के थे। हालांकि ये कभी साफ नहीं हो पाया कि हेमंत कुमार गायक बनेंगे। उनकी बेसिक ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में थी, लेकिन अन्य रास्ते अपनाने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया। शुरू में उन्होंने लेखन में अपना हाथ आजमाया, यहां तक कि वो एक प्रमुख बंगाली पत्रिका में एक लघु कहानी प्रकाशित करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें समझ में आ गया कि उनका बिजनेस संगीत है। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

वो एक संगीत निर्देशक के रूप में अपनी क्षमताएं दिखाना चाहते थे, तो वो पहली बार 1947 में बंगाली फिल्म अभियत्री में ऐसा करने में सफल रहे।

कई संगीत निर्देशकों ने उनको पहचानना शुरू कर दिया था। 1940 के दशक के अंत में हेमंत ने हेमेन गुप्ता नामक निर्देशक के लिए संगीत रचना शुरू की। बस यहीं से उनका जीवन बदल गया। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।

हेमेन गुप्ता को हेमंत कुमार का संगीत पसंद आया और उन्होंने उन्हें बॉम्बे बुलाया। बॉम्बे में फिल्म बन रही थी आनंद मठ। यहां हेमंत कुमार को इस फिल्म में संगीत देने का मौका मिला और किस्मत बदल गई।

1960 के दशक में हेमंत कुमार बहुत सक्रिय रहे, फिर 1970 के दशक में उनके प्रोडक्शन में काफी गिरावट आई। उनकी प्रोडक्शन कंपनी गीतांजलि पर 14 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया जो चुकाया ना जा सका। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी रही। 1980 के दशक में उनकी तबीयत खराब होने लगी। आइए सुनते हैं उनका ही ये गीत।

हेमंत कुमार यानी हेमंत दा की आवाज सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू देती थी। सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: एक खामोशी जो सदियों से जहन में सोई थी, एक खामोशी जो सदियों से जहन में सोई थी, आज सुरों का सहारा मिला तो गुफ्तगू करने लगी। नमस्कार, आदाब और एक बेहद मखमली शाम आप सबको मुबारक हो। 90.8 FM पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील से मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका अपना चहेता प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब दिन भर की मसरूफियात और दुनिया का शोर थमता है तब दिल को किसी सहारे की तलाश होती है जो बिना कुछ कहे हमारी कश्मकश को समझ सके। ऐसे ही लम्हों में मौसीकी यानी संगीत हमारी तन्हाई का हाथ थाम लेता है। आज की इस महफिल का मिजाज कुछ ऐसा ही मुनफरिद यानी अनोखा सा है, क्योंकि आज हम तरानों के इस कारवां को कुछ ऐसे बासलाहियत और बेमिसाल फनकारों के सुपुर्द करने जा रहे हैं जिनकी गायकी का अंदाज सीधे दिलों में उतर जाता है। गजल का हुस्न अल्फाज की संजीदगी और सुरीले जज्बातों की एक नई दास्तान आज हर पड़ाव पर आपको एक बिल्कुल नया रंग मयसर होगा। तो अपनी तवज्जो को समेट लीजिए और दिल के दरवाजों की सांकलें जरा खोल लीजिए। धीमे से ठंडी बयार का झोंका तो आने दीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सफर की और रुख करते हैं आज की बेहद खास पहली पेशकश की तरफ। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब इंसान किसी से बेपनाह मोहब्बत करता है और बदले में सिर्फ एक खूबसूरत कल की उम्मीद रखता है, मगर अफसोस कि वक्त का हिसाब कुछ ऐसा कड़ा निकलता है कि वो चाहत एक ऐसे इम्तहान में बदल जाती है जहां पुरानी बातों का बदला चुकाना पड़ता है। जरा इस गजल का ये बेहद हसीन मिसरा मुलाहिजा फरमाएं जहां मिलन के उन छोटे से लम्हों का जिक्र है जो बड़ी मिन्नत के बाद मयसर होते हैं। मिसरा कुछ यूं है, वसल का दिन और इतना मुख्तसर, वसल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। वसल यानी मिलन और मुख्तसर यानी बेहद छोटा सा। शायर कहते हैं कि जिस मुलाकात के लिए हमने महीनों तक दिन गिने, जब वो आई भी तो पल भर में खत्म हो गए। अब ये बेबसी अपनी आखिरी हदों को छूती है तो गजल का ये मिसरा सीधे कलेजे के पार उतर जाता है। बकौल शायर, वो नहीं सुनते हमारी क्या करें, वो नहीं सुनते हमारी क्या करें। मांगते हैं हम दुआ जिनके लिए, इस खूबसूरत कलाम को जब हमारे जगजीत जी ने अपनी तिलस्मी अंदाज में गाया तो ये हर एक उस दिल की जुबा बन गई जिसने मोहब्बत में अधूरेपन को सहा हो। तो आइए सुनते हैं जगजीत साहब की आवाज में प्रोग्राम की पहली गजल, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए, आपकी नजर।

दोस्तों, वक्त की रफ्तार तो अपने ढर्रे पर चलती रहती है, मगर जब कोई दिल के बेहद करीब रहने वाला शख्स हमसे दूर होता है तो हर लम्हा सदियों जैसा भारी लगने लगता है। ये गमजदा दिल महबूब से कोई शिकवा नहीं करता, बल्कि एक मासूम से गुजारिश करता है कि लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना ये पूरी कायनात और ये जिंदगी अधूरी है। गजल का मिसरा कुछ यूं है, वादा करके ये कौन आया नहीं, वादा करके ये कौन आया नहीं, शहर में आज रोशनी कम है। और फिर आईना देखकर ख्याल आया, आजकल उनकी दोस्ती कम है। शायर के दिल का हाल तो देखिए, कहता है जाने क्या हो गया मौसम को, जाने क्या हो गया मौसम को, धूप ज्यादा है चांदनी कम है। और फिर कहता है तेरे दम से ही मैं मुकम्मल हूँ, तेरे दम से ही मैं मुकम्मल हूँ, बिन तेरे तेरी यामनी कम है। दोस्तों, और इस बेहद नाजुक और जज्बाती कलाम को सुरों से सजाया है बेहद ज़हीन और बासलाहियत गुलुकार चंदन दास साहब ने। चंदन दास जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को निभाते हुए भी लफ्जों के जज्बात सीधे दिलों तक पहुंचा देते हैं। उनकी आवाज का वो धीमापन इस दर्द को और गहरा कर देता है। जरा इस गजल का एक और बेहद संजीदा मिसरा मुलाहजा फरमाएं, जहां तन्हाई की इंतहा बयान की गई है। कहते हैं तुम मिले तो राज हमने जाना, तुम मिले तो ये राज हमने जाना, पारसाओं में एक हम ही कम है। पारसा यानी बहुत पाक और पाकीजगी का दावा करने वाले लोग। शायर कहते हैं दुनिया तो खुद को बहुत पाक साफ बताती है, मगर तुम्हारी मोहब्बत में डूबने के बाद हमें एहसास हुआ कि इस मतलबी दुनिया के असूलों में बस एक हमारी ही कमी थी। और जब इंतजार अपनी आखिरी हदों को छूता है तो चंदन दास साहब की आवाज में ये मिसरा सीधे कलेजे के पार उतर जाता है। कहते हैं जानता हूँ तुम आओगे जरूर, जानता हूँ तुम आओगे जरूर, फिर भी धड़कन जरा थमी कम है। भले ही दिल को यकीन है कि महबूब लौट आएगा, मगर बिरहा का ये वक्त दिल को एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दे रहा। तो फिर आइए सुनते हैं अल्फाज से एहसास तक के इस मरहले पर चंदन दास जी की आवाज में ये सदाबहार गजल। आप ही जाओ कि जिंदगी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है। शौक फरमाएं।

दोस्तों, जब मोहब्बत में किसी के हुस्न और उसकी सादगी की तारीफ की जाती है तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं। तुमसे ज्यादा हंसी कोई नहीं, दिल ही दिल में वो सोचता होगा। इस मिसरे का ख्याल जरा मुलाहजा फरमाएं। यहाँ आशिक सिर्फ अपने महबूब की तारीफ नहीं कर पा रहा, बल्कि वो उस खुदा के तसव्वुर में डूबा हुआ है जिसने इस हुस्न को तराशा है। वो सोच रहा है कि जिसने तुम्हें बनाया, वो आईने में तुम्हारी इस मुकम्मल खूबसूरती को देखकर खुद अपने पर ही हैरान होता होगा। और जब इस हसीन कश्मकश को आवाज के सांचे में ढालने का वक्त आया तो हमारे सामने आए एक बेहद ज़हीन और खास लहजे के फनकार विनोद राठौर साहब। विनोद साहब के अंदाज की खासियत यही है कि उनकी वजनी आवाज में जज्बातों की एक बहुत नाजुक नरमी छुपी हुई है। उन्होंने इस कलाम को जिस खूबसूरती के साथ निभाया है वो जहन पर एक अजब सा सुरूर पैदा कर देता है। इस नायाब नज्म का ये दूसरा और बेहद गहरा मिसरा सुनिए, जहाँ दीवानगी अपनी आखिरी हदें पार कर जाती है। कहते हैं, जब भी आती होगी याद मेरी, जब भी आती होगी याद मेरी, काम वक्त सफर रोकता होगा। गौर फरमाइए दोस्तों, जब दूरियों के बीच अचानक यादों का कोई झोंका आता है तो चलते हुए कदम पल भर के लिए थम जाते हैं। जिंदगी की रफ्तार और वक्त का तकाजा चाह कर भी उसी याद के साए से आगे नहीं बढ़ने देता। तो आइए इस मरहले पर साथ साथ सुनते हैं विनोद राठौर।

तकलीफ भी नेमत लगने लगती है। कतील शफाई साहब ने इस ख्याल में वफा के उस ऊंचे मुकाम को पेश किया है जहां आशिक जमाने से कोई शिकवा नहीं करता। अता यानी वो चीज जो तोहफे में मिली है। शायर कहते हैं, जब ये जख्म और ये हिजर यानी जुदाई देने वाला ही मेरा अपना महबूब है तो भला दुनिया के सामने जाकर इसका रोना क्या रोना। दोस्तों, जब मोहब्बत अपनी आखिरी हदों को छूती है तो महबूब की दी हुई तकलीफ भी नेमत लगने लगती है। कतील शफाई साहब ने इस ख्याल में वफा के उस ऊंचे मकाम को पेश किया है जहां आशिक जमाने से कोई शिकवा नहीं करता। अता यानी वो चीज़ जो तोहफे में मिली है। शायर कहते हैं, जब ये जख्म और ये हिजर यानी जुदाई देने वाला ही मेरा अपना महबूब है तो भला दुनिया के सामने जाकर इसका रोना क्या रोना। और जब इस बेमिसाल तहरीर को उस्ताद गुलाम अली साहब की रूहानी मौसीकी का साथ मिला तो सुरों को अपनी मखमली बंदिशों में पिरोने के लिए आगे आई हम सब की बहुत अपनी आशा भोंसले जी यानी हमारी आशा ताई। इस पूरे एल्बम में आशा ताई ने क्लासिकी गायकी की नाजुक हरकतों को जिस नज़ाकत और ख़ास सोच के साथ निभाया है वो जहन पर एक अजब सा सुरूर तारी कर देता है। ज़रा इस गज़ल का ये मिसरा मुलाहिज़ा फरमाइए, जहाँ ज़माने की बंदिशों का ज़िक्र है। बकौल शायर, अक्स बहते हुए पानी में दिखाई ना दिया, अक्स बहते हुए पानी में दिखाई ना दिया, आईना टूट गया तो गिला किससे करें। तौबा खुदा, क्या शायरी है। शायर की मुराद इस मिसरे से यूं है कि जब वक्त के थपेड़ों ने वजूद के उस आईने को ही बिखेर दिया जिसमें कभी महबूब का अक्स दिखता था तो अब इस टूटे हुए दिल का शिकवा किससे किया जाए। और इस कश्मकश का अगला सिरा जरा इस मिसरे में महसूस कीजिए। शायर कहता है, हमको अपना ही मुकद्दर ना मयसर आ सका, हमको अपना ही मुकद्दर ना मयसर आ सका, तू अगर हमसे छुटा है तो गिला किससे करें। यानी जब अपनी ही किस्मत का लिखा हमारे हक में नहीं था तो तुम्हारी बेरुखी पर नाराज होने का तो कोई हक ही नहीं बनता। तो आइए सुनते हैं इस पुरअसरार से मकाम पर पूरी तवज्जो के साथ आशा ताई की इस लाजवाब पेशकश को। दर्द जब तेरी अता हो गिला किससे करें। शौक फरमाएं।

दोस्तों, उर्दू अदब के चमकते सितारे खुमार बाराबंकी साहब ने इस कलाम में वक्त और मोहब्बत के उस जादुई एहसास को पिरोया है, जहाँ दिल का सिर्फ एक खूबसूरत लम्हा भी सदियों के जीने का हौसला दे जाता है। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, दो दिन की जिंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। वो कहते हैं, दुनिया भले ही लंबी उम्र की हसरत रखती हो, मगर जो लोग सिर्फ शिद्दत से जीना जानते हैं, उनके लिए दो दिन का ये छोटा सा सफ़र भी पूरी कायनात के हुस्न को समेट लेता है। दोस्तों, जब इस नफीस कलाम को सुनने की बात आती है तो एक बहुत ही दिलचस्प नाम हमारे सामने उभरता है, हंसराज हंस जी का। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आम तौर पर लोग उन्हें उनके बुलंद और ठेठ पंजाबी लोकगीतों के लिए जानते हैं, लेकिन कड़े शास्त्रीय संगीत की तालीम और सूफियाना रूहानियत उनके वजूद में बचपन से घुली हुई है। जब हंसराज साहब पंजाबी के ऊंचे सुरों से निकलकर उर्दू गज़ल के ठहरे हुए मखमली अंदाज में आते हैं, तो उनकी बुलंद आवाज़ खुमार साहब के एक नई रूहानी ऊंचाई अता कर देती है। फिर शायर कहता है, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों के बाद हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों के बाद हम, किश्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। रफ्ता रफ्ता यानी हौले हौले, धीरे धीरे। शायर कहते हैं कि किसी अजीज इंसान को भुलावे की कोशिश में हमें एक लंबा ज़माना लग गया, और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उसकी यादों में मरना मानो किस्तों में अपनी ही जान देने जैसा है। और जब दिल की आँखें अपनी वफा बयां करती हैं, तो वो कहते हैं, वो जान ही गए हैं कि हमें उनसे प्यार है, वो जान ही गए हैं कि हमें उनसे प्यार है, आँखों की मुखबरी का मज़ा हमसे पूछिए। तो आइए, अल्फाज से एहसास तक के इस आखिरी और शानदार मरहले पर पूरी ईमानदारी से, पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं खालिस पंजाब की मिट्टी से सूफियाना कलाम, हमारे पंजाबी हंसराज हंस की सौंधी सौंधी सुरों से भरी रूहानी आवाज़ में। उनके बहुत से कलाम सुनने के बाद मुझे आज की शाम के लिए ये मोतबर यानी बहुत एप्रोप्रिएट लगा। तो सुनिए, एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, दो दिन की जिंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। आपकी नज़र प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश।

दोस्तों, सुरों, साजों और अनोखे एहसासों की जिस सरजमी पर आज हम सब सफ़र कर रहे थे, अब वहाँ विदाई की शफक यानी शाम की लाली उतर आई है। जगजीत सिंह साहब की यादों के गलियारों से शुरू हुआ अल्फाज का ये कारवां, चंदन दास साहब की पुरकशिश गुजारिश, विनोद राठौड़ जी का हसीन तसव्वुर, आशा ताई की मखमली शिकवों और आखिर में हंस साहब की रूहानी पेशकश तक आते आते एक मुकम्मल इनायत बन गया। शायरी की खासियत ही यही है कि ये हवाओं में घुलकर हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। जब रेडियो पर धुनों का ये सिलसिला थम जाएगा, तब भी इन फनकारों की आवाज़ें आपके जहन में, आपके जहन की खामोशी में कहीं ना कहीं गूंजती रहेंगी। किसी शायर ने इस सुरीले असर को क्या खूब लफ्ज दिए हैं। वो कहता है, बुझ गए दिए तो क्या, बुझ गए दिए तो क्या, एक रोशनी तो रह गई, महफिलें रुखसत हुई, महफिलें रुखसत हुई, पर दिल में कशिश तो रह गई। इसी दिलकश कशिश को अपने अंदर समेटे हुए अब वक्त हो चला है इस महफिल को समेटने का और आपसे रुखसत होने का। अब मुझे यानी आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती को इस मोड़ पर दीजिए इजाज़त, मगर सुरों का ये साथ यूं ही बना रहेगा। अपनी सेहत का और अपने अपनों का और अपने जज्बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप सभी चाहने वालों को मेरी तरफ से एक बेहद हसीन शब खैर, शुभ रात्रि, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यही खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और दोस्तों, हमारे किसान साथियों के लिए खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और खास तौर पर उन सेगमेंटों पर

0: बात करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है।
1: और श्रोता साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज हम तीन तीन कंपोनेंटों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम कि हमारे किसान साथी, चूंकि मशरूम की खेती करना बड़ा मुश्किल बात तो नहीं है क्योंकि सरकार इसके लिए ट्रेनिंग्स देती है, सब्सिडी भी देती है, लेकिन मशरूम की खेती आखिरकार कैसे की जाती है इस पर हम खास बातचीत करेंगे। साथ साथ में हम सीप की जो खेती रहती है यानी मोतियों की खेती रहती है, अभी आपने सुना होगा कि मोतियों की खेती कैसी होती होगी, उस पर भी आज हम जिक्र करेंगे। और साथ साथ में हम सफल किसान की कहानी हम लेकर आएंगे और साथ में एक और कंपोनेंट जोड़ना चाहेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कि केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना आखिरकार क्या है, किसानों को के आय को बढ़ाने के लिए, पशुपालन को बढ़ाने के लिए किस तरीके की योजना है, कैसे हमारे किसान साथी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, तीनों चारों कंपोनेंटों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं अपने किसान साथियों से, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि बरसात का मौसम जैसे ही आए और हम अपनी फसल लगाना स्टार्ट कर दें, लेकिन उन किसान साथियों से कहना चाहेंगे कि इससे पहले हम तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसी भी हम कार्य को करते हैं उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें इस कार्य को करना होगा, इस कार्य को करने के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे इसको किया जाता है, ये सारी बातचीत हम ध्यान में रखते हैं, एक सोचते हैं कि कैसे खेती की जाती है, कैसे इस काम को किया जाता है। ऐसे ही खेती की बात आती है कि हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि आगे चलकर हम भविष्य में या फिर आगे चलकर कौन सी खेती करें, कैसे करें, क्योंकि उनके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, पथरीला इलाका है, सीमित खेती है, सिंचाई के ज्यादा साधन नहीं है, किसान साथी सोच रहे हैं क्या करें। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियो टंटा भील 90.8 FM लेकर आते हैं आपके लिए नई नई जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से, और बहुत सारी बातें हम अपने श्रोता साथियों को बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बातचीत और बहुत सारे मुद्दों को रेडियो टंटा भील 90.8 FM जल्द शुरू करने वाला है, और आप जुड़े रहिए हमारे रेडियो टंटा भील 90.8 FM से और सुनते रहिए आप अपने मन पसंदीदा कार्यक्रमों को। चलिए, आपको हम देर नहीं करवाते हैं और हमारे सेगमेंटों का समय होता है और सुनते हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम आज जानेंगे कि किस तरीके से मशरूम की खेती की जाती है, कौन सा उपयुक्त समय रहता है हमारे किसान साथियों के लिए, कैसे की जाती है, आइए इस खास रिपोर्ट को, और साथ साथ में हम सुनेंगे इसमें केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में। तो ऐसे ही बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।
2: आज मशरूम फार्मिंग में सरकार द्वारा मिल रहे प्रोत्साहन एवं कौशल विकास के फलस्वरूप एक बड़े वर्ग ने इसकी कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया है। कम पूंजी, कम जगह एवं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाने की इन्हीं हसरतों ने आज मशरूम फार्मिंग को जन्म दिया। अब आप भी यदि घर बैठे मात्र कुछ पैसों की लागत से अपना खुद का मशरूम बिजनेस शुरू कर लाखों कमाना चाहते हैं, तो मशरूम का व्यापार खास आपके लिए ही है। आज काफी लोग मशरूम की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। कि मशरूम की खेती से पहले एक उपयुक्त स्थान का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। मशरूम काफी नाजुक होती है, इसलिए भंडारण से वितरण के बीच ज्यादा देर आपकी फसल को खराब कर सकती है, साथ ही मार्केट से ज्यादा दूरी आपकी कुल लागत को भी बढ़ा सकती है। मशरूम की खेती के लिए 35 से 40 डिग्री तक का तापमान अनुकूल माना जाता है, साथ ही मशरूम के विकास के लिए नमी की भी काफी आवश्यकता होती है। हवा में 85 से 90% तक की आर्द्रता बनाए रखना एक चैलेंज हो सकता है। अमूमन मशरूम की खेती के लिए मई से अक्टूबर तक का समय बिल्कुल उपयुक्त समझा जाता है, हालांकि आवश्यक वातावरण एवं माहौल बना आप 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। शुरुआती चरण में यदि आप मशरूम की खेती छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, तो 400 स्क्वायर फीट तक की जगह आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भारत में मशरूम की खेती के लिए मूलतः तीन तरह की क्यारियां बनाई जाती हैं। इसमें पहला है लटकाकर। इसमें मशरूम के लिए कंपोस्ट का निर्माण कर प्लास्टिक बैग में कंपोस्ट रख बीच में बीज की एक परत बना लें। ऊपर से कंपोस्ट की परत दर परत में बीज को रोपकर प्लास्टिक का मुंह धागे से बांध दें। किसी स्टैंड के सहारे कंपोस्ट को झुला कर रख दें। ये विधि खासकर उनके लिए काफी उपयुक्त है जबकि आपके पास जगह का अभाव हो। मशरूम उगाने की दूसरी विधि है जमीन में क्यारियां बनाकर। जमीन में क्यारियां बना कंपोस्ट को फैलाकर बीज को रोपा जाता है। समय समय पर सिंचाई एवं आवश्यक देखभाल के फलस्वरूप मशरूम की खेती की जाती है। और मशरूम उगाने की तीसरी विधि है बांस का बेड बनाकर। यदि आप जमीन में क्यारियां बना खेती नहीं करना चाहते तो फिर आप बांस का मचान बना सकते हैं। बांस अथवा किसी लकड़ी की मदद से जमीन से थोड़ा ऊपर बांस का बेड अथवा मचान बना उस पर मशरूम के बीज बो सकते हैं। अब आपको जरूरत होगी मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट की तैयारी करने की। मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कंपोस्ट की तैयारी जिसमें बीजों को बोया जाता है। भारत में ज्यादातर कंपोस्ट की तैयारी में पुआल का उपयोग किया जाता है। पुआल बाजार से काफी कम कीमत पर आसानी से खरीदा जा सकता है। अब बारी है पुआल को कंपोस्ट में बदलने की। शुरुआती दौर में 5 से 10 किलो तक पुआल से काम चल जाएगा। सबसे पहले भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। ध्यान दे, टुकड़ा न बहुत छोटा न बहुत बड़ा हो। आधा इंच का पुआल आदर्श माना जाता है। अब भूसे को किसी टब अथवा टंकी में पानी से भर रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ दें। ध्यान दें, पुआल में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ाने के लिए आप सॉल्युबल लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके नजदीकी खाद्य भंडार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रात भर कंपोस्ट को भिगोने के बाद अब इस कंपोस्ट को निकाल कर जमीन पर सूखने के लिए छोड़ दें। ध्यान दें, पुआल न ज्यादा गीला न ही ज्यादा सूखा रहे। 2 से 3 घंटे बाद पुआल को हाथ से दबाकर चेक कर लें। यदि काफी दबाने पर थोड़ा पानी निकल रहा है तो ये कंपोस्ट आपके लिए आदर्श है। आप चाहें तो इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस कंटेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाई गई क्यारियों में अब आप इस कंपोस्ट को फैला दें एवं थोड़ी थोड़ी दूरी पर मशरूम के बीजों को बो दें। अब दोबारा बीजों के ऊपर एक परत कंपोस्ट की दें तथा बीज रोप दें। इस प्रकार परत दर परत कंपोस्ट के बीच में बीज रोप कर कुछ दिन के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे, कमरे का तापमान 35 से 40 डिग्री तक बना रहे। आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए हर 2 से 3 दिनों के अंतराल में पानी का छिड़काव करते रहें। मशरूम की फसल को कीट पतंगों एवं अन्य हानिकारक कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करें। ध्यान रहे, कमरा में किसी तरह की रोशनी ना पहुंचने पाए। फसल होने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है। कोशिश करें बीच बीच में आवश्यक नमी एवं कमरे का तापमान चेक करते रहे। शुरुआती दौर में 30 किलोग्राम भीगे पुआल से 5 किलो तक फ्रेश मशरूम उगाया जा सकता है। मशरूम के भंडारण एवं वितरण में ज्यादा समय न लगाएं। आप प्लास्टिक में 100, 250, 500 ग्राम अथवा 1 किलो का पैक बना इसे या तो सीधा मार्केट में उतार दें अथवा किसी सब्जी वाले के हाथों अपनी फसल बेच दें। जरा इन बातों पर भी ध्यान दें। मशरूम के बीज को आवश्यक नमी पहुंचाने के लिए हर 2 से 3 दिनों के बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। रूम में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कंपोस्ट को छूने अथवा मशरूम के बीजों के संपर्क से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं एवं कोशिश करें कमरे में जूते चप्पल इत्यादि पहनकर प्रवेश ना करें। भारत में आप इन जगहों से मशरूम की खेती करना सीख सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पूसा, दिल्ली। राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार। ओडिशा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओडिशा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, R&D सेंटर, मुरथल, सोनीपत। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन, उमरोई रोड, बोरापानी, मेघालय। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ICAR, चंपाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने सुना इस महत्वपूर्ण जानकारी को और जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, चूंकि पथरीला इलाका है तो क्या कर सकते हैं, तो मशरूम की खेती भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मशरूम की खेती कर सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं और इससे कितना लाभ होता है मशरूम की खेती करने से, ये सारी बातों को हमने जाना इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं कि जो हमारी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी बात है।

किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने

0: पता लगाना। प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना। पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना। सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना, ताकि पशुपालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले। पशुओं की खरीद, बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना, ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके। पशुपालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना, ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है। इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशुपालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। अब नई चीज हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण मां के

शोक में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी शिशकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी।

0: गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहां प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दे। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 महाबास सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है। तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

के समय में बढ़ती आबादी की वजह से कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, जिस कारण कम समय में अधिक उपज ले पाना भी बहुत ही मुश्किल होने लगा है। इस तरह की समस्याओं के लिए कुछ अलग तरह की कृषि का चयन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त कर मूल्य भी अच्छा प्राप्त किया जा सके। ऐसा ही एक व्यवसाय है मछली पालन। इस व्यवसाय में मुनाफे वाले सभी गुण मौजूद हैं। यह एक उच्च कोटि खाद्य पदार्थ व्यवसाय है। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में मत्स्य पालन का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही मछली पालन आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का साधन भी है। यह क्षेत्र रोजगार, पोषण सुरक्षा और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायक है। मछली उत्पादन भारत को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। कारण है यहाँ के दक्षिणी राज्य। भारत में सामान्य तौर पर तीन देशी कतला, रोहू, मृगल और तीन विदेशी सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प मछलियों का पालन किया जाता है। बीते कुछ वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए किसानों की रुचि भी मछली पालन की ओर बढ़ी है। देश के किसान या मछली पालक वैज्ञानिकों की सलाह पर नई तकनीकों के माध्यम से मछली पालन के व्यवसाय को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि कर पोषक और संतुलित आहार की मात्रा को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं और अपनी आय को दुगुना करने में भी प्रयासरत हैं।

0: मछली पालन आय की गारंटी में आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्तमान में तमिलनाडु में मछली पालन या फिर कहे मत्स्य पालन क्षेत्र की स्थिति क्या है, इसको लेकर सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: तमिलनाडु के समुद्री राज्य को 1076 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 41,412 किलोमीटर दो महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र के साथ 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक जोन का आशीर्वाद प्राप्त है, जो 5.95 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन में योगदान देता है। ये 5,830 मशीनीकृत और 45,685 पारंपरिक मछली पकड़ने वाले शिल्पों के माध्यम से 10.48 लाख समुद्री मछुआरों को आजीविका का समर्थन करता है, जो सक्रिय रूप से मछली पालन में लगे हुए हैं। तमिलनाडु के पास 3.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। प्रभावी अंतर्देशीय जल संसाधनों में जलाशय प्रमुख सिंचाई टैंक, लघु सिंचाई टैंक, छोटे मौसमी टैंक, तालाब, नदियाँ, बैक वाटर और परित्यक्त जल निकाय शामिल हैं। अंतर्देशीय मछुआरों की आबादी 2.35 लाख है। 56,000 हेक्टेयर का अनुमानित खारा जल क्षेत्र मत्स्य पालन और 6,115.68 हेक्टेयर क्षेत्र है तटीय जलीय कृषि उत्पादन के अंतर्गत है। मुख्य रूप से झींगा जलीय कृषि, तमिलनाडु समुद्री खारे पानी और अंतर्देशीय मत्स्य संसाधनों से समृद्ध है, जो मत्स्य पालन और संवर्धन के लिए उपयुक्त है। तमिलनाडु सरकार द्वारा मत्स्य संसाधनों के आर्थिक और सामाजिक आयामों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। मत्स्य पालन क्षेत्र बड़ी संख्या में मछुआरों को आजीविका प्रदान करके संबंध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करके देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें उत्पादकता की तो आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में देश का कुल मछली उत्पादन 16.24 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और अंतर्देशीय मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य पालन क्षेत्र देश की जीडीपी में 1% योगदान देता है। देश के कुल समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु ने 2021-22 के दौरान 1.14 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया और 6,559.64 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। राज्य की प्रति व्यक्ति मछली की खपत भी 2020-21 के दौरान 9.3 किलोग्राम से बढ़ गई है। केंद्र सरकार मत्स्य उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चला रही है। इस योजना को मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद की बुनियादी ढांचे और विपणन तथा मत्स्य मूल्य श्रृंखला में बेहतरी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना है। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कुल अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए है और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मछली उत्पादन को साल 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक तक बढ़ाने का है। इस महत्वाकांक्षी योजना से निर्यात आय दूनी होकर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी और इस योजना के माध्यम से मछली पालन के क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना है। इस योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वा कल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियों, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों और नई नई योजनाओं के फलस्वरूप ही हमारे किसान भाई और मछली पालक अपने क्षेत्र में सफल हो पा रहे हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं हैं, जिससे मत्स्य पालन के क्षेत्र को अधिक बल मिल रहा है, जिसके कारण हमारे देश के मछली पालक पहले से और भी ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ तरीके से काम कर रहे हैं और अपने कल को संवार रहे हैं।
0: तो आपने जाना कि कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हमारे मछुआरों को लाभ हो रहा है और उनकी आजीविका भी सुनिश्चित हो रही है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा। इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुँचा रहे हैं तमिलनाडु के मंडपम से।

0: पारंपरिक तरीके से समुद्र में फिशिंग यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मछलियों की संख्या तटीय क्षेत्रों में घटने लगी, जिसकी वजह से मछुआरों की आय पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उससे मछुआरों को किस तरह से लाभ हो रहा है और इसको लेकर वो क्या कहते हैं।
1: खेती हो या फिर मछली पालन का क्षेत्र, सरकार इन्हें मजबूत बनाने के उद्देश्य से नित नई योजनाएं लेकर आती रहती है, जिसके फलस्वरूप किसान और मछुआरे आत्मनिर्भर होकर अपने कार्य में सफल हो रहे हैं।
2: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கேன், திருவான வட்டம் தொண்டி புதுக்குடியில் மீனவராக இருக்கேன். நான் வந்து முன்ன வந்து படகு நாட்டு படகு வச்சுருந்தேன், அது மீனவர் இதிலேருந்து எனக்கு போட்டு தந்திருக்காங்க, பிரதமர் திட்டத்திலேருந்து எனக்கு வந்து போட்டு தந்திருக்காங்க. இப்போ முன்ன வந்து சராசரி ஒரு நாளைக்கு 500 வருமானம் வந்தது, இப்போ வந்து 1000 பரவலமாக வருமானம் வருது. இந்த வசதி பண்ணி தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.
0: मछली पालन के कई प्रकार हैं और उन्हीं में से एक है आधुनिक तकनीक से मछली पालन यानी केज कल्चर। केज कल्चर की बात करें तो ये पर्यावरण के अनुकूल है और ये खुले समुद्र में ही किया जाता है, जहां पर लहरों की गति कम होती है। इसके अलावा एक और फायदा है केज कल्चर का। जी हाँ, केज कल्चर की मछलियों की कीमत बाजार में अच्छी प्राप्त होती है, यानी इन्हें कभी भी बाजार में बेचा जा सकता है और अच्छी आय अर्जित की जा सकती है।
1: किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने में नई और आधुनिक तकनीक बेहद उपयोगी साबित होती है। मछली व्यवसाय के लिए भी नई तकनीकों का अपना ही फायदा है। इस क्षेत्र के लिए नई तकनीक किसी क्रांति से कम नहीं। नई तकनीकों के माध्यम से मछली पालकों को काफी लाभ हो रहा है और उनकी आमदनी में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और वैज्ञानिक इसमें मददगार बन रहे हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी बेहद लाभदायक तकनीक है केज कल्चर। ये मछली पालन की नई तकनीक है जिसमें जलाशयों में निर्धारित जगह पर फ्लोटिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं। सभी ब्लॉक इंटरलिंक रहते हैं। जाली में 100-100 ग्राम वजन की मछलियां पालने के लिए छोड़ी जाती हैं। मछलियों को प्रतिदिन आहार दिया जाता है। फ्लोटिंग ब्लॉक का लगभग 3 मीटर हिस्सा पानी में डूबा रहता है और 1 मीटर ऊपर तैरते हुए दिखाई देता है। केज कल्चर में पंगेशिस प्रजाति की मछली का पालन होता है। 100-100 ग्राम की मछलियां 10 महीनों में 1.25 किलो की हो जाती हैं। बीते कुछ वर्षों से मछली पालक इस कल्चर को ज्यादा अपनाने लगे हैं और उन्हें लाभ भी मिल रहा है। मछली पालन के क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं भी देखी जाती हैं। एक तो जमीन और जलीय संसाधन में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई है और लागत भी काफी बढ़ गई है। इसके अलावा विदेशी प्रजातियां पालन से मूल किस्मों पर बुरा असर पड़ रहा है और बहुत अधिक बीज संवर्धन करने के कारण बीमारियां भी फैल रही हैं। ऐसे में नई तकनीकों को चुनना ही सरल उपाय है, जिसमें से एक है बायोफ्लॉक तकनीक। इस तकनीक के सहारे कम क्षेत्र में मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक दरअसल शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, अनुपयुक्त खाना और मछली मल से बना होता है। इसमें 60-70% कार्बनिक और 30-40% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बड़े बायोफ्लॉक नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। मछली पालन में बाहर से दिए गए फीड का 20-30% हिस्सा ही मछलियाँ उपयोग करती हैं, बाकी बचे पानी में ही रह जाते हैं। इन्हीं बचे हुए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को बायोफ्लॉक विशेष सूक्ष्म जीवों के जरिए फिर से खाने लायक बना देती है। इस तकनीक से लगातार पानी में ऑक्सीजन मिलता रहता है।
0: मत्स्य पालन तकनीक कई प्रकार की होती है और तटीय क्षेत्र में खेती के लिए सबसे आदर्श है, लेकिन इसे और विकसित करने के लिए और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हैचरी का विकास भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि हैचरी के विकास के लिए कौन कौन से नवाचारों को मत्स्य पालन से जोड़ा जा रहा है और इससे कौन से नए आयाम मत्स्य पालन के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं।
1: मछली पालन करने के साथ ही मछली बीज उत्पादन हैचरी लगाकर भी किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। बढ़ते मछली पालन के कारण आजकल मछली बीज की अच्छी खासी मांग है। ऐसे में मत्स्य बीज उत्पादन स्वरोजगार का अच्छा माध्यम बन सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार अनुदान भी दे रही है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान मंडपम के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार ने इसके बारे में जानकारी दी।
3: Here my discipline is veterinary pathology. I am taking care of fish health status in hatchery as well as in the cage system. So fish is totally depending upon the water environment. So at any stages from larviculture to broodstock, nursery and larvae and grow-out stages, at any stages disease will come. So the water, we have to keep it, the water environment very neat and clean. So the feed return, it is play a major role. So we have to take the feed return properly. Otherwise, there will be getting chances of ammonia formation. So in the rearing system, in the larviculture and the nursery system, ammonia formation is the main thing, getting chances of mortality. From the larvae to broodstock, many diseases are coming, disease and disorders are coming. Particularly in hatchery system, they are getting chances of parasitic infestation. There is getting chances of ciliates, protozoal, and other crustacean parasites are the parasitic infestation which affecting in the hatchery system. So for that one, water is the main thing. We have to prevent the ammonia formation. So the other water parameters like temperature, dissolved oxygen, ammonia and salinity, that and all for suit, we have to keep it the water in the suitable for the fish culture. So in cage system, once after completion of the nursery phase, we used to stock in the cage system. When it is going to the open system, getting chances of many infections. So we have to give more more immunity or more immune boosting supplements to the fishes in larviculture. So for that, we are giving any vibriosis kind of vaccination.
1: नई नई तकनीकों का फायदा अब केवल खेती में नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकों का साथ लेकर मछली पालक भी निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं, साथ ही अच्छी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं।
0: यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या है CMFRI की भूमिका, कैसे नई तकनीक से हमारे किसान, हमारे मछली पालक मछली पालन को नए आयाम तक ले जा रहे हैं, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।

0: मत्स्य पालन के क्षेत्र में CMFRI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समंदर की कई ऐसी मछलियों की प्रजातियां हैं जो कि विलुप्ति की ओर है। ऐसे में CMFRI की तरफ से ऐसे अनुसंधान किए जा रहे हैं और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन प्रजातियों को बचाया जा सके और हमारे मछुआरों की इनकम में वृद्धि भी हो सके। आइए जानते हैं कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का क्या कहना है।
1: भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 3 फरवरी 1947 को केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई और बाद में वर्ष 1967 में संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिवार से जोड़ दिया गया। स्थापना के बाद लगभग 65 वर्षों के दौरान संस्थान विश्व में ही अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बन गया। बीते सालों में संस्थान ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। CMFRI की मुख्य उपलब्धि 8000 किलोमीटर से अधिक होने वाली तट रेखा से मत्स्य की पकड़ एवं प्रयास का आकलन करने के लिए विशेष तरीका, जिसे स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेट रैंडम सैंपलिंग मेथड कहा जाता है, का विकास एवं शोधन है। इस प्रणाली से संस्थान भारत के सभी समुद्रवर्ती राज्यों से पकड़ी गई 1000 से अधिक प्रजातियों से संबंधित 9 मिलियन पकड़ एवं प्रयास के डाटा रिकॉर्डों सहित कई राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी आंकड़ा केंद्र का अनुरक्षण कर रहा है। समुद्री संवर्धन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसमें MFSC और PhD पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। समुद्री संवर्धन में मानव संपदा का भी सफलतापूर्वक विकास किया गया। CMFRI ने नए क्षेत्रों जैसे समुद्री पखमछली पालन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता में अनुसंधान कार्य शुरू किए हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान मंडपम के निदेशक ने संस्थान की भूमिका और आने वाले सालों में किन किन मुख्य कार्यों पर संस्थान का फोकस रहेगा, इसके बारे में विस्तार से बताया। आइए जानते हैं।
2: The ICAR Central Marine Fisheries Research Institute is one of the premier fisheries research institute of the Indian Council of Agricultural Research.

0: The CMFRI was initially started at Madras in the year 1947, and subsequently it was shifted to Mandavam camp in the year 1949, and then it continued to function as the CMFRI headquarters till 1971, and in 1971 the headquarters was shifted to Kochi in Kerala. In 1967, this institute, CMFRI, came under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research. Now, Mandavam Regional Centre is one of the oldest and the largest regional centre of ICAR, Central Marine Fisheries Research Institute.
1: संस्थान ने तटीय आवास तंत्र और मछुआरों पर बुरा असर डालने वाले जलवायु परिवर्तन मुद्दों का संबोधन किया। समुद्री प्रग्रहण एवं पालन मत्स्यकी में संस्थान के बहुविषयक पहल से विश्व के किसी भी सुव्यवस्थित समुद्री प्रयोगशाला की तुलना में अग्रणी संस्थान की मान्यता प्राप्त हुई है।
0: The center has achieved significant breakthrough in breeding two very important commercially important food fishes. One is the cobia, Rhachicentron canadum, and the silver pompano, Trachinotus blotchy. So these are the two important fishes which the center has bred. And we continue to work on standardization of captive breeding and seed production of many of the commercially important food fish resources. The center also focuses on the studies on fishery environment and also on marine biodiversity, particularly on the coral reef ecosystem, the mangrove ecosystems, and also on the protected species, the marine protected species. Another important aspect is when we talk about the seaweed farming as well as the captive breeding for seed production of commercially important food fishes, because the grow out of food fishes is mainly done in marine cages, the open sea cages. So along with that, we are trying to integrate the seaweed farming, which is popularly called as the integrated multi-trophic aquaculture, that is rearing fishes in open sea cages. And so in association to that, we are also having the rafts of seaweeds, so that a combination of fish rearing and seaweed farming is done. The focus for the next 1 year would be in the front of capture fisheries. We'll be focusing on the stock assessment and population dynamics of some of the important commercially food fishes and shell fishes which are not attempted so far. And in fishery environment and biodiversity, like we are working on the jellyfish swarming dynamics. We have been working, this particular project has been on for the last 6 years, and we continue to work on the swarming dynamics of jellyfishes.
1: केंद्रीय समुद्री मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान मंडबम के निदेशक ने बताया कि यह संस्थान नई तकनीकों पर काम कर रहा है, जो कि किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है।
2: पारंपरिक तरीके से समुद्र में फिशिंग यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मछलियों की संख्या तटीय क्षेत्रों में घटने लगी, जिसकी वजह से मछुआरों की आय पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, उससे मछुआरों को किस तरह से लाभ हो रहा है और इसको लेकर वो क्या कहते हैं।
1: इस संस्थान द्वारा विलुप्त हो रही मछलियों को बचाने के उद्देश्य से कई कार्य किए जा रहे हैं। ब्रूड स्टॉक प्रबंधन के माध्यम से यहाँ कार्य कर रहे वैज्ञानिक इन प्रजातियों को सुरक्षा दे रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।
3: फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर कोबिया एंड सिल्वर पंपानो वर डेवलप्ड हियर एंड दीज फिशेस दे हैव अ वेरी हाई एंड फास्ट ग्रोथ रेट एंड ऑल्सो इट हैज अ वेरी गुड मार्केट सो वी प्रोड्यूस द सीड्स एंड द फार्मर्स are taking the seeds from us and they are farming in their cages and the coastal ponds. This is a endemic species of this Gulf of Mannar and Park Bay. We carry out this activity to enhance the stock in the wild. We produce the host larvae and ranch them in the Gulf of Mannar and Park Bay, which is the natural environment for this shrimp, and they grow in their natural environment and they are caught by the fishermen.
1: मत्स्य पालन क्षेत्र 2,80,00,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। इसमें समुद्र से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे भी शामिल हैं और तालाबों में मछली पालन कर रहे किसान भी। मछली उत्पादन व्यवसाय दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है, कारण अपार संभावनाएं। दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए मत्स्य पालन पर निर्भर हैं। बीते वर्षों में मछली उत्पादन में वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश में मछली व्यवसाय का भविष्य उज्जवल है।
4: हूँ से आरजे राकेश
5: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
4: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। तो किसान भाइयों हमने आपकी बात हामली मछली पालन एतरे मासला पालवानी बातियो बड़ी बातियो आपुन कृषि था जोड़ायला विशेषज्ञ अने अनुभवी लोगों बताड़ी हाथे हाथ एक एवा किसान भाई तीनों की स्टोरी आपड़ी वश में साझा करी के केवी रीते मासला पालवानी खेती करी ने त्या घणो असल अने मोटो मुनाफा कमाई रहा छे। किसान भाईओ जेवी रीते पानी पड़ी गयो छे अने नाना नाना बांध में पण आपू मछलाना बी सोड़ीने घणो असल अने मोटो मुनाफा कमाई सकी। किसान भाईओ कार्यक्रम ने आगाड़ी बढ़ावी अने हाव हामळवाना से आपू झींगा पालन एतरे मछला पालवानी खाते हाथ आपू घेसा पाली सकी अने इनुथी पण घणो असल अने मोटो मुनाफा नजर आवे छे। कार्यक्रम में बन्या रहेजो, जाजो मती कहता हामळता।

0: को बढ़ाने के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के किसानों को प्रेरणा भी दे सके। आज हम आपको गुजरात के नवसारी के एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। जी हाँ, इस किसान ने मछली पालन और झींगा पालन में एक नया विकास कर नया आयाम स्थापित किया है। तो चलिए इस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं।
1: गुजरात खेती के साथ मछली पालन के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि राज्य की समुद्र तट की लंबाई करीब 1214.7 किलोमीटर है, जो कुल समुद्र तट का लगभग 23% भाग कवर करता है। और यही तटरेखा यहाँ किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है। हालांकि ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां पर्याप्त पानी ना होने के कारण किसान बारिश के पानी का सही इस्तेमाल कर मछली पालन को सफल बना रहे हैं। हमारे आज के सफल मछली पालक भी ऐसे ही हैं, जो समुद्र के पानी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो बारिश के पानी का संचय कर उसमें मछली व झींगा पालन करते हैं। पटेल इस समय करीब 40 एकड़ में मछली व झींगा पालन कर रहे हैं। वो मुख्य रूप से देसी नस्लों की मछलियां, जिनमें रोहू, कतला, मृगल पालते हैं। उनका मानना है कि देसी प्रजाति की मछलियां आसानी से ढलकर विकास कर लेती हैं। इनका वजन तेजी से बढ़ता है, इससे कम समय में बढ़िया मुनाफा मिल जाता है।
2: यहाँ हम 40 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं और यहाँ पानी का थोड़ा दूसरा कोई सोर्स है नहीं बारिश के अलावा। इसके लिए पहले हमको एक साल यहाँ रखे, एक साल का ईयरलिंग बनाना पड़ता है, उसके बाद स्टॉकिंग पॉइंट में हम लोग स्टॉक करते हैं, तो 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है।
0: सफलता की इस दास्तां को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं मछली पालन पर एक खास रिपोर्ट के बारे में।
1: मछली भारत में भोजन, पोषण, रोजगार व आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली पालन क्षेत्र संभावनाओं से भरा है। प्राथमिक स्तर पर ये क्षेत्र करीब 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और मत्स्य पालकों को आजीविका, रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करता है। मछली उत्पादन पिछले 75 वर्षों में 22 गुना की वृद्धि के साथ एक व्यावसायिक उद्यम में बदल गया है। साल 1950 से 51 में मात्र 7.5 लाख टन से शुरू हुआ भारत का कुल मछली उत्पादन 2021 से 22 में रिकॉर्ड 162.48 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
0: कि देश हमारा मछली पालन के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रहा है, कैसे किसान भाई इस क्षेत्र से जुड़कर भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, चलिए कार्यक्रम की तरफ वापस रुख करते हैं और जानते हैं रोहित जी की तालाब में मछली पालन के नई तकनीकों के बारे में।
1: रोहित जी करीब 40 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं, जिसमें इनका हर तालाब करीब 1 एकड़ का है। उनके तालाब में मछलियां महज 5 से 6 माह में ही तैयार हो जाती हैं, क्योंकि सही विकास के लिए वो हेचरी से मछलियों का बीज लेते हैं। इसके बाद उन्हें एक साल तक पॉन्ड में रखते हैं और जब इन मछलियों के वजन करीब 100 ग्राम तक हो जाते हैं तो इन्हें मुख्य तालाब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से मछलियां 6 माह में 1 से 1.5 किलो वजन ले लेती हैं और यही वो समय होता है जब ये बाजार भेजने के लिए तैयार है।

0: लेकिन इन सारी प्रक्रिया के बीच इनके आहार का खास ख्याल रखा जाता है, साथ ही उन सारे पहलुओं को अपनाया जाता है जिससे मछलियों में बीमारी ना फैले।
1: इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं आता है, आर्गुलस का कभी कभी प्रॉब्लम, हाई डेंसिटी स्टॉकिंग करते हैं तब आता है प्रॉब्लम, है तो फिशरीज वाला थोड़ा मदद करते हैं, 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है, साइज 1 किलो 1.5 किलो तक हो जाता है और मार्केट 150 रुपये केजी पर लेके जाते हैं।
2: दोस्तों, सफल किसान के इस कार्यक्रम में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम जानेंगे झींगा पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, आप बने रहें कार्यक्रम सफल किसान।

0: بس.
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि झींगा पालन को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मछली पालकों को ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी.
2: रोहित जी मछली पालन के साथ साथ झींगा पालन भी करते हैं. हालांकि झींगों के लिए उन्होंने अलग से तालाब बनवाए हैं. करीब 5 हेक्टेयर के एरिए में झींगे पल रहे हैं, जिसमें एक एक हेक्टेयर का एक तालाब है. वो बताते हैं कि झींगा पालन के लिए उन्होंने जमीन लीज पर ली है, क्योंकि जिन तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहाँ झींगे नहीं पाले जा रहे. रोहित इसके पीछे रखरखाव के तरीकों में अंतर को वजह बताते हैं. उनके तालाब में टाइगर प्रजाति की झींगों को पाला जा रहा है, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है.
3: जिला कलेक्टर 5 हेक्टर मेरे को जमीन लीज पे दिया हुआ है 20 साल के लिए. उसमें हम झींगा उच्छेद की प्रवृत्ति कर रहे हैं.
4: रोहित भाई के फार्म पे झींगा फार्मिंग चलता है. इधर टाइगर झींगा है, उसका प्रोसेसिंग 4 महीने जितना है, 4 महीने में पाकर तैयार हो जाता है, बाद में हार्वेस्टिंग होता है. इधर में 10 तालाब है. एक तालाब 100 मीटर बाय 100 मीटर का है. एक तालाब में कम से कम 6 एरेटर लगा हुआ है. वो पूरा पानी का सर्कुलेशन करता है. बाद में खुराक डालने का पहले सेंटर में जो कचरा जमा होता है उसको पंप से निकाल देते हैं, बाद में खुराक डालते हैं. ऐसा करके 4 महीने का प्रोसेस है झींगा फार्मिंग का. तो युवा लोग के लिए बहुत अच्छा है, इनकम के लिए ये सारा ये बिजनेस बहुत अच्छा है झींगा फार्मिंग का.
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और झींगा पालन को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं.
2: हमारे देश में इसे शुरू करने के लिए स्थान का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है. हालांकि हमारे देश में तटीय इलाकों और तालाबों में इनका पालन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तकनीकों की सहायता से अब किसान इसे खेतों में भी कर सकते हैं. विशेषज्ञ की माने तो एक बार के पालन में 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर का मुनाफा कमाया जा सकता है. झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना फायदेमंद होता है.
3: झींगा कल्चर में उसको 4 टाइम खाना देना पड़ता है और 4 टाइम उसका चैप्टर देखना पड़ता है. और फार्म में कोई एंटर करेगा तो उसको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से बात लेना पड़ता है.
2: इसे छोटे पैमाने पर शुरू करने के लिए सबसे पहले तालाब की नर्सरी तैयार करनी होती है. इसके लिए तालाब का पूरा पानी निकालकर उसको अच्छी तरह से सुखा ले. इसके बाद एक जुताई कर तालाब में 1 मीटर की गहराई तक पानी भरे. इसके बाद नर्सरी में लगभग 20,000 बीज डालें. हालांकि इनका संचयन मुख्य रूप से अप्रैल जुलाई माह में ठीक रहता है. साथ ही इस समय भोजन के रूप में सूजी, मैदा व अंडा को एक साथ मिलाकर दें. इस तरह बीज से निकलने वाले लार्वों को करीब 45 दिनों तक रहने दें. इस दौरान ये लार्वा शिशु झींगों में बदल जाते हैं और इस समय इनका वजन करीब 3 से 4 ग्राम तक का हो जाता है. बस यही वो समय होता है जब इन शिशु झींगों को मुख्य तालाब में छोड़ा जा सकता है. इस दौरान किसान या पशुपालक चाहे तो झींगों के साथ देसी मछली पालन भी कर सकते हैं.
3: 1 हेक्टेयर बनाने के लिए 1.5 लाख तक वो बनाने का खर्चा हो जाता है. उसके बाद आउटलेट, इनलेट और एरेटर का ऐसा 3.5 लाख तक का एक तालाब बनाने में खर्चा लग जाता है. और हम लोग हमारा खाड़ी खलाई क्रिक पड़ता है. इधर सिचुएशन के हिसाब से हमको फरवरी में स्टॉक करना पड़ता है और बारिश आएगा उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो चार महीने का हार्वेस्टिंग कल्चर है, उसमें एरेटर, लेबर और फीड सीड का ये सब खर्चा मिलके 20% तक मिल जाता है।
1: दोस्तों, मछली पालन हो या झींगा पालन हो, तालाब में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं रोहित जी से कि मछली पालन के और झींगा पालन के इस क्षेत्र में उन्होंने अपने तालाबों में ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन किया है और बाकी किसानों के लिए वो क्या कुछ सलाह दे रहे हैं। अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो इस चीज पर आपको बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है।
2: व्यवस्थित इन तालाबों के किनारे आप जो मशीनें देख रहे हैं इन्हें एरिएटर कहते हैं। ये तालाब में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। आमतौर पर एरिएटर को समय समय पर चलाते रहना चाहिए, लेकिन अगर आसमान में बादल छाने पर तालाब में जाकर देखें कि मछलियां पानी से बाहर मुंह तो नहीं निकाल रही, अगर ऐसा है तो ये पानी में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हैं। ऐसे में तालाब में ऊंचाई से पानी गिराएं या ऑक्सीजन एरिएटर दिन में 2 से 3 बार चलाएं। इसका एक और फायदा है कि अगर तालाब में गंदगी एकत्रित हो गई है तो एरिएटर की सहायता से उसे आसानी से निकाला जा सकता है। इसके साथ ही मछली पालकों को चाहिए कि तालाब में जल स्तर को बनाए रखें, जिससे मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके।
3: ट्रैक्टर देखने के बाद हम लोग एरेटर चलाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए एरेटर चलाते हैं। 4 टाइम फीड डालते हैं और उसके बाद वो कितना कंज्यूम हो गया वो देखने के बाद फिर एरेटर चलाते हैं। एरेटर घूमता है तो उसका स्लज सेंटर एरिया में जमा हो जाता है, वो हम स्लज पंप से फिर बाहर निकालते हैं।
1: दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कैसे एक सफल मछली पालक मछली पालन क्षेत्र से जुड़कर कितना मुनाफा कमा सकता है और रोहित जी सालाना कितना मुनाफा कमा रहे हैं। आप बने रहें।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मछली पालन में अपार संभावनाएं हैं, अच्छा खासा मुनाफा किसान भाई से कमा सकते हैं। आइए अब जानते हैं रोहित जी के सालाना मुनाफे के गणित के बारे में।

0: इतने बड़े पैमाने पर मछली व झींगा पालन करने के लिए रोहित जी ने कई लोगों को काम पर रखा है, जो तालाब में आहार डालने से लेकर इन्हें बाजार भेजने तक की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। रोहित बताते हैं कि उनके यहाँ तैयार मछलियाँ बाजार में करीब 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती हैं। एक तालाब से उन्हें 2 से 2.5 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाते हैं। इसके अलावा झींगा पालन से भी बढ़िया आय हो जाती है। सालाना आय को देखा जाए तो रोहित जी की आय करीब 1.5 करोड़ जाती है। माल बेचने के लिए भी रोहित को मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उनका माल सप्लायर के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाता है।
1: मार्केट तो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसलिए एक्सपोर्टर को ही देना पड़ता है। हम लोग फार्मर है, इसलिए कल्चर करके उसको सप्लायर को देते हैं, सप्लायर फिर एक्सपोर्टर को देते हैं। गत साल हम लोग हार्वेस्टिंग किया था, उस टाइम 460 का रेट मिला था। उसमें थोड़ा प्रॉफिट 50% तक रहता है, और एक टन में 3 टन तक 3-4 टन ऐसा प्रोडक्शन निकलता है, और 150 रेट पर केजी मिलता है। और दूसरा हमारा फार्म है फ्रेश वाटर का, यहाँ हम फिश का कल्चर करते हैं, और उसके लिए जो छोटा बच्चा है वो हम हेचरी से लेके आते हैं, और उसको पहले 1 साल तक एक पॉन्ड में रखता है, और 100 ग्राम का हो जाएगा उसके बाद उसको कल्चर पॉन्ड में ट्रांसफर करते हैं। वहाँ 6 महीना तक उसको फीडिंग कराना पड़ता है, और पानी का लेवल मेंटेन करना पड़ता है, तो 6 महीने में वो 1 किलो तक हो जाता है। हमारे पास अभी 40 पॉन्ड है, लेकिन 20 पॉन्ड में ही हम लोग कल्चर कर पाते हैं, क्योंकि पूरा साल हमारे पास पानी का दूसरा कोई सोर्स नहीं है, कैनाल वाटर का फैसिलिटी नहीं है, बोर में थोड़ा सलाइन वाटर है, इसलिए बारिश का पानी से ही हम लोग फ्रेश वाटर फिशरी मछली पालन कर रहे हैं। और बनाने का तो खर्चा 1.5 लाख तक हो जाता है एक पॉन्ड बनाने में, और उसमें इनलेट आउटलेट और फीस का सीड और फीड लेबर सब मिला के इतना 50% तक रह जाता है, तो एक तालाब में 3-3.5 लाख 4 लाख तक का प्रोडक्शन होता है।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का वापस बहुत बहुत स्वागत है और आज जो कलाकारा, जो टैलेंट, जो सिंगर हमारे साथ हैं उनका नाम है अनुभा जी। बाकी अनुभा जी अपने बारे में खुद बताएंगी, अपने बारे में वो डिस्क्राइब करेंगी कि वो क्या पर्सनालिटी हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। तो अनुभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू आवर प्रोग्राम।
1: थैंक यू सो मच समीर जी।
0: तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं।
1: जी जरूर समीर जी, मेरा नाम अनुभा है, मैं बेसिकली रहने वाली रांची की हूँ, बट मैं पिछले 18 सालों से बैंगलोर में रहती हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ और मेरा एक छोटा सा परिवार है, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, तो बस हम तीनों ही हैं जो यहाँ रहते हैं। और फिलहाल तो मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, बेटी के कहने पर जॉब छोड़ दी है, तो आई एम वेरी सैटिस्फाइड बीइंग अ होम मदर।
0: अमेजिंग, दैट्स वेरी वेरी नाइस अनुभा जी। होम मेकर होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। सभी लोग मानते हैं इस बात को, जानते हैं, कई बार बस इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई उन्हें अपने दिल के अंदर मालूम होती है। बहुत बढ़िया, तो दोस्तों आपने सुना, चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को अनुभा जी के ही गाए हुए इस बेहद बेहद प्यारे से नगमे से।

0: बहुत खूब। अनुभा जी चलिए बचपन में चलते हैं, आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: बचपन में मुझे पढ़ने का काफी शौक था, तो मैंने सोचा था कि मैं पीएचडी करना चाहती थी। और फिर कहीं एक, क्योंकि घर में गाने बजाने का माहौल काफी था, तो मैं सिंगर भी बनना चाहती थी। तो एमबीए किया था और उसके बाद मैंने सोचा था ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम में ही पीएचडी करूं, बट उसके पहले मेरी शादी हो गई और फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई, तो पीएचडी का भी सपना रह गया। और सिंगर तो मैं बन नहीं पाई, बट हाँ, शौक के लिए जरूर गाना गाती हूँ।
0: बहुत खूब अनुभा जी, बहुत खूब। वैसे तो देखिए अनुभा जी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप पीएचडी करना चाहती थी और ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहती थी, तो अब कर लीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आप होम मेकर हैं, मैं मानता हूँ वक्त कम मिलता होगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अगर मैनेज करें तो वक्त भी मिल जाएगा। कोशिश करें, पीएचडी भी हो जाएगी। बहुत खूब दोस्तों, आपने सुना अनुभा जी पीएचडी भी करना चाहती हैं। चलिए सुनते हैं एक प्यारे से गीत को अनुभा जी के ही गाए हुए।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। अनुभा जी, बचपन की बात हो रही है, आपके कोई फेवरेट टीचर रहे हैं? कौन थे वो और क्यों?
1: जी, मेरे दो फेवरेट टीचर्स हैं मुझे जो अभी तक याद रह गए हैं। एक जो मेरी नर्सरी की टीचर थी, शायद उन्होंने शेप अप किया मुझे स्कूल में, इतने आराम से ढाला, तो उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, मिसेस नुपुर घटक।
0: जी
1: और एक मेरे नाइन्थ के और टेंथ के मैथ्स के टीचर, मैथ्स जो इतनी टफ सब्जेक्ट मानी जाती है, उन्होंने इतना इजी बनाया कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ
0: बहुत
1: और
0: खूब।
1: काफी अच्छे स्कोर भी आए। तो वो बहुत ही इन दोनों को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और यहाँ तक कि मैं अभी तक इस एज तक मैं उनसे टच में हूँ।
0: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना अनुभा जी के दो फेवरेट टीचर्स हैं। तो अगला गाना जो हम पेश कर रहे हैं, अनुभा जी की ही आवाज में गाया हुआ, इन दोनों टीचर्स को डेडिकेट करते हुए।

0: बहुत बढ़िया अनुभा जी, आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से तीन वर्ड्स हैं, कौन से तीन ऐसे शब्द हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, आपको बयान करते हैं?
1: मुझे लगता है मैं काफी केयरिंग हूँ और थोड़ी सी चिल्ड आउट हूँ और काफी लविंग हूँ। ये मेरी फैमिली भी या मेरे दोस्त या मेरे पड़ोसी भी इस बात की गवाही दे देंगे कि ये तीनों ट्रेट्स मुझे लगता है ये मुझ में है डेफिनेटली।
0: ओके, वेरी नाइस। ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी वेरी क्यूट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट, बहुत ही अच्छे शब्द। तो दोस्तों, आपने सुना कितनी खूबसूरती से अनुभा जी ने अपने आप को डिस्क्राइब किया है। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अनुभा जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया अनुपा जी, एक फन क्वेश्चन। अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाने की चीज कोई भी आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: खाने की चीज तो नहीं बनाई थी, मेरी दादी मुझे किचन में जाने नहीं देती थी। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ कि जब बोला जाता है लड़कियों को खाना बनाना सिखाओ या ऐसा कुछ, मेरी दादी इसके अगेंस्ट थी और वो मुझे कभी किचन में उन्होंने जाने नहीं दिया। तो काफी जद्दोजहद के बाद मैंने पहली चीज जो बनाई थी वो चाय थी, और वो लोगों को काफी पसंद आई थी, स्पेशली मेरे चाचू को काफी पसंद आई थी, तो यही एक पहली चीज मैंने बनाई।
0: Isn't that very nice, very cute? बहुत खूब। दोस्तों, इस बात को एक्सेप्ट करना कि ठीक है, कौन सी चीज हमने हमारी जिंदगी में पहली बार बनाई थी खाने की चीज, दैट इज वेरी फनी, यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है और एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी मिलता है उसमें और मजा भी आता है। तो आपने सुना अनुभा जी ने पहली बार क्या बनाया। चलिए एक बहुत खूबसूरत सा गीत भी सुनते हैं अनुभा जी का ही गाया हुआ।

0: कौन सी हॉबीज हैं आपकी?
1: जी, सिंगिंग तो एक काफी बड़ा शौक है और एक्चुअली एक थेरेपी है मेरे लिए। सिंगिंग के अलावा मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। पहले तो मैं सिर्फ नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ती थी, अभी कुछ दिनों से कभी कोई फिक्शनल अच्छी बुक मिल गई तो मैं वो भी पढ़ लेती हूँ। मुझे बस बातें करना काफी पसंद आने लगा है और तो वैसे कुछ स्पेशल मुझे और कोई मेरी हॉबीज नहीं है। मुझे स्केचिंग करना पसंद है, मैं स्केच कर लेती हूँ कभी।
0: ओके ओके, वेरी नाइस। तो इसी बात को जरा सा आगे बढ़ाते हुए मैं बस पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है?
1: रोड टू कांदाहार मैंने एक पढ़ी थी, एक नॉन फिक्शनल बुक है रोड टू कांदाहार। ये मुझे काफी ग्रास्प करके रखी इस बुक ने और जब तक वो फिनिश नहीं हुई मुझे लगा पता नहीं कुछ तो है जो रुक गया है, थम गया है, तो वो बुक मुझे काफी पसंद आई थी।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस बुक, रोड टू कांधार, वेरी नाइस बुक, बहुत खूब। दोस्तों, आपने सुना अनुभा जी ने फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स को पढ़ने का भी शौक शुरू किया और नाउ शी इज अ वेरी गुड रीडर, वोरिशियस रीडर। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अनुभा जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया अनुभव जी। कई बार चलते चलाते हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिससे हम हमारी खुशी के रास्ते में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। रेगुलर रूटीन में कोई ऐसे डिस्टर्बेंसेस हैं जो आपको परेशान करके जाते हों?
1: जी नहीं, ऐसी तो कोई बाधा मुझे दिखती नहीं है। काफी सपोर्टिव फैमिली है, मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं। और कुछ दिनों तक, क्योंकि मेरी बेटी है तो उसके उसके देखभाल में थोड़ा समय का कम अभाव रहता था, बट फिलहाल वो भी अब बड़ी हो चुकी है, खुद की पढ़ाई उसकी है, तो अभी ऐसी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मुझे दिखती है कि मुझे किसी भी चीज को करने में टाइम निकालना या रोकना, ऐसा मुझे नहीं लगता।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। हम सभी ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि बस ऐसा ही रहे, कोई भी चीज
1: थैंक
0: ऐसी
1: यू
0: ना आए आपकी जिंदगी में जो आपकी खुशी को डिस्टर्ब करके जाए।
1: थैंक यू थैंक यू।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अनुभा जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत खूब। अनुभा जी, आज तक की आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही है, अकॉम्प्लिशमेंट आप क्या कहेंगे?
1: पता नहीं इसे अकॉम्प्लिशमेंट बोलेंगे या क्या, बट मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, मेरा परिवार। तो ये मेरी पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट तो नहीं है, बट जो भगवान ने मुझे दी है, मेरे मेरे माँ पापा, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, ये जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, ये बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे काफ़ी उससे हेल्प मिलती है। कभी ऐसा समय आता है जब आप कभी थोड़े से डल हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, तो ये लोग हमें डल रहने नहीं देते, तो ये और बहुत खुशियाँ मिलती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड फील करने वाली बात है कि मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव है।
0: बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने सुना कि अनुभा जी के जिंदगी का जो अच्छा अकॉम्प्लिशमेंट है वो है उनकी फैमिली। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत अनुभा जी का ही।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत अनुभा जी। क्या आप सपनों में विश्वास रखते हैं, और अगर आपको एक आजादी दी जाए कि आप चुन सकें कि आप किस तरह के किस सपने देखना पसंद करेंगी, तो कैसे सपने देखना पसंद करेंगी आप?
1: सपने देखती हूँ ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहते खुली आंखों से। हाँ, कभी एक लगता है कि शायद कभी सिंगिंग का ही कुछ कर पाऊँ, अदरवाइज थोड़ी प्रैक्टिकल इंसान हूँ, अचीवमेंट में बिलीव करती हूँ, हार्डवर्क में बिलीव करती हूँ, और शायद अगर ये दो हार्डवर्क किया तो जो डे ड्रीम भी इंसान कर रहा है वो पा सकता है। तो एज सच सपनों में तो नहीं, बट हाँ हार्डवर्क में जरूर विश्वास करती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों, हार्डवर्क का वैसे भी सब्स्टिट्यूशन कुछ है ही नहीं। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत अनुभा जी की ही आवाज में।

0: अनुवा जी, अब तक की जिंदगी में आपको सबसे अच्छा गिफ्ट तोहफा क्या मिला है और किसने दिया है?
1: दो कहूंगी।
0: जी
1: एक तो मेरी बेटी ने एक हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड बनाई थी, और उसने मुझे लगा उसमें उसने लिखा था कि मैं काफी स्पेशल हूँ,
0: वाह,
1: तो वो बहुत मेरे दिल के करीब है, वो आज भी मेरे पास है। और एक मेरे हस्बैंड ने जो मुझे एंगेजमेंट रिंग दी थी वो, तो ये दो चीजें काफी मेरे दिल के करीब हैं।
0: वेरी नाइस, वेरी क्यूट एंड वेरी प्रिसाइज। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। हमें जिंदगी में बहुत सारे तोहफे, बहुत सारी गिफ्ट्स मिलती रहती हैं। उनका, उनके साइज का बड़ा होना या उनकी कीमत को बहुत ज्यादा होना कभी जरूरी नहीं होता। कोई एक छोटी सी चीज जो हमारे दिल को छू के जाती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अपनी जिंदगी में हम ख्याल रखें हमें कौन से तोहफे ने सबसे ज्यादा इमोशनल किया है, स्पेशल फील कराया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अनुभाजी की ही आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: अनुभा जी, और अब हम हमारे प्रोग्राम के उस पादान पर आ गए हैं, उस जगह पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, आप कुछ कहिए, उनसे बात कीजिए।
1: जी बिल्कुल समीर जी, मेरा एक काफी सिंपल फंडा है लाइफ का कि बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव। तो जो भी आपके पास है और जितना भी है उसमें कंटेंट रहें, संतुष्ट रहें, एंड दैट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस। उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, आप चैन की नींद सोएंगे, अपने परिवार का ध्यान रखें, म्यूजिक को जरूर सुने, म्यूजिक का साथ नहीं छोड़ें, वो आपको बहुत सुकून देगा। तो बस गाना सुनते रहें, खुश रहें और कंटेंट रहें।
0: बहुत खूब, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही एप्रोप्रिएट और मजबूत संदेश दोस्तों आपने सुना। अनुभा जी आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, आपके गीत सुने, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू समीर जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपके सुनने वालों का बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर, हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आइए दोस्तों, आज के कलाकार का एक और बहुत ही खूबसूरत एपिसोड, जिसमें मैं मिलवाना चाहूंगा आपको ऐसी प्रतिभा से, ऐसे टैलेंट से जो मिडास टच से बच छू कर आए। तो मतलब जैसे मिडास में था ना, वो किसी को भी छू देते थे तो सोना बन जाता था। तो जो आज हमारी टैलेंट है वो है अबोली मैम। हम अबोली जी से ही बात करेंगे, उनसे उनका परिचय लेंगे, कौन है वो, क्या है वो, और फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से किसी एक के स्पर्श से वो सोना बन गई। तो अबोली जी, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए ना, हमारे आज के कलाकार फैमिली मेंबर्स आपके बारे में सुनना चाहते हैं।
1: जरूर समीश जी, नमस्ते। विश्व भर में एसएन रेडियो सुन रहे सभी श्रोताओं को अबोली ठोसर का सादर प्रणाम। सबसे पहले आपकी अनुमति से मैं ईश्वर, अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज इस भेंटवार्ता, इस इंटरव्यू के लिए मेरा नाम जिन्होंने सुझाया और मुझे इस योग्यता का समझा, वो श्री तुषार सामंत जी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बेसिकली डोंबिवली, मतलब बंबई के एक छोटी सिटी है, वहां से मैं हूँ। हमारे परिवार में शुरू से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव था। इसके लिए मुझे माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में, मतलब महज दूसरी कक्षा में थी तब से मुझे क्लासिकल संगीत सिखाना शुरू किया, और धीरे धीरे मतलब थोड़ी रुचि बढ़ने लगी, और इसके परिणाम स्वरूप 12वीं कक्षा में थी, यानी सिर्फ 17 वर्ष की आयु में, मैंने गांधर्व महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि प्राप्त कर ली।
0: ऑल राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए, अबोली जी ने बता दिया आपको कि वो कौन है, कहाँ है, तो अबोली जी से ही पूछना चाहूंगा मैं, और जो मैंने बात कही थी मिडास टच की, तो अबोली जी वो टैलेंट है, वो प्रतिभा है जिन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ कई शो किए, तो हम उस बारे में ही जानना चाहेंगे। अबोली जी, चलिए ऐसा करते हैं, पहले हम अबोली जी के ये गीत सुनते हैं जो उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए तैयार किए थे, फिर हम जानेंगे उनका संबंध स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी से। तो लीजिए पहले ये गीत सुनिए।

0: बहुत सुंदर गीत और बहुत ही प्यारी प्रारंभ, बहुत ही प्यारा स्टार्ट। अब बोले जी, अब प्लीज हमें बताइए, ये स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के साथ उनको छूने का, उनके साथ गाने का मौका आपको कैसे लगा, ये बताइए ना।
1: हाँ जी जरूर, मेरे सबसे पहले गुरु जैसे बोलते हैं माता पिता, उनके बाद मुझे संगीतकार श्री, मराठी के संगीतकार, जाने माने संगीतकार श्री दशरथ पुजारी सर, उनसे संगीत शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। पुजारी सर के थ्रू ही मुझे जाने माने इंडस्ट्री के म्यूजिक अरेंजर अनिल मोहिले जी से शिक्षा प्राप्त करने का और उनसे जान पहचान करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनिल जी के थ्रू मेरा लता जी के शो में प्रवेश हुआ, उनकी वजह से मुझे लता जी के शो में एज अ बैकअप वोकल आर्टिस्ट गाने का मौका मिला। तो ये सब ऐसे ही, ये सब एक के बाद एक घटनाएं होती गई और इट वॉज सो इजी फॉर मी कि अचानक से मतलब लता जी के शो में गाने का मुझे मौका मिल गया।
0: बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और फिर हम और बातचीत करते हैं आप बोले जी से कि क्या रहा एक्सपीरियंस उनका लता जी के साथ। आइए तब तक पेश करता हूं ये गीत

0: बहुत सुंदर गीत। तो चलिए आबोले जी आगे बढ़ते हुए बताइए ना, जब लता मंगेशकर जी के साथ आप गा रहे थे तो कैसा था एक्सपीरियंस, उनके बगल में खड़े होने में या उनके साथ एक ही स्टूडियो में होने में कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या फील हो रहा था आपको?
1: पहले तो मैं बताऊंगी कि फिल्म इंडस्ट्री का पहला बतौर कोरस सिंगर मुझे पहला मौका अनिल जी ने दिया था, वो लता जी की रिकॉर्डिंग का था जो हमने पहला गाना बजाया वंदे मातरम का आनंद मठ फिल्म से। तो वो मेरा फिल्म इंडस्ट्री का बतौर कोरस सिंगर इस हिसाब से मेरा पहला रिकॉर्डिंग था वो फिल्म इंडस्ट्री का, इसके लिए ये गीत मैंने मेरी लिस्ट में पहले रखा था, तो वो हमने सुना है शायद
0: जी।
1: हाँ, अभी लता जी, देखिए लता जी को मिलने के बाद पहले बार तो जो कोई भी देखता है तो जैसे सबकी हालत होती है वैसे ही मेरी भी हो गई, मैं बस देखती रह गई दिल से, जिसे कहते हैं ना कि खो गए हम लोग, खो गए अंग में, एक अजब सी सिहरन सी दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए, ये जितनी भी कहावतें हैं, मैं ना रही, मुझ पर कोई इख्तियार ना रहा, मेरे होश उड़ गए, ये सब बातें, ये सब ऐसे लगता है कि हाँ ये सब इन्हीं के लिए लिखी हुई है, क्योंकि कसम से लता जी से मिलने के बाद यही सब अनुभव हम लोग हमें अनुभव होते हैं ये सब चीजें, और भगवान की कृपा से उनके लगातार 6 शोज में मुझे एज अ बैकअप वोकल आर्टिस्ट के रूप में मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मतलब ये उपलब्धि मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की, गर्व की और गौरव की बात रही है। और मेरे सिटी से मैं अकेली ऐसी लड़की हूँ, अकेली ऐसी कलाकार हूँ जिसे इतने 6 कार्यक्रमों में एक बैकअप वोकल आर्टिस्ट के रूप में मन साझा करने का अवसर मिला मेरी सिटी से।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: थैंक यू।
0: चलिए दोस्तों फिर अबोली जी के संगीत का भी आनंद उठाएं, जो बिल्कुल लेजेंडरी लता मंगेशकर जी को छू के आया, उनसे सीख लेके आया।

0: बहुत सुंदर है बोली जी, अमेजिंगली ब्यूटीफुल।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: आपने 17 साल की उम्र में संगीत विशारद कर लिया गंधर्व महाविद्यालय से।
1: हाँ जी,
0: थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, हाउ डिड यू डू दैट, कब कैसे क्या हुआ?
1: ये तो जैसे मैंने पहले मेरे गुरु, हम लोग बोलते कि अपने माता पिता अपने पहले गुरु होते हैं, और माता पिता मेरे दोनों अच्छे संगीत सुनने वाले थे, अच्छे गा भी रहते थे दोनों, तो उनको संगीत की बहुत अच्छी पहचान थी, और उनका ये हमेशा कहना था कि अच्छा सुर सीखना है आपको तो क्लासिकल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसके लिए मुझे जैसे मैंने बोला कि दूसरी कक्षा में मुझे मम्मी ने, मुझे अभी भी याद है, मुझे मम्मी ने उठाकर पटक दिया था वो क्लास में, जो मेरी पहली गुरु थी श्रीमती लीला आघारकर, उनसे मैंने क्लासिकल सीखा। तो वो करीबन मतलब शुरू शुरू में तो बहुत कंटाल जाती थी मैं, लेकिन थोड़े थोड़े दिन में मेरा चस्का बढ़ने लगा और फिर ये संगीत विशारद तक की सफल तय हो गई आसानी से।
0: बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब। तो दोस्तों ये हैं वो टैलेंट, वो प्रतिभा जिनके गीत आज आप सुन रहे हैं, और बहुत मेहनत, बहुत प्रतिभा, यू नो, शिद्दत के साथ, पूजा के साथ उन्होंने अपने संगीत की पूजा की। आइए सुने ना ये दो प्यारे से गीत, उसके बाद हम वापस आए आबुली जी के पास और भी बहुत कुछ सीखने के लिए।

0: बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए अबोली जी, ये रोशन सर के साथ जतिन ललित साहब की शो में और इस्माइल दरबार शो के बारे में थोड़ा हमें बताइए, ये कैसे हुआ? उसके बाद आपको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला सारेगामा में, मेरी आवाज सुनो में और धुन धमाका में, थोड़ा उसके बारे में बताइए ना।
1: जैसे मैंने इंडस्ट्री में गाना शुरू किया तो एज अ बैकअप वोकल आर्टिस्ट, बोलते हैं ना कि माउथ पब्लिसिटी से मेरा परिचय होने लगा लोगों को कि अच्छी गाती है, थोड़ा बहुत मैं नोटेशन भी पढ़ सकती थी, गा सकती थी। तो उस हिसाब से मुझे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के अरेंजर्स से मुझे वो बुलावा आने लगा कि आप ये इसमें रिकॉर्डिंग में आ जाइए, इनके रिकॉर्डिंग में आ जाइए ऐसे। तो इस वजह से ये बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके लाइव शोज में भी काम करने का मौका मिला। और रोशन्स तो ये 1999 की बात है जब कहो ना प्यार है पिक्चर रिलीज हुई थी, तब ये रोशन्स नाम का शो, मतलब ऋतिक रोशन जी के दादाजी रोशन साहब जो ताजमहल पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका उनके दोनों बेटे मतलब राजेश रोशन, राकेश रोशन और ऋतिक रोशन, ऐसे पूरे रोशन्स फैमिली का वो शो था। तो वो भी शो के लिए कोई एक थे हमारे आर्टिस्ट, उन्होंने मेरा नाम उधर सुझाव दिया था कि इसको लेते हैं क्योंकि नोटेशन थोड़ा बहुत पढ़ना जानती है इसके लिए। तो ऐसे ऐसे मौके अपनी मेहनत की वजह से थोड़े फार और भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे मौके मिलते गए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों आइए ना, इन सभी चीजों को विचार में रखते हुए, सोचते हुए, महसूस करते हुए सुनते हैं ये गीत अबोली जी की ही आवाज में जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किए। बहुत बहुत शुक्रिया अबोली जी, सुनते हैं।
1: थैंक यू, थैंक यू।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंग, ब्यूटिफुल। हाँ बोले जी, आगे बढ़ते हुए मैं उस कंपटीशन के बारे में बताइए जो ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऑर्गेनाइज किया था। आपने क्या रोल अपना वहां पर निभाया, कैसे आपकी एंट्री हुई उसमें, क्या हुआ वहां पर? आपने आपने शायद दिल्ली और हुबली में भी इनके शोज को ऑर्गेनाइज किया, क्या हुआ था?
1: ये एक्चुअली ये दो अलग चीजें हैं। ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये उनकी स्टार ट्रेक करके गाने की कंपटीशन आई थी और जो वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस की जो कंपटीशन थी उससे वो आए थे, जो फाइनलिस्ट थे उनको तेरे मेरे सपने नाम की फिल्म आई थी उन पे उनको चांस दिया था। लेकिन ये कॉम्पिटिशन वहां पे 40,000 एंट्रीज आई थी, उसमें से 40 लोग सिलेक्ट हुए थे, उनमें मेरा नंबर आ गया था भगवान की कृपा से, तो हमारी वो कंपटीशन हो गई थी, सिंगिंग कंपटीशन। और ये जो आप बात कर रहे हैं दिल्ली और हुबली की, वो मैं लता जी के साथ, जैसे मैंने कहा कि 6 लगातार शोज मुझे करने का मौका प्राप्त हुआ, तो 6 शोज के दरमियान, मतलब हर एक शो की 8 से 10 रिहर्सल रहती थी, सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक या 5 बजे तक, तो इतने घंटे इतने दिन लता जी से मिलने के बाद, रूबरू होने के बाद, लता जी की इतनी सारी खूबियां वो महसूस होने लगी, तो मेरा दिल करने लगा कि ये, मतलब जो लता जी के फैंस है, जो लता जी के बेहद चाहने वाले लोग हैं, तो जो चीजें मैंने अनुभव की है वो लोगों तक किसी भी हाल में पहुंचानी चाहिए, ये मेरा निजी कर्तव्य है। तो इसके लिए मैंने खुद का एक कॉन्सेप्ट शो शुरू किया है जिसका नाम है लता दीदी अविस्मरणीय अनुभूति। मतलब लता जी के साथ मिलने के बाद मेरे साथ जो ऐसे बेहद खूब खास ऐसे किस्से हुए हैं जिनसे मैं लता जी की खूबियां बयां कर सकती हूँ, ऐसे सब किस्से, खुद के किस्से मैं ये शो में बताती हूँ, और वो शो मैंने दिल्ली हुबली में किए थे।
0: जी बहुत खूब। तो दोस्तों, किस तरीके से अबोली जी लता मंगेशकर जी से मिलती रही, उनके बारे में जानती रही और अब उनके बारे में हमें बता रही हैं। चलिए दोस्तों, फिर इनके गीतों का आनंद उठाएं और फिर वापस आएं।

0: बहुत सुंदर आबुली जी। आबुली जी जो आज के कलाकार के फैमिली मेंबर्स उन्होंने आपको सुना है, आपकी प्रतिभा को सुना है, आपके अचीवमेंट्स को सुना है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक कुछ मैसेज दीजिए उनको, कुछ कहिए उनसे।
1: जरूर जरूर। देखिए, लता दीदी से मिलने के बाद मेरा जो हाल हुआ था, मैंने बोला जैसे कि मैं ना रही, मेरा कोई खुद पे इख्तियार ना रहा ऐसी। तो देखिए, लता दीदी से मिलना ये हर एक आम इंसान का सपना होता है, ख्वाब होता है, किसका नहीं होता है? आप बोलिए, क्या आपको नहीं लगता मैं लता दीदी से मिलूं, मैं उसके साथ तस्वीर खींचूं? तो मैंने ये कॉन्सेप्ट शो आपके आपकी अनुमति लेती हूँ समीर जी, मैं इस शो के बारे में, मैं इस रेडियो के हिसाब से, मैं माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बहुत कम लोगों को भगवान की दया से खुशकिस्मत होते हैं, बहुत कम लोग की उन्हें चांस मिलता है, मौका मिलता है लता जी से रूबरू होने का। तो मैंने जो ये खुशी मिली, मुझे मिली है, ये जो तजुर्बे मिले हैं, अनुभव प्राप्त हुए हैं, वो इतने अतुलनीय, इतने अनमोल और अविस्मरणीय है, ये खजाना है बिल्कुल। और मेरी बस यही दिल से इच्छा है कि जितनी मैं इन खजाने से भर गई हूँ, ये अनमोल रत्न मैं लोगों के साथ लुटाना चाहती हूँ। और जैसे मैं इस दौलत से धनवान बनी हूँ, मैं चाहती हूँ कि दुनिया के हर कोने में बसे लता दीदी के चाहने वाले मेरे इस कार्यक्रम को सुने, जो लता दीदी अविस्मरणीय अनुभूति, और खुद वो अनुभूति महसूस करे, खुद धनवान बने। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी आपके इस रेडियो के माध्यम से कि अगर कोई ये प्रोग्राम मेरा सुनना चाहते हैं तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करें और खुद भी मेरी तरह धनवान हो जाए।
0: बहुत खूब, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, अगर आप और जानना चाहते हैं लता जी के बारे में, तो आबुली जी के प्रोग्राम को सुने, आबुली जी से संपर्क में रहें, बहुत कुछ जानकारी आपको मिल सकती है।
1: जरूर जरूर।
0: आबुली जी, बहुत बहुत आभार है आपका जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी बातें सुनी, आपके गीत सुने, उनका आनंद उठाया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच समीर जी।
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है।
0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं, और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ। तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से महकते हुए पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में हमेशा यही करते आए हैं, विचार करते हैं भला हम कौन हैं, क्यों हैं, क्या करते हैं इस दुनिया में, कैसे हमें जीना चाहिए। ये गंभीर विषय है, आसान नहीं है, ये फन नहीं है, ये अपने आप को समझने की कहानी है। और इसी कहानी के लिए हम कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं जो हमें समझा सकें, एक सरल भाषा में बता सकें भला क्या है आध्यात्म। तो आज हमारे साथ जो प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं वो हैं मोहन कृष्णन साहब। मोहन कृष्णन साहब का मैं स्वागत करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि ईश्वर की कृपा से वो कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं। मोहन साहब
2: जय श्री राम। नमस्ते, मैं मोहन कृष्ण अभी चेन्नई वासी हूँ। मेरा जन्म हुआ था कलकत्ता शहर में
1: जी,
2: और पढ़ाई वहीं हुआ था, और फिर मैं रिजर्व बैंक में नौकरी ले लिया और सेवानिवृत्ति के बाद चेन्नई में सेटल हो गया। और मुझे 30 साल की उम्र से महात्मा इनके साथ सत्संग का मुझे सौभाग्य मिला और उनसे मैं बहुत कुछ सीख सका हूँ। और समझिए 18 अध्याय भगवत गीता का मैंने एक बहुत ही संत के उनके चरण में बैठ के मैं इसकी अध्ययन किया था, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं सेवानिवृत्ति लिया हूँ और लोगों की खुशी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो सेवा हो सके वो करता हूँ।
1: बहुत सुंदर मोहन जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन साहब। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये प्रोग्राम हमको समझने के लिए है और आप से हमें उस सहायता की अपेक्षा है जिसे हम अपने आप को, हमारे सुनने वाले अपने आप को पहचान सकें। तो एक शब्द है, एक विधा है, एक धारा है जिसको आध्यात्म कहते हैं। तो एक साधारण मनुष्य को समझने के लिए मोहन जी हमें बताएं आध्यात्म क्या समझे हम, अध्यात्म का क्या मतलब हम माने।
2: अध्यात्म को समझ के लिए जरा बारीकी की सोच की जरूरत है। इस संसार में दो ही चीज है, एक है अहम मैं और दूसरा है इदम ये सब
1: जी।
2: इदम जो ये सब है उसे अनात्मा कहते हैं, और अहम जो मैं हूं उसको कहते हैं आत्मा, और ये आत्म विचार को अध्यात्म कहते हैं, उसके साथ जो संबंध बनाए रखना है उसे अध्यात्म कहते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब सीधी सी तौर पे मोहन साहब, क्या मैं ये समझूं कि आत्मा के अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं?
2: हाँ, आत्मा की अध्ययन आत्म विचार को अध्यात्म कहते हैं।
1: वाह क्या बात है, बेहद खूबसूरत। यहां पर दोस्तों आपने गौर किया हो, मोहन सर ने दो चीजें बताई, एक तो अपना अध्ययन आध्यात्म और नहीं अहम एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, और दूसरा था इदम। मैं ठीक कह रहा हूं सर?
2: जी जी ठीक कह रहे हैं, इदम
1: इदम। मतलब देखिए, ये शब्द मुझे, सच बोलूं मुझे नहीं पता था, और हमारे अच्छा। सुनने वालों में से कितने लोगों को नहीं पता होगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आज मेरी मुझे एक नया शब्द सुनने में आया, उसकी मतलब समझ में आया, इदम। वाह क्या बात है, तो बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए मोहन सर, यहीं पे मेरे दिमाग में जो विचार आ रहा है वो ये कि आध्यात्म की अगर हम बात करें तो एक और शब्द है धर्म, वो पीछे नहीं रहता। तो अब धर्म का मतलब भी बताइए और मुझे ये समझाइए कि क्या धर्म और आध्यात्म में फर्क है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या है, मतलब इन दोनों के बीच क्या तालमेल है।
2: अच्छा, धर्म है आचरण, अध्यात्म है ज्ञान
1: जी।
2: अभी देखिए, मनुष्य में एक फैकल्टी है ज्ञाता, जो जानते हैं, और हमारी आचरण हमारे ज्ञान के अलाइनमेंट में रहे उसको धर्म कहते हैं। अभी अध्यात्म कहता है कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो अगर आचरण भी सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप के तालमेल में रहे तो मैं चिंतन क्रिया और बोली एक लाइन में रहे, जे क्रिया और बोली के जो एक लाइन में रहना, आचरण को धर्म कहते हैं। उसका गलत ट्रांसलेशन हो गया, मत के बराबर हो गया, लेकिन उसका धर्म का मतलब है आचरण, अपना कर्म, अपना स्वधर्म करना, उसी को धर्म कहते हैं।
1: जी जी जी जितना मुझे समझ में आया मोहन साहब, जिस भी तरीके से हम अपनी जीवन शैली चलाते हैं,
2: जी
1: उचित आचरण करते हुए,
2: हाँ,
1: बस उसी को धर्म कहते हैं,
2: उसी को धर्म कहते
1: क्या
2: हैं।
1: बात, बहुत खूब। दोस्तों मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों को सुनकर कि धर्म क्या है और आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। बहुत सुंदर। तो बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से भजन का आनंद लेते हैं, विचार करते हुए जो अभी अभी मोहन साहब ने बताया धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में।
0: इस पूरी दुनिया में प्रभु ही एक अकेली शक्ति है जो हमें सहारा दे सकती है, जो हमारा ख्याल रखती है। इसी शक्ति के शरण में आए। सुनिए ये एक दूसरा प्यारा सा भजन।

0: बहुत सुंदर। अब आगे बिल्कुल जैसे मेरी कोशिश रहती है मोहन सर, और आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोग्राम बिल्कुल साधारण व्यक्ति का है, बिल्कुल लेमैन जो सरल भाषा में ये कठिन सब्जेक्ट को समझ पाए। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति बिना धर्म का आचरण किए, यानी कि जिंदगी को जैसे हमको चलाना चाहिए वैसा ना करते हुए भी, क्या आध्यात्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है क्या?
1: ऐसा है कि धर्म आचरण करे
0: जी
1: तो उसमें लोक संग्रह कहते हैं, लोक में उनका व्यवहार जो इस लोक में है, इस भूमि में है, उनका जो व्यवहार है वो एथिकल रहता है
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कि वो अध्यात्म विचार करे
0: जी।
1: आध्यात्मिक विचार के लिए अंदर से एक योग्यता की जरूरत है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना मोमेंट ऑफ रेकनिंग। हमारे जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आना चाहिए जिसमें हम ये विचार करें कि मैं कौन हूं
0: जी, जी।
1: मैं किस लिए, वो कहते हैं भज गोविंदम, एक बहुत बड़ी टेक्स्ट है, उसमें कहते हैं मैं कौन हूं, मेरे पिताजी कौन है, मैं जननी कौन है। तो ये जब सवाल, जब ये उठते हैं, ये प्रश्न उठते हैं हमारे दिमाग में, तभी जाके हम अध्यात्म के ओर जा सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न ना किए भी हम धार्मिक आचरण कर सकते हैं, आध्यात्मिक विचार की कोई जरूरत ही नहीं है
0: जी। जी
1: तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई कैन बी एन एथिकल ह्यूमन बीइंग विदाउट गोइंग इनटू सेल्फ इंक्वायरी।
0: ओके जी जी जी, ब्यूटीफुल, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस। दोस्तों इस बात को गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों आचरण अपने आप से एक्सक्लूसिव है, कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों का ही दामन पकड़कर चलें। बात मुद्दे की है अपने आप को पहचानने की, उचित आचरण करने की बात हो रही
1: है। उचित आचरण से क्या होता है, अपने आप को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है
0: जी।
1: और अपने आप, एक बार अपने आप को पहचान गए तो आचरण जो है वो बहुत ही आसानी से, अनायास से होता रहता है
0: जी। ओके तो बहुत सिंपल है, जैसा मोहन सर ने बताया, देख लीजिए दोस्तों, विचार करिए, और बहुत आसान है कि उचित आचरण। अब उचित आचरण को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता होगी, कि सभी लोगों को एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया है कि उचित आचरण क्या होता है, बस उसे फॉलो करते रहिए और आप आध्यात्मिक भी हो गए।
1: उचित आचरण में बस एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी जैसे देखिए, मुझे ये लोगों से अपेक्षा है कि लोग मुझसे झूठ ना बोले
0: जी,
1: लेकिन मैं किसी से झूठ बोलूं या न बोलूं ये मेरे कन्वीनियंस पर निर्भर करता है
0: जी, बिल्कुल सही।
1: तो ये अगर अलाइनमेंट में हो जाए कि भाई झूठ बोला कतई ठीक नहीं है, और मैं ना किसी से अपेक्षा करता हूं मुझसे झूठ बोले, और मैं भी झूठ का आचरण नहीं करूंगा, इसमें हो गया धार्मिक आचरण हो गया
0: जी।
1: और मैं एथिकल लाइफ, सीधा कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ, बिना अंदर के क्लेश का मैं जीवन जी सकता हूं।
0: भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए विचार करते चलिए, मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये गहरी बातें हैं, रुक कर विचार करना बहुत जरूरी है। लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए इस विचार पर विचार कीजिए। बस एक बार प्रीत लगने की देर है, प्रभु से प्रीत लगते ही सारी दुनिया अपनी होती है। चलिए प्रभु से प्रीत लगाएं।

0: सुंदर। अब जाहिर सी बात है, जब हम आध्यात्मिकता से शुरू कर धर्म पर आए, धर्म को भी समझा, उनके डिफरेंस को भी माना, उचित आचरण को भी समझा, तो दो और शब्द हैं सर जो पीछे ना रह पाएंगे इस पूरे विषय में। वो एक है ध्यान और एक है प्रार्थना। तो इन दोनों के बीच में क्या समानता है या क्या अंतर है, थोड़ा वो हमें समझाइए।
1: अच्छा, ध्यान है मानसिक व्यापार। इसमें ध्यान का है कि हम मुंह से कुछ ना करें, मन का व्यापार करें और हमारी वो थॉट प्रोसेस है आध्यात्म के ओर ले जाए। या तो वो जप साधना हो सकता है, या हमारे ये जो उपनिषद्स हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें से महाव्याख्य कुछ ले ले और अपने आत्मस्वरूप पर ध्यान करें
0: जी।
1: प्रार्थना जो है कि हम ईश्वर की ओर याचक बन के याचना ले जाते हैं। कहा जाता है कि चार तरफ की प्रार्थना होती है। एक होता है आरती, जो संकट में हो और ईश्वर से मांगता है कि मेरी संकट दूर हो। दूसरे को कहते हैं अर्थार्थी, अरे मुझे एक बंगला है, मुझे दूसरा बंगला चाहिए
0: जी।
1: तीसरा है जिज्ञासु। वो जिज्ञासु बोलता है कि भाई ईश्वर तुम क्या हो, ऐसे इतने सारे फर्क क्यों हैं, लोग में ये जो संसार में ऊपर नीचे किया क्यों है, ये संसार क्या है, ये जिज्ञासु है, ये ईश्वर से जानना चाहता है
0: जी।
1: और चौथा जो प्रार्थना है वो ज्ञानी का प्रार्थना है, वो आनंद लेता है ईश्वर की, ये देख ईश्वर की लीला देखकर आनंद ले लेता है। उसके मुंह में लिखते निकलता है बस शिवोहम शिवोहम, शिवोहम का मतलब आनंद में देख रहा हूं
0: जी।
1: तो ये जो है याचना, जो हम किसी ईश्वर से किसी चीज की मांग करते हैं तो वो प्रार्थना है। प्रार्थना हम काय वांग मन, काय से भी कर सकते हैं, हाथ जोड़ कर उससे मांग सकते हैं, मानसिक प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जो है सिर्फ मानसिक व्यापार है।
0: वाह क्या बात है, मतलब इतने खूबसूरत शब्दों में जो शब्दावली इस्तेमाल की है मोहन सर ने, वो बहुत प्रशंसनीय है कि ध्यान जो है वो एक मानसिक व्यापार है। भाई वाह क्या बात है, कितने प्यारे तरीके से मोहन सर ने हमें समझाया है। दोस्तों विचार करते रहिए, करते रहिए, छोड़िएगा नहीं, वरना मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आगे बढ़ते हुए बस मोहन सर से एक और बात पूछना चाहूंगा कि सर इसी सिलसिले में जब हम ध्यान की बात हो गई, प्रार्थना की बात हो गई, अध्यात्म धर्म, तो एक और चीज आती है एक और शब्द आता है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, समझ में नहीं आता, वो है आत्मा। तो आत्मा के अस्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है सर?
1: अच्छा, अभी ऐसा है कि मैंने पहले कहा था अहम इदम, अंग्रेजी में बोले तो आई एंड दीज। अच्छा, जब मेरा फोकस रहता है बाहर विषय के ऊपर, तो ये उस जो स्वयं प्रकाश नहीं है, जिसे जानने के लिए मुझे अंतकरण या अपनी प्रत्यक्ष जो हमारे पास जो चक्षु वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करके मैं बाहर की विषयों को जानता हूं, उसे अनात्मा कहते हैं।
0: ओके।
1: जो स्वयं प्रकाश है, स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं। अभी समझिए, रात को मैंने फोन किया आपको
0: जी,
1: और मैं बोल रहा हूं समीर जी आप हैं
0: जी जी जी,
1: तो आप ये बोलेंगे क्या मैं लाइट ऑन करके देखता हूँ, बीवी से पूछ के बताता हूँ?
0: जी जी, मैं तो कहूंगा मैं हूँ।
1: आप तो कहते हाँ जी बोल रहा हूँ,
0: बोल रहा हूँ,
1: इसका मतलब है मैं स्वयं प्रकाश हूँ।
0: क्या बात है जी।
1: अगर मैं आपसे पूछूं कि टीवी में आपके घर में करंट है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, एक मिनट में मुझे स्विच जला के देखना पड़ेगा,
0: या उसमें स्विच में उंगली डाल के देखना पड़ेगा,
1: उंगली डाल के देखना पड़ेगा। जहां मैं अपने अंतकरण या अपने चक्षुर आदि जो हमारे पास जो करण है, उपकरण है, इसको मैं व्यवहार करके जो जानता हूं, वो अनात्मा है।
0: ओके जी।
1: और ये सब के पीछे जो शक्ति है, जो स्वयं प्रकाश स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं।
0: जी जी जी,
1: जरा बारीकी से विचार करना चाहिए।
0: हाँ, हाँ।
1: ये हमारी शास्त्र ये कहती है कि भाई ये ऐसा कोई नहीं है जो ये पहचान सकता है, कोई से भी पूछे आप हैं क्या, वो कहेगा हाँ मैं
0: जी मैं हूँ, करेक्ट, ब्यूटीफुल।
1: तो इसका मतलब है आप आत्मा के आप एक्सपीरियंस कर, आत्मा के अनुभव कर रहे हैं
0: जी,
1: बस पहचानिए आत्मा क्या है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। तो फिर आत्मा की बात अगर कर रहे हैं तो क्या आप पुनर्जन्म या कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं सर?
1: अच्छा, देखिए यहां दो चीज है, एक तो है विश्वास
0: जी,
1: विश्वास दो टाइप के होते हैं, एक वेरीफाइबल बिलीफ, एक नॉन वेरीफाइबल बिलीफ।
0: वाओ, ओके।
1: अच्छा, ये जो धर्म का है, हम किसी से आज तक ऐसे किसी से नहीं मिले वो कहा कि भाई मैं पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा ससुर था, ऐसे मैंने तो एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है। लेकिन मैं अगर अपना न्याय और तर्क लॉजिक को यूज करके देखूं तो समझिए मेरा जन्म फलाना तारीख को हुआ था, समझिए 1 दिसंबर को हुआ था
0: जी जी।
1: तो 1 दिसंबर के पहले मैं कहां था? तो आप कहेंगे मैं माँ के गर्भ में था। उसके 10 महीने पहले मैं कहां था? तो आप अचानक से चाहे से पटाख से तो आप नहीं आए,
0: करेक्ट।
1: उसके पहले हम पंचभूत में थे, पंचभूत पंचीकरण होके एक शिशु बन के माँ के गर्भ से जन्म लिया। इसका मतलब है मैं कार्य हूं तो उसका कारण होना चाहिए। तो ये लॉजिक में देखेंगे तो पूर्व जन्म के जो है ये विश्वास से बाहर जाकर ज्ञान की बात हो जाती है
0: जी।
1: एप्पल, एप्पल जो है, जो सेब जो है कहां से आया? बीज से आया। तो वो बीज में एप्पल था कि नहीं? सूक्ष्म रूप में था, वो वक्त आने, वो कहते हैं ना कबीर दास के दोहे, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो उसके ऋतु आने पर उसी बीच से ये जो एप्पल जो है, ये सेब जो है, वो उत्पन्न होके प्रकट हो गया।
0: सुंदर।
1: और कुछ दिनों के बाद ये जो है जो प्रकट हुआ वो अपने आप विनाश में जाके उसी बीज में जाके चले जाएगा। मैनिफेस्ट टू अनमैनिफेस्ट, इसमें पुनर्जन्म जो है ना विश्वास से हटकर अगर ज्ञान की चक्षु से देखें तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट हो सकती है।
0: राइट सर, बहुत सुंदर तरीके से डिटेल में मोहन सर ने समझाया है दोस्तों, कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव, कुछ अलग ही देखने का नजरिया, सुंदर। तो लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए विचार करने का एक और मौका।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टेंटिया भी